नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 21 मई सन 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी समय सुन सकते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा पूरी कर नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में भारत इटली संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे

0: साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: भारत और इटली ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर शिपिंग, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। संयुक्त प्रेस वार्ता में इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इसे भारतीय किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव न लड़ने की घोषणा की है। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा हैं। कांग्रेस ने अब्दुल रजाक मोहल्ला और सीपीआईएम ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियां की हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अभी भी खुला है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती।
3: वंदन वार।

आज का चिंतन। स्वामी विवेकानंद का कथन है, लोग कहते हैं कि इस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो। मैं कहता हूँ खुद पर विश्वास करो।

सारी शक्तियाँ तुम्हारे भीतर ही हैं। अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनिए आज दिनभर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनिए श्री रामचरित मानस गान भाग 195। 6:45 सुबह और शाम 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता। संगीत सरिता के अंतर्गत सुनिए

निकला ऐसी लागी लगन। कलाकार हैं गायक अनूप जलोटा। भाग 10। सुबह 7 बजे से भूले बिसरे गीत कार्यक्रम 7:30 पर हम है राही प्यार के। आठ बजकर 15 मिनट पर सुनिएगा त्रिवेणी। 8:30 पर चित्रलोक। 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा आज अभिनेता निर्माता आदित्य चोपड़ा पर। इसका पुनः प्रसारण रात 9:30 पर सुन सकते हैं। 10 बजे सुबह पिटारा में आज के मेहमान सुप्रसिद्ध शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत सुनेगा। इस बातचीत का आज दूसरा भाग आप सुन सकेंगे। 11 बजे रंग तरंग और 12:05 पर दोपहर यादों की महफिल। 1 बजे सुरीला सफर। 2 बजे त्रिवेणी। 2:30 पर सदाबहार नगमे। 3 बजे सखी सहेली, इसके अंतर्गत सुनेगा संवाद और विकास के विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस और एक कप चाय का अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर सुनेगा कहानी पद्मश्री की राहीबाई सोमा पोपुरे महाराष्ट्र की बीज माता और सुनेगा मुझे कुछ कहना है फोबिया से कैसे बचे। 4 बजे हेलो फरमाइश और 5 बजे छाया गीत। 5:30 पर तराने नए पुराने। 6:35 पर सुनिए संध्या रंजन। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम। 4 फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला सुनेगा 7:00 से। 7:45 पर सुनिए इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसे मिलिए। इनसे मिलिए में आज सुनिए गिटार वादक अनिकेत गुंदेवार से जयंत पात्रीकर की बातचीत का तीसरा भाग। हवा महल में रात 8 बजे सुनिए प्रहसन जान बची, लेखन विष्णु दत्त गौड़ का और निर्देशन जयदेव शर्मा कमल का। आठ बजकर 15 मिनट पर चित्रलोक। 9 बजे आपके लिए कार्यक्रम। 9:30 पर आज के फनकार। 10 बजे छाया गीत सुनिएगा और 10:30 पर ढलती जाए रात और रात 11 बजे रंग तरंग। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान भाग 195।

भरत के आगमन के समाचार से निषाद राज को आशंका होती है। क्या कारण है जो भरत वन में जा रहे हैं? यदि उनके मन में कपट भाव न होता तो साथ में इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों चलते? निषाद राज ने सेवकों तथा कुटुंबियों को सभी नावों को कब्जे में करके पानी में डुबो देने तथा सभी घाट रोक लेने के लिए सावधान कर दिया। कहा, सब लोग भरत से युद्ध में लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं स्वयं भी स्वामी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि देकर 14 भुवनों को अपने यज से उज्जवल कर दूंगा। निषाद राज की ललकार सुनकर निषादों की एक छोटी मोटी सेना तुरंत खड़ी हो गई। सभी शूरवीरों ने कमर में छोटे छोटे तरकस बांध धनुष पर वाण चढ़ा लिए। रण के लिए ढोल बजा ही था कि बाईं ओर से चीख सुनकर एक वृद्ध अनुभवी निषाद के मन में विचार आया कि भरत से मिल लेना चाहिए, शकुन शुभ है, अतः युद्ध नहीं होगा। भरत कदाचित राम को लिबाने जा रहे हैं।

0: संगीत सरिता में भक्ति भाव पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि हैं जाने माने गायक श्री अनूप जलोटा। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनते हैं इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी।
1: नमस्कार, भजन के सुरीले संसार से परिचय करा रहे हैं अनूप जलोटा जी। नमस्कार अनूप जी।
2: नमस्कार जी।
1: भजन के आज कौन से रंगों से हम सबको सराबोर करेंगे, हमें जहाँ तक याद आ रहा है एक भजन, अगर आप कहें तो उसके बारे में अगर आप बताएं।
2: कौन सा आपको याद आ रहा है?
1: इतना तो करना स्वामी जब प्राण तल से निकले,
2: बहुत सुंदर भजन है,
1: इसके बारे में थोड़ा बताएं।
2: जी हाँ, ये भजन बहुत साल पहले मैंने इंदुबेन धानक से सुना था, जो मुंबई में ही रहती थी, फिर देवलाली शिफ्ट हो गई थी। तो वो इस भजन को बिल्कुल आंख बंद करके तन्मयता से रोते रोते गाती थी, इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती थी इसमें। तो वो भजन मैंने भी गाना शुरू कर दिया और जो इसे सुनते हैं वो सच में द्रवित हो जाते हैं, भजन इतना अच्छा है। सुनाता हूँ
1: जी, बिल्कुल।

जब प्राण तन से निकले, पीतांबरी कसी हो

भक्त ने भगवान के साथ ऐसे सुंदर सुंदर संबंध जोड़ लिए कि ना भगवान भक्त से दूर रह सकते हैं और ना भक्त भगवान से दूर रह सकते हैं।

0: क्या बात है, बहुत सुंदर लगा। आपके भजन में अनूप जी, कला पक्ष और भाव पक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है, हमें कुछ उदाहरण के तौर पर बताइए भाव पक्ष और कला पक्ष को।
1: कला पक्ष जो है वो संगीत है और भाव पक्ष जो है वो कविता है। हमारे शास्त्र में कहा गया है कि शब्द प्रथम नाद द्वितीय, जो कविता है वो सामने है, संगीत उसके पीछे है। यदि हम यूं ही आलाप लेते रहे तो उसका असर नहीं होता है, लेकिन वही आलाप हम शब्दों के साथ लें तो उसका असर हो जाता है। ठुमक चलत रामचंद्र अगर गाएंगे तो लोगों को ज्यादा मजा आएगा, लेकिन अगर सिर्फ आलाप में ठुमक चलत रामचंद्र गाएंगे तो उसका असर इतना नहीं होगा। इसलिए शब्दों का बहुत बड़ा महत्व है, तो वो हमारा भाव पक्ष है। शब्दों के माध्यम से हम भाव प्रस्तुत करते हैं और जो संगीत की निपुणता है उससे हम कला पक्ष को उजागर करते हैं, और जब दोनों साथ में मिलके लोगों तक पहुंचते हैं तो उसका असर स्वर्गीय होता है।
0: अनूप जी, बड़ी बढ़िया बात आपने हमारे श्रोताओं को बताई, और अब
1: हनुमान जी का स्मरण कर लेते हैं। भरत भाई, भरत भाई, भरत भाई, भरत भाई कपि

0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसी लागी लगन इस श्रृंखला की ये थी दसवीं कड़ी, और अगली कड़ी के साथ हम कल फिर उपस्थित होंगे संगीत सरिता कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर। सुनना न भूलिएगा संगीत सरिता।
1: ऐसी लागी लगन, आप सुन रहे हैं जानी मानी गायक अनूप जलूटा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित हमारी ये श्रृंखला। हारमोनियम पर संगत की है अजय जुगलेकर ने, तबले पर संगत आशीष झा की है। कल सुनिए इस श्रृंखला।

जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के लिए कीजिएगा बस थोड़ा सा इंतजार।

प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को सविता सिंह का नमस्कार। सबसे पहले सुनते हैं ये गीत।

0: अराउंड द वर्ल्ड इस फिल्म का गीत मुकेश की आवाज में आप सुन रहे थे। शब्दकार थे शैलेंद्र और संगीतकार थे शंकर जयकिशन। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज। सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सुबह का तारा भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं उषा मंगेशकर के आवाज में ये गीत। गीतकार हैं नूर लखनवी और संगीतकार हैं सी रामचंद्र।

0: काट कर जो खाए उस पे अपने जानो दिल लुटा,
1: काट कर जो खाए उस पे अपने जानो दिल लुटा।
0: अरे जो बचाए माल उसको जूतियों का हार दे,
1: जो बचाए माल उसको।

टैक्सी ड्राइवर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, किशोर कुमार और साथियों की आवाजें थी। बोल साहिल लुधियानवी ने लिखे थे और धुन एसटी परमन ने बनाई थी। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमल।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय इस कार्यक्रम में एक बहुत छोटा सा अंतराल लेते हैं। अंतराल के बाद फिर से उपस्थित होंगे।

अंतराल के बाद फिर से उपस्थित हैं और आपको सुनवा रहे हैं ये गाना। शबाब फिल्म का ये गीत है।

0: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाए, मन में ये संकल्प बनाए।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। रोम में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्यपालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों का सम्मान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा को लेकर हुई उच्च स्तरीय बैठक। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में सड़क सुरक्षा से संबंधित विशेष अभियान चलाने का दिया निर्देश। प्रदेश में स्वगणना का अंतिम दिन आज, कल से शुरू होगी मकानों की गिनती। और राज्य में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी, मौसम विभाग ने कल तक के लिए जारी किया भीषण लू का रेड अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल रोम में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
3: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्यपालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूं।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री को रोम में सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत समावेशी विकास और ग्रामीण सशक्तिकरण के लिए वैश्विक मंच पर एक सशक्त आवाज बनकर उभरा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली में आगामी NEET UG 2026 की दोबारा होने वाली परीक्षा के मद्देनजर केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ एक उच्च स्तरीय

0: समीक्षा बैठक की। बैठक में श्री प्रधान ने परीक्षा को सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल लखनऊ में सड़क सुरक्षा को लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मृत्यु देश व राज्य की क्षति है। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाएं अधिकांशतः जागरूकता के अभाव में होती हैं। ऐसे में सभी जिलों में सड़क सुरक्षा से संबंधित विशेष अभियान चलाए जाएं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शासन स्तर पर सड़क सुरक्षा के संबंध में पाक्षिक बैठक कर कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाए। उन्होंने सड़कों पर स्टंटबाजी, ओवर स्पीड तथा नशे में वाहन संचालन पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान परिवहन निगम को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सही फिटनेस वाली बसें ही सड़कों पर चलें। साथ ही चालकों परिचालकों का नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण होता रहे। मुख्यमंत्री ने सड़कों पर ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर आवश्यक कदम उठाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अल नीनो के प्रभाव के कारण आने वाले वर्षों में फसलों पर असर पड़ सकता है, इसलिए राज्य को अभी से खाद्य सुरक्षा के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। कल लखनऊ में हुई एक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर क्लस्टर प्रोजेक्ट गंगा और गेहूं के इन हाउस प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए मंडी शुल्क में छूट जैसे विषयों की समीक्षा की। उन्होंने मंडी कर और मंडी शुल्क प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि मंडियों में स्वच्छता, रंग रोगन, त्योहारों के दौरान प्रकाश व्यवस्था, अतिक्रमण हटाना और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए। एक रिपोर्ट।
1: यूपी डेटा सेंटर क्लस्टर की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना उत्तर प्रदेश के एआई मिशन की बुनियादी संरचना तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि डेटा सेंटर क्लस्टर केवल एनसीआर क्षेत्र तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रदेश के अन्य हिस्सों को भी इससे जोड़ा जाए। प्रोजेक्ट गंगा की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन युवाओं को डिजिटल उद्यमी के रूप में चुना जाए, उन्हें गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाए। मुख्यमंत्री ने ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के तेजी से विस्तार और कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने गेहूं के इन हाउस प्रसंस्करण को बढ़ावा देने की रणनीति की समीक्षा के दौरान मंडी टैक्स और मंडी शुल्क व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि प्रदेश की मंडियों को आधुनिक, स्वच्छ और आकर्षक बनाया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लोक निर्माण विभाग की 2026-27 की कार्ययोजना की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। बैठक में प्रदेश के सभी जिलाधिकारी, मंत्री और जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि विकास कार्यों में मानक, गुणवत्ता और समयबद्धता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक जिले से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास प्रस्ताव तैयार कर एक सप्ताह के अंदर भेज दिया जाए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार में हाल ही में कैबिनेट मंत्री बने भूपेंद्र चौधरी ने कल सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री के तौर पर अपना कामकाज संभाल लिया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में MSME की महत्वपूर्ण भूमिका है
2: और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के विकास में जिस प्रकार से MSME विभाग की भूमिका है और उस भूमिका में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार, स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो, इसका प्रयास और इस लक्ष्य को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में 46% निर्यात इन्हीं इकाइयों के द्वारा उत्पादित सामानों का होता है, तो इसे आगे बढ़ाएं, इसका प्रयास हम लोग करेंगे। और उत्तर प्रदेश एक विकसित राज्य की ओर बढ़ रहा है, हमारा विभाग उसमें एक महती भूमिका निभाए, इसका प्रयास हम सब लोग मिलकर करेंगे।
0: प्रदेश में चल रही स्वगणना का आज अंतिम दिन है। राज्य की जनगणना निदेशक और मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने आज भी लोगों से स्वगणना में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की है। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत प्रदेश में कल से मकानों की गणना शुरू होगी, जो 22 जून तक चलेगी। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को कल खारिज कर दिया। अदालत ने कहा है कि यह मुद्दा सरकार के

0: नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। प्रयागराज से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू करने को नागर विमानन महानिदेशालय ने मंजूरी दे दी है। प्रयागराज एयरपोर्ट के निदेशक राजेश चावला ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट का संचालन शुरू होने के बाद प्रयागराज जेवर फ्लाइट की समय सारणी जारी की जाएगी।
1: अगले एयरपोर्टों को एक हफ्ते में 7 फ्लाइटों का आना जाना है। अभी ये जो जेवर एयरपोर्ट जून से शुरू हो रहा है, इसमें अभी जैसे ही ये थोड़ा अभी तो कुछ कम फ्लाइटों से वहां से आना जाना शुरू होगा। इंडिगो की एक फ्लाइट शेड्यूल्ड है जो कि जेवर से प्रयागराज और प्रयागराज से जेवर जाएगी। जैसे ही वो जैसे जैसे फ्लाइट की संख्या वहां बढ़ती जाएगी तो हमारे यहां भी एक फ्लाइट आने का समय शेड्यूल में प्रोग्राम है।
0: प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कल 48 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बांदा प्रदेश में सबसे गर्म जनपद रहा, जबकि हमीरपुर और प्रयागराज में पारा 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने राज्य में कुछ स्थानों पर कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक इस अवधि में रात में भी उमस भरी गर्मी पड़ने की आशंका है। भीषण गर्मी और उमस को देखते हुए प्रदेश के कुछ जिलों में स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है, जबकि कई जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। प्रदेश में लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा आज 44 जिलों के 861 केंद्रों पर आयोजित हो रही है। करीब 8,000 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा में लगभग 3,66,700 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। रोम में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों का सम्मान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा को लेकर हुई उच्च स्तरीय बैठक। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में सड़क सुरक्षा से संबंधित विशेष अभियान चलाने का दिया निर्देश। प्रदेश में स्वगणना का आज अंतिम दिन, कल से शुरू होगी मकानों की गिनती। और राज्य में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने कल तक के लिए जारी किया भीषण लू का रेड अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

तुम जाओ तो प्यार आ जाए, ये गीत आप सुन रहे थे सखी रॉबिन फिल्म से, और मन्ना डे सुमन कल्याणपुर की आवाजों में ये गीत आपने सुना है। इसे योगेश ने लिखा था और रॉबिन बैनर्जी का संगीत था। वल्लाह क्या बात है, इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं।

0: वल्लाह क्या बात है। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें थीं। इस गीत को प्रेम धवन ने लिखा था और रोशन ने इस गीत की धुन बनाई थी।
1: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

चोरी बगिया में आई जो बहार, गलियों की अखियों से छलका कुमार। चोरी चोरी बगिया में आई जो बहार।

एक नजर किसी ने देखा, रंगोली फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आप सुन रहे थे बोल। शैलेंद्र ने लिखे थे, तर्ज शंकर जयकिशन ने बनाई थी। ये बहुत ही सुरीली नग में आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती से कार्यक्रम हम है राही प्यार के। हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम में अब समय है कि एक बहुत छोटा सा अंतराल लिया जाए। अंतराल के बाद फिर से हाजिर होते हैं।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ों में आपने सुना शकील बदायूनी का लिखा गीत, संगीतकार थे नौशाद, फिल्म का नाम सन ऑफ इंडिया। हम है राही प्यार के कार्यक्रम में, अब सुनिए ये गाना। फिल्म टावर हाउस, आवाजें हैं मुकेश और लता मंगेशकर की।

0: प्रोफेसर फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में आपने अभी सुना, और शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा था, शंकर जयकिशन ने धुन बनाई थी। ये गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। इसी ज्ञानी के साथ ही आज का हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्ते। सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। 8 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर हो आया। देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
5: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
4: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री

0: मंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत और इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला से मुलाकात की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता की, जिसमें भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया, जहां भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबेट सामग्री और अफवाहें फैलाते हैं। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में श्री प्रधान ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने असहयोग के माध्यम से सीमा सुरक्षा में बाधा डाली। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमा पर बाड़ लगाना राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने घुसपैठ, तस्करी, नकली मुद्रा, जबरन धार्मिक परिवर्तन और अवैध बांग्लादेशी प्रवेशों को जुड़े अपराध जैसे समस्याओं को उल्लेख किए। पश्चिम बंगाल लगभग 2,200 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा साझा करते हैं, जो कुल 4,000 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्दी और भूमि हस्तांतरित किया जाएगी, जिसकी लागत पूरी तरह केंद्र सरकार और BSF द्वारा वहन किया जाएगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: इस बीच राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए आज पुनः मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई खबरें मिली थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता कल्याण लाहा। जी कल्याण, मतदान की क्या ताजा स्थिति है और इस सीट पर किन उम्मीदवारों के बीच आप कड़ा मुकाबला देख रहे हैं?
5: देखिए प्रियंका, अभी जो मतदान की ताजा स्थिति है, मतदान अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इसी हफ्ते मंगलवार ने TMC का कैंडिडेट है जहांगीर खान, उसने डिक्लेयर किया था कि वो कॉन्टेस्ट में नहीं रहेगा। तो अभी BJP का कैंडिडेट देवांशु

0: तृणमूल सीआईएम का कैंडिडेट अब आपका और कांग्रेस का कैंडिडेट के बीच में अभी मुकाबला हो। कांग्रेस का कैंडिडेट अभी है जो अब्दुल रज्जाक मुल्ला है और सीएम का कैंडिडेट है सोमनाथ कुर्मी।
1: जी जी धन्यवाद कल्याण इस जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन अस्थाई अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्रमोहन पटवारी को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और मेल्लूर से विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 1967 के बाद ये पहली बार है कि कांग्रेस सदस्य राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वे भारत के साथ अमरीका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक हैं। अपनी यात्रा से पहले श्री रूबियो ने एक वीडियो संदेश जारी किया है।
2: अमरीका अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है और हम भारत में अपने साझेदारों के साथ इसे मनाने के लिए उत्सुक हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं। इसीलिए हम साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए तत्पर हैं।
1: श्री रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतनेनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में श्रृंखला का 4था और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। भारत की ओर से कप्तान केतन कुशवाहा, करण गौतम और बेन सिद्धार्थ ने गोल किए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मैचों की श्रृंखला 1 जीत 2 ड्रॉ और 1 हार के साथ समाप्त की। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और विदर्भ, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी लू चल सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। चाय की खेती और उत्पादन में पर्यावरण की रक्षा तथा किसानों और मजदूरों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से इस वर्ष का विषय है सतत चाय उत्पादन, मजबूत समुदाय। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद प्रियंका। एआई से अंतरिक्ष तक भारत इटली साथ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता को हिंदुस्तान और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स ने मेलोडी डिप्लोमेसी शीर्षक से लिखा है, मोदी मेलोनी की बातचीत में भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी का हुआ ऐलान। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा का उद्देश्य जितना आर्थिक है उतना ही रणनीतिक भी। पत्र लिखता है, यूरोप के 5 देश नॉर्डिक समूह में गिने जाते हैं जो अमरीकी रवैये से बहुत निराश हैं और स्वतंत्र रूप से दुनिया में खुद को मजबूत करना चाहते हैं। इस कार्य में उन्हें भारत जैसे विशाल देश की जरूरत पड़ेगी। दैनिक जागरण की

0: सुर्खी है, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण, 330 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर करेगा सटीक प्रहार। पत्र ने नई पीढ़ी के युद्धपोत संघमित्रा के जलावतरण की खबर भी प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सीबीएसई की 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः मूल्यांकन की साइट दूसरे दिन भी अटकी। चालू होते ही 3 घंटे में 1,27,000 आवेदन आए। पत्र ने सीबीएसई के हवाले से कॉपियों की स्कैनिंग में गड़बड़ी के दावे को गलत बताया है। अमर उजाला की खबर है, यूजीसी नेट के लिए अब 23 मई तक कर सकेंगे आवेदन। ताइवान की लेखिका यांग श्वांगजी और अनुवादक लिन किंग को उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलने की खबर को राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi successfully concludes his visit to Italy, marking final leg of his 5-nation official tour. India and Italy to celebrate 2027 as Year of Culture and Tourism to strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Centre ropes in major social media platforms to crack down on rumours and fake paper leak claims ahead of NEET UG re-examination. West Bengal government begins handing over land to BSF for barbed wire fencing along Indo-Bangladesh border. Re-polling begins in Falta Assembly constituency of West Bengal. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders beat Mumbai Indians by 4 wickets to keep their playoff hopes alive. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi returned to New Delhi after successfully concluding his visit to Italy, marking the final leg of his 5-nation official tour. India and Italy yesterday announced the upgradation of their ties to a special strategic partnership, marking a major step forward in bilateral relations. The two countries signed several agreements in areas including agriculture, critical minerals, Ayurveda, science and technology, and facilitation of mobility of Indian nurses from India to Italy. Both nations also signed MOUs for curbing tax crimes, money laundering and terror financing. In a joint press statement with his Italian counterpart, Giorgia Meloni, in Rome, Prime Minister Narendra Modi said, "Italy is renowned worldwide for design and precision, and India's identity is that of a powerhouse of scale, talent, and affordable innovation." The Prime Minister said that India and Italy will move forward on the principle of design and develop in India and Italy and deliver for the world. He said the India-Italy Defence Industrial Roadmap has paved the way for co-development and co-production.
3: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
2: More from our correspondent.
4: Prime Minister Narendra Modi's successful visit has been a part of his ongoing efforts to strengthen India's international relations and cultural cooperation. This is Prime Minister Modi's first bilateral visit to Italy and third overall. His visit was marked by a series of significant events and engagements. He called on Italian President Sergio Mattarella, held delegation-level talks with Prime Minister Giorgia Meloni, focusing on

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: नमस्कार, आप सभी को सविता सिंह का प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। चित्रलोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत।
1: कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदली प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

0: 36 पे आए।
1: बंडी और बबली फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, गुलजार के बोल थे, शंकर एहसान लॉय की तर्ज थी, शंकर महादेवन, सौम्या राय और साथियों की ये आवाजें आपने सुनी इस गीत में।
2: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई। विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है।

सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
1: शुक्रिया शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

तनु वेट्स मनु फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाजें सुनिधि चौहान, उज्जने मुखर्जी, नीलाद्री देवनाथ और साथियों की थी। राजशेखर ने इस गीत को लिखा था और कृष्णा ने इस गीत की धुन बनाई थी। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। चित्रलोक कार्यक्रम में अब समय है एक ब्रेक का, ये लिया जाए बहुत छोटा सा ब्रेक।

ऐश्वर्या कुमार, दर्शना मेनन, रीना गिलबर्ट, विद्या गोपाल और यशिका सिक्का की आवाजों में आप एनिमी फिल्म का गीत सुन रहे थे। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। दोस्तों, आज इंटरनेशनल टी डे यानी अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। यह दिवस हर साल 21 मई को मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य दुनिया भर के चाय के सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व को उजागर करना, चाय के उत्पादन को बढ़ावा देना और इसके साथ जुड़े किसानों और श्रमिकों के अधिकारों और बेहतर कार्यस्थिति और कार्यस्थलों के प्रति जागरूकता फैलाना। दोस्तों, अलसाई सुबह हो या काम की थकान हो या फिर सुकून भरी शाम, चाहे अकेले हो, परिवार के साथ या फिर दोस्तों के साथ, चाय एक पेय पदार्थ नहीं है बल्कि ये हमारे अपनेपन का, बातचीत की मधुरता का और सुकून का प्रतीक है। चाय पीना केवल स्वाद या आदत नहीं, ये भावनाओं के जुड़ाव का भी हिस्सा है। सुनते हैं अब ये गीत।

0: रहे हैं?
1: हाँ।
0: तेरी कसम आऊंगा।
2: दोस्तों चाय की बड़े सुंदर रंग हैं और कई रंग हैं। लोगों की अपनी अपनी पसंद है, कभी ब्लैक टी अदरक वाली चाय और कभी कुल्हड़ वाली चाय। इन सबकी अलग अलग मिठास है। कुल्हड़ वाली चाय तो हमारे सफर को ही यादगार बना देती है ना। शायद यही वजह है कि चाय हमारे दैनिक जीवन का सबसे लोकप्रिय हिस्सा बन गई है। बहरहाल अभी जो गीत आप सुन रहे थे, इसे हमने सौतन फिल्म से लिया था। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजें थी। सावन कुमार ने इस गीत को लिखा था, उषा खन्ना ने इस गीत की धुन बनाई थी। और अब

दर्शन रावल और जोनिता गांधी की आवाजों में धड़क टू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गुरुप्रीत सैनी ने इस गीत को लिखा था और रोचक कोहली और साथियों ने इस गीत को संगीत से संवारा था। इसी गीत के बाद आइए एक बहुत छोटा सा ब्रेक फिर से लिया जाए और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।

दोस्तों, आज जन्मदिन है प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा का, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को कई यादगार और सफल फिल्में दी हैं। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मोहब्बतें, रब ने बना दी जोड़ी जैसे सफल फिल्मों का निर्देशन किया। इसके अलावा उन्होंने वीर ज़ारा, धूम, श्रृंखला, चक दे इंडिया, एक था टाइगर और बंटी बब्बी जैसे फिल्मों का लेखन और निर्माण किया। सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा को विविध भारती परिवार की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको याद दिला दें कि आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा पर, और सुनते हैं आप ये गीत। आपको ये भी याद दिला दें कि ये आज के फनकार कार्यक्रम सुनेगा सुबह और रात 9:30 पर।

0: अरब ने बना दी जोड़ी इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान, लव जंजुआ की आवाजें थी, जयदीप साहनी के बोल थे और सलीम सुलेमान की तर्ज थी।
1: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता, और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपने आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: ऋत्विक तलाशिलकर और साथियों की आवाजों में मलाल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इरशाद कामिल ने इस गीत को लिखा था और संजय लीला भंसाली ने इस गीत को संगीत से सजाया। एक और ब्रेक लेते हैं चित्रलोक कार्यक्रम में।

वीर ज़ारा फिल्म का गीत उदित नारायण के आवाज में आप सुन रहे थे, जावेद अख्तर के ये बोल थे। दोस्तों आज विश्व सांस्कृतिक विविधता संवाद और विकास दिवस है। दुनिया में हर जगह लोगों की भाषा बोली अलग है, खान पान पहनावा सब अलग है, उत्सव अलग ढंग से मनाए जाते हैं। हर जगह की संस्कृति और सभ्यता अलग होते हुए भी इन सब के बीच एक बात है जो सबको जोड़ती है, वो है इंसानियत और प्रेम। सब कुछ अलग होते हुए भी एक दूसरे को समझने की भावना, यही सुंदरता है। हमारा देश तो विविधताओं का अनुपम और अद्भुत संगम है। संग अच्छत्वम संग वदत्वम सम वो मनांसि जानताम, साथ चलें साथ बोलें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, मन को समझें और मिलकर आगे बढ़ें। विश्व सांस्कृतिक विविधता संवाद और विकास दिवस मनाने का उद्देश्य यही है कि विभिन्न संस्कृतियों के प्रति सम्मान, सद्भाव और आपसी संवाद को बढ़ावा देना है। ये गीत सुनते हैं, फिल्म का नाम है मेरे बाप पहले आप।

खबरों पे लिखा है दीवाने दिल का फसाना, तूने पढ़ा कि नहीं जाने जाना, मिलके मुझे

0: उदित नारायण श्रेया घोषाल की आवाजों में ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था मेरी बाप पहले आप। दोस्तों आज आतंकवाद विरोध दिवस भी है। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस मनाने का उद्देश्य कि हमें एकता भाईचारा और आपसी विश्वास को मजबूत करने की प्रेरणा ये देता है। आज का दिन आइए हम सभी मिलकर हिंसा और नफरत से दूर रहकर प्रेम सद्भाव और शांति का संदेश फैलाएं, क्योंकि जब समाज और देश सुरक्षित रहता है तो हम सुरक्षित रहते हैं। और अब एक संदेश।
1: सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: सुनना न भूलें प्रतिदिन सुबह और शाम 6:45 पर विविध भारती का कार्यक्रम संगीत सरिता।
1: और अब आज का चित्रलोक कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, स्वस्थ और समृद्ध रहिए और इजाजत दीजिए सविता सिंह को चित्रलोक कार्यक्रम से। नमस्कार।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.

ये है विविध भारती। आज के फनकार कार्यक्रम कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया, सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर। तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का,
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है निर्माता निर्देशक और लेखक आदित्य चोपड़ा पर।
1: मेरा चैन वैन सब उजड़ा जालिम नजर।

जैसे कि आप जानते हैं, आदित्य चोपड़ा जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशक यश चोपड़ा के सुपुत्र हैं। उनकी प्रतिभा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि उनकी शख्सियत तीन आयामों वाली है। सबसे पहली बात तो ये कि वे एक अच्छे प्रोड्यूसर हैं, दूसरी बात ये कि वे एक बहुत अच्छे लेखक हैं, और तीसरी बात वे एक बहुत अच्छे निर्देशक हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम रोशनी डालेंगे आदित्य चोपड़ा की शख्सियत के इन तीनों पहलुओं पर।

आदित्य चोपड़ा होश संभालने के बाद अपने पिता को असिस्ट करते रहे, यानी उनके सहायक रहे। जाहिर है यश चोपड़ा के बेटे होने के नाते फिल्म संसार में ही उन्होंने अपनी आंखें खोली।

लेकिन युवा पीढ़ी का होने के कारण उनका अपना एक विजन था और वे अपनी तरह की फिल्में बनाना चाहते थे। इसीलिए जब उन्होंने कई सालों पहले फिल्म संसार में कदम रखा तो एक बड़ी ही अनूठी फिल्म बनाई जिसका नाम था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

फिल्म वीर जारा आदित्य चोपड़ा ने ही लिखी थी। इसे निर्देशित किया उनके पिता यश चोपड़ा ने।

0: आदित्य चोपड़ा की कुशल लेखनी इस फिल्म में झलक झलक पड़ी थी।
1: एक दिन जब सवेरे सवेरे सुरमई से अंधेरे की चादर हटा के एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरजू आधी सोई हुई आधी जागी हुई आंखें मलते हुए देखती है लहर दर लहर मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी जैसे हर पल नहीं और फिर भी वही हाँ वही जिंदगी जिसके दामन में कोई मोहब्बत भी है कोई हसरत भी है पास आना भी है दूर जाना भी है और ये एहसास है वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है ये कहता हुआ।

0: वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं।
1: जिस तरह से इस फिल्म में नाटकीय परिस्थितियां दिखाई गई थी और ये दर्शाया गया था कि प्यार सरहदों का मोहताज नहीं होता, ना ही उम्र का मोहताज होता है, प्यार सर्वकालिक होता है, सर्वयुगीन होता है। फिल्म वीर ज़ारा की एक

0: आदित्य चोपड़ा ने अपने प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स को कॉर्पोरेटाइज किया है, यानी उसके ढांचे में परिवर्तन किया है और अब सिर्फ आदित्य चोपड़ा या उनके पिता यश चोपड़ा ही इस बैनर के तले फिल्में नहीं बनाते।
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं।
0: बल्कि इस बैनर में नई प्रतिभाओं को भी मौका दिया जाता है।
2: Are you ready? Sit down. Let me tell you a little story about two cool cats, yeah, Bunty or Bubbly, coming in at an angle that they better than the rest. When you're looking in their hearts, they're gonna pass the test.
0: ऐसी ही एक प्रतिभा थे निर्देशक संजय गढ़वी।

मौका दिया गया। फिल्म थी मेरे यार की शादी है।

0: शादी। उसके बाद आदित्य चोपड़ा ने पहचाना कुणाल कोहली की प्रतिभा को और आई फिल्म हम तुम। आदित्य चोपड़ा ने जाने माने फिल्मकार मुजफ्फर अली के बेटे शाद अली सहगल को भी मौका दिया।
1: कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदली प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

उनकी दूसरी फिल्म बंटी और बबली पेशकश थी यश चोपड़ा फिल्म्स की। निर्माता थे आदित्य चोपड़ा। ये फिल्म भी बड़ी कामयाब रही।

हमने संजय गढ़वी की पहली फिल्म मेरे यार की शादी है का जिक्र किया, लेकिन उनकी दूसरी फिल्म का जिक्र किए बिना आदित्य चोपड़ा पर बनाया गया ये कार्यक्रम अधूरा होगा। ये फिल्म है धूम।

आज के जमाने में मोटर गाड़ियों वाली और टेक्नो फिल्म रफ्तार भरी फिल्में लाने का श्रेय जाता है आदित्य चोपड़ा को फिल्म धूम के जरिए। ये एक अलग ही जॉनर, अलग ही माहौल की फिल्म थी, अलग ही पीढ़ी की फिल्म थी, चाहे इसका संगीत हो, चाहे इसकी कहानी हो।

साल 2011 में उनके दो बड़े प्रोडक्शंस आए, एक थी लेडीज वर्सेस रिक बहल।

प्रोड्यूसर थे आदित्य चोपड़ा, एक थी परमीत सेठी की फिल्म बदमाश कंपनी, प्रदीप सरकार की फिल्म लफंगे परिंदे और मनीष शर्मा की फिल्म बैंड।

आदित्य चोपड़ा यशराज फिल्म्स की बागडोर संभाल रहे हैं और ये प्रोडक्शन एक के बाद एक कई फिल्मों का निर्माण कर रहा है। सलमान खान ने यशराज फिल्म्स के साथ अपनी पहली फिल्म की। कबीर खान निर्देशित एक

आज यशराज फिल्म्स की कमान आदित्य चोपड़ा संभाल रहे हैं। साल 2013 के आखिरी दिनों में आदित्य चोपड़ा ने रिलीज की विजय कृष्ण आचार्य के लेखन और निर्देशन वाली आमिर खान की फिल्म धूम 3। इस फिल्म ने 500 करोड़ की कमाई करके एक रिकॉर्ड कायम किया है।

आदित्य चोपड़ा इन दिनों अपने बैनर यशराज फिल्म्स के लिए बतौर प्रोड्यूसर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। साल 2014 में यशराज फिल्म्स के बैनर तले उन्होंने पेश की फिल्म मर्दानी। इसमें मुख्य भूमिका में थीं रानी मुखर्जी। साल 2015 में शरद कटारिया के निर्देशन में एक फिल्म आई दम लगा के हईशा। इसे भी यशराज फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया था। यशराज फिल्म्स आजकल नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दे रहा है। साल 2014 में आई शाद अली की फिल्म किल दिल। इस फिल्म के गाने गुलजार ने लिखे थे। सुनते हैं ये गाना।

आदित्य चोपड़ा की एक चर्चित फिल्म रही है फैन, जिसमें शाहरुख खान दोहरी भूमिका में थे। आदित्य चोपड़ा इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। आदित्य चोपड़ा ने काफी लंबे समय तक किसी भी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। फिल्म फैन और सुल्तान के वो निर्माता ही रहे। यशराज फिल्म्स की तमाम फिल्मों के निर्माण की जिम्मेदारी वो संभालते रहे और इस बैनर के तले कई निर्देशकों ने अपनी फिल्में निर्देशित की। बहुत बरस बाद आदित्य चोपड़ा एक बार फिर से लौटे निर्देशन की दुनिया में। उन्होंने बनाई फिल्म बेफिक्री।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्माता, निर्देशक और लेखक आदित्य चोपड़ा पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: आज के मेहमान कार्यक्रम में श्रोताओं आज लीजिए सुनिए जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: राजेश रेड्डी एक जाने माने शायर जिनकी गजलों का हर शेर खरा होता है। वो लिखते हैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। राजेश रेड्डी अपने समय और समाज की आवाज भी बन जाते हैं। जुबां खामोश है डर बोलते हैं, अब इस बस्ती में खंजर बोलते हैं। राजेश रेड्डी की शायरी में जिंदगी का फलसफा छलक छलक पड़ता है। वो लिखते हैं, ये जो जिंदगी की किताब है ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है कहीं जानलेवा अजाब है। जिंदगी के डर जिंदगी की उदासी और जुल्मतों को वो अपनी लेखनी में पिरो देते हैं। घर से निकले थे हौसला करके लौट आए खुदा खुदा करके। जिंदगी की नाकामियां उदासियां और विडंबनाएं भी राजेश रेड्डी की लेखनी में नजर आती हैं। जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। राजेश रेड्डी वो शायर हैं जिन्होंने बड़ी ही मशहूर गजल लिखी जिसे पंकज उधास ने गाया, यहां हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। कई वर्षों तक राजेश रेड्डी विविध भारती के हेड रहे। उन्होंने विविध भारती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जाने माने शायर और विविध भारती के हमारे पुराने साथी राजेश रेड्डी विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं।
2: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस और विविध भारती पूरे परिवार को। इस पूरे परिवार से बरसों बाद 13-14 साल बाद एक मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है और विविध भारती के श्रोताओं से भी इस बहाने मिलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस विविध भारती परिवार को।
3: मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी वो जमाना लौट आया जब आप विविध भारती के मुखिया हुआ करते थे और ढेर सारे काम हम लोग मिलकर एक साथ किया करते थे।
2: जो वो बहुत प्यारा जमाना था और एकदम तुमसे मिलके और विविध भारती में आने के बाद वो जमाना फिर एकदम तरोताजा हो गया और वो ऊर्जा वो उत्साह वो उमंग और श्रोताओं के साथ वो लगाव एकदम आंखों के सामने आ गया। जी खुश हुआ जी।
3: क्या बात है सर। बातें हो रही हैं जयपुर के जमाने की और आपने बताया कि न केवल आपने नाटक किए बल्कि वहां एक कंपोजिशन वाला मामला भी लगातार चलता रहा और अलग अलग कार्यक्रमों की अपनी योजना भी चलती रही, तो एक तरह से आपका वो रचनात्मक उत्कर्ष का पूरा दौर था। जयपुर के बाद आप यात्रा जीवन की आपको कहां ले गई?
2: जयपुर के बाद मेरा ट्रांसफर जो है 5 साल पूरे हो जाने के बाद
3: जी
2: अल्मोड़ा हुआ।
3: अरे गजब, पहाड़ों पर।
2: पहाड़ों पर। और मेरे जीवन का वो सबसे कष्टप्रद मतलब यूं नहीं
3: जी,
2: मतलब मुझे अल्मोड़ा स्टेशन शुरू होने वाला था उस वक्त।
3: अच्छा।
2: तब तक शुरू नहीं हुआ था
3: जी।
2: जो शुरुआती स्टाफ भेजा जाता है ना तो उनमें से मैं प्रोग्राम की तरफ से मैं था, फिर इंजीनियर्स थे, तो सेंटर तब तक शुरू नहीं हुआ था, हमको भी जाना था। तो लेकिन मैं मैदान पे रह इतना आदि था और होमसिक तो मैंने बताया था शुरू से था
3: जी, जी।
2: तो वो पहाड़ों की जिंदगी मेरे लिए बहुत कठिन थी मतलब।
3: हा, हा।
2: और परिवार भी था, बच्चे बच्ची छोटी थी तब, तो अब लगता है कि यार मूर्खता की तुम जल्दी चले आए वहां से। अच्छा था वो
3: जी,
2: वो एक अलग अनुभव था
3: जी।
2: तो एक तो यह कि स्टेशन शुरू नहीं हुआ था, काम भी उतना नहीं था, आपको सिर्फ जाना है और

0: प्लानिंग करनी है और कब होगा ये सब तय होना है सारा कुछ। लेकिन वो वहां चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, उतरते जाओ, चढ़ते जाओ, तो ये सब था। और जो आदमी पहली बार गया हो तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। मतलब घूमने जाओ तो अलग बात है
1: जी,
0: लेकिन आपको रहना हो और जो कभी रहा ना हो, कभी रहा ना हो, तो वो उसके लिए तो वो कठिन दौर था। लेकिन वो गुजरा और मैं एक डेढ़ एक साल के बाद ही वापस आ गया वहां से। उसके बाद फिर बॉम्बे आया।
1: अच्छा,
0: 86 में।
1: क्या बात है। तो ये तो पंत जी का शहर था, पंत जी का इलाका था, तो वो तमाम चीजें
0: और वो भी सब भी देखा हमने। वो पंत जी, अज्ञे जी वहां पे रहे और रविशंकर जी का वहां पे वो था, है ना।
1: यस,
0: तो ये सब भी
1: उदयशंकर जी का,
0: उदयशंकर, सॉरी उदयशंकर जी का, तो वो सब भी देखा, घुमा फिरा भी, सब अच्छा भी लगा वो सब
1: जी।
0: कि ये सब कुछ। लेकिन मैं तो हैरान होता था कि यहाँ ये लोग कैसे
1: रहते कैसे।
0: उस वक्त वाकई हैरान होता था मैं कि जो लगता था कि जिंदगी तो मैदान में ही है, पहाड़ों में कैसे।
1: बिल्कुल।
0: तो ये था
1: मुंबई, 80 के दशक की मुंबई बहुत ही अलग तरह का मामला था। आप जैसे जयपुर शहर से आ रहे थे क्योंकि वहां के पले बढ़े हैं, पैदाइश नागपुर के, तो मुंबई आपके लिए एक बहुत बड़ा दायरा था, बहुत बड़ा क्षितिज था। पहला अनुभव क्या था मुंबई का?
0: नहीं, पहला अनुभव तो यही था कि एक तो ये तो सपनों की नगरी थी
1: जी,
0: फिल्मों में देखा ही देखा था और सब कुछ था। आज तो खैर हालत ही खराब है। उस वक्त 86 में जब हम आए थे तो अच्छी खासी भीड़ तो मुंबई में हमेशा रही है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: ये भीड़ भाड़ वाला शहर है तो हर सपना देखने वाला यहाँ आता है और काम ढूंढने वाला यहाँ आता है। तो फिर यहाँ आने के बाद वो बसों का सफर, लोकल ट्रेनों का सफर, एक अलग ही दुनिया थी। लेकिन था कि कुछ लगा था कि बॉम्बे में कुछ होगा और अच्छा लगेगा। और वो धीरे धीरे जिंदगी ढलती चली गई उस हिसाब से। हम शुरू में एंटॉपिल में रहे, गवर्नमेंट कॉलोनी वहां पे थे, तो 11-11 महीने का जो किराया होता है उसपे वो उस पैटर्न पे रहे। और अलॉट होने का सॉल्यूट था, हम तो फ्रेश थे एकदम।
1: बिल्कुल। और तब तो लंबी लाइनें हुआ करती थी।
0: लंबी लाइनें हुआ करती थी। तो जीजस कॉलोनी जो एंटॉपिल की थी वहां रहे और फिर वहां से बस पकड़ना, फिर इधर आना, एंटॉपिल से किंग सर्कल आना वहां तो पैदल
1: जी,
0: फिर ट्रेन पकड़ना, फिर चर्च गेट, तो ये सब सिलसिला चलता रहा। लेकिन थोड़ा उस वक्त शुरुआत में लगा, लेकिन फिर औरों की तरह से फिर हमको भी वो जिस दिशा में उतरना उस दिशा में खड़े होने की आदत हो गई।
1: मुंबई शहर आपको अपने हिसाब से ढाल लेता
0: तो
1: है।
0: फिर वो लोग अपने आप आपको उतार देते हैं
1: जी, जी।
0: तो ट्रेन में ये हुआ कि उस दिशा में मुंह करके खड़े हो जाओ
1: जी,
0: उतार देंगे लोग,
1: लोग उतार देंगे,
0: ये उतार
1: जी। तो मुंबई शहर में एक बड़ा आकाश आपको मिला और जाहिर है कि उस समय तक तो कवि सम्मेलन भी हो रहे थे, रेडियो भी चल रहा था, तो जिंदगी किस तरह से बदली और यहाँ लिखने पढ़ने का दौर किस तरह से आगे बढ़ा?
0: यहाँ जो जिंदगी बदली वो मेरी उस वक्त गजल गायकी
1: चरम पर थी,
0: चरम पर। फिल्म संगीत जितनी पॉपुलर थी
1: जी,
0: मतलब जगजीत सिंह, पंकज दास, मेहंदी हसन, गुलाम अली, ये सब सुपर हीरो हुआ करते थे। मतलब अनूप जलोटा, इनके कैसेट जो है घरों घरों में चलते थे, बजाए जाते थे, मोहल्लों में मतलब चलते थे, शादियों फंक्शनों में भी ये उस वक्त ये बजाया करते थे लोग। तो इतनी पॉपुलर नॉन फिल्म म्यूजिक कहना चाहिए। तो वो दौर था जिस वक्त मैं बॉम्बे में एंटर हुआ था। और नेचुरली जो गजल का शायर होगा उसकी पहली ख्वाहिश होगी कि जगजीत सिंह तक किस तरह से पहुंचो।
1: बिल्कुल।
0: और वो उन तक मेरे शब्द भी पहुंचे। तो यहां आने के बाद तो ये सिलसिला चलता रहा। और लेकिन जगजीत सिंह साहब से पहले मेरी भूपेंद्र जी से बात हुई।
1: अच्छा, अरे वाह वाह, मुझे ये पता है क्योंकि अब हमने साथ में काम किया है और मैं आपके करीब भी रहा हूँ कि भूपेंद्र सिंह की आवाज से आपको बेपनाह प्यार रहा है।
0: बहुत प्यार,
1: बल्कि हमने उनको बुलाने की बहुत भरसक कोशिश की थी। आपकी इच्छा ये थी कि वो इंटरव्यू मैं लूं, तब मैं था नहीं शहर में।
0: तो भूपी जी मतलब पहले थे जिन्होंने मेरी एल्बम में जो कुछ चीज, और जैसे मैं जयपुर में आकाशवाणी में युवाणी में जो अपनी आवाज पहली बार मैंने रिकॉर्ड की
1: जी,
0: तो घर में जिस ढंग से मैंने खुशी का इजहार किया था और अपने आप की आवाज को आकाशवाणी में सुनकर
1: जी
0: तो खुशी हुई थी। तो वो खुशी मुझे यहाँ पे भूपेंद्र सिंह की आवाज में अपनी गजल सुन के हुई थी।
1: क्या बात है।
0: तो
1: क्या
0: वो किसी गजल सिंगर ने, और मेरे फेवरेट गजल सिंगर ने या गायक ने जो इतना बड़ा सिंगर है, तो ये हुआ। तो उसके बाद जगजीत जी से बात हुई तो मैं मिलना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा आ जाओ वो
1: पेडर रोड,
0: हाँ, पुष्प मिलन 25 उनका एड्रेस था
1: जी।
0: तो मैं गया और उस समय का वक्त था। तो मैं बताना चाहूंगा अपने श्रोताओं को, अपने सुनने वालों को कि बड़ा आदमी ऐसे ही नहीं बनता है
1: जी।
0: जगजीत सिंह साहब रोज सुबह उनका वो रियाज का वक्त होता था। इतने बड़े आर्टिस्ट जो थे

0: ऐसे ही नहीं थे,
1: जी
0: रोज रियाज करना उनका काम था। जब मुंबई में होते थे
1: जी
0: तो वो तानपुरा चल रहा है और वो सब कुछ, और मिलने जुलने वाले भी अगर आते हैं तो बीच में आते हैं और बातचीत होती है, और वो उनका सिलसिला फिर रियाज पे। तो ये
1: जी
0: तो मैं पहली बार गया तो वो तानपुरा चल ही रहा था, वो अपने बैठे हुए थे और फिर उन्होंने वो गजल देखी। मेरी खुशकिस्मती कि बड़ा अक्सर होता है कि इतने बड़े लोग, आपका मिलना ही बड़ी बात है उनसे,
1: जी
0: हाँ वो उनका मिल जाना। फिर उन्होंने कहा कि गजल देखे, तो सरसरी निगाह से जब उन्होंने देखी तो ये मेरा सौभाग्य था कि उन्होंने पहली ही उसमें कहा ये मैं कर रहा हूं। बड़ा
1: वाह वाह
0: अक्सर होता है
1: वाह
0: कि रख के जाओ, देखता हूं, मैं करता हूं, सोचता हूं, बताता हूं,
1: जी जी
0: है ना।
1: जी जी
0: लेकिन उस वक्त उन्होंने उसी वक्त कह दिया ये मैं कर रहा हूं।
1: वो कौन सी गजल थी? घर से निकले थे, ये
0: नहीं, ये जो जिंदगी की
1: जो
0: किताब है,
1: जिंदगी की किताब है। वाह वाह वाह
0: तो ये वो
1: वाह।
0: पहली गजल थी जो जगजीत जी ने गाई।
1: और भूपी जी ने क्या गाया था?
0: वो हैरानी होगी कि उस वक्त पंकज जी वगैरह सब ये शराब और हल्की फुल्की गजलों का दौर था। भूपी जी ने कहा कि यार मुझे गजलें बहुत है, मुझे हल्की फुल्की गजल चाहिए। हाँ,
1: अच्छा
0: तो मैंने पहली गजल जो डिमांड पे लिखी, डिमांड पे,
1: हाँ
0: वो ये गजल थी, और जिसको मैं न कहीं पढ़ता हूँ न सुनाता हूँ,
1: जी
0: और वो गजल जो मैंने कभी आज तक छू ही नहीं,
1: अच्छा।
0: वो गजल शराब पड़ती।
1: ओ
0: तो वो गजल लेकिन उनको पसंद आई, उन्होंने गाई और चलिए।
1: जी। ये जो जिंदगी की किताब है, ये भी आपकी पहचान के साथ पूरी तरह से जुड़ गई है, और ये कहना चाहिए कि एक तरह से आपकी प्रतिनिधि गजल है। तो जगजीत साहब ने तो सुनाई, वो भी हम सुनेंगे, लेकिन हम आपसे भी सुनना चाहते हैं इसको।
0: ये गजल है जिसकी धुन मैंने खुद ने नहीं बनाई,
1: जी
0: तो मैं जगजीत जी की आवाज में जो धुन है, कंपोज है,
1: वही आप
0: उसको, हाँ वो पढ़ देता हूँ।
1: जरूर जरूर।
0: ये जो जिंदगी की किताब है।

सा ख्वाब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है, ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है।

0: बात है। जगजीत जी ने जब इसे गाया और ये कैसेट रिलीज हुआ तो जाहिर है कि एक बहुत ही ख्वाब पूरा होने जैसी बात थी।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल।
0: और ये बहुत लोकप्रिय हुआ, आपके जहन में क्या चल रहा था?
1: नहीं, मेरे लिए तो एक सपना सच होने जैसा तो हुई बात है। और फिर जिस ढंग से इन्होंने गाया
0: जी जी,
1: और ये कंसर्ट्स में भी अक्सर गाया करते थे, और सोशल मीडिया तो अब आया है, लेकिन कभी कभी मैं देख लेता हूँ और लोग बताते हैं इस गजल की जो लिसनिंग हुई है, जो व्यूअरशिप है, और वो नहीं है कि पूछ, मतलब मैं तो खूब है,
0: बिल्कुल,
1: और
0: बिल्कुल।
1: जो कमेंट्स है लोगों के, ये गजल वो गजल और ये जगजीत जी ने बहुत अच्छी गाई है और ये वो शायरी बहुत अच्छी है, सब कुछ है, और पूरे दुनिया से, पाकिस्तान, लंदन, अमेरिका, यहाँ यहाँ से कमेंट्स है उस गजल पे। तो ये गजल जिसने मुझे दुनिया भर में पहुंचा दिया, यूं कह लीजिए मुझे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और जब आपको फोन करें तो आपकी रिंगटोन में भी ये गजल बजती है। जगजीत जी ने गा लिया, भूपी जी ने गा लिया, पंकज जी ने भी उस दौर में गा लिया।

0: या उन्हें ये गजल कहीं मिली?
1: नहीं नहीं नहीं ये तो रिकॉर्ड होने के बाद की बात है।
0: अच्छा ओके,
1: एल्बम आने के बाद में, उसके बाद
0: आरोही में गया
1: था। हाँ तो ये एल्बम तो हो गया था, लोग पसंद भी कर चुके सब कुछ, तो ये दूरदर्शन पे ये गजल दिखाई जा रही थी, सुनाई जा रही थी। और उस वक्त दूरदर्शन ही था जिसमें लोग अच्छे सीरियल देखते थे, अच्छे प्रोग्राम देखते थे, आरोही बहुत पॉपुलर था, तो ये चल रहा था और लोग सुन रहे। तो मेरा एक जयपुर का दोस्त है, तो अपने परिवार में बैठ के जैसे सुनता है, तो ये जब गजल आई तो उसने कहा यार ये पाकिस्तानी शायर क्या खा के गजल लिखते हैं।
0: आपके अपने दोस्त ने ये बात
1: ये मेरे उस, और तब तक हमारा संपर्क भी नहीं था, वो है बॉम्बे में, वो हम बहुत अरसे से नहीं मिले थे।
0: जी जी,
1: तो ये पाकिस्तानी शायर क्या खा के गजल लिखते हैं, है ना। तो वो कल्पना नहीं कर सकता था कि ये हिंदुस्तान का शायर है और ये यही की गजल है। तो ये उसने मुझे बाद में बताया, हम मिले और सब कुछ। तो उसका नाम है अजय कार्तिक, जो ये जो है जिंदगी का राइटर था।
0: हाँ हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा नाम है अजय कार्तिक जी।
1: तो वो तो जब बाद में मिले तो उसने कहा कि ये यार ये गजल तो हम सुन रहे थे और हमने, मेरा ये कमेंट था
0: जी।
1: अच्छा दूसरी बात ये कि ये गजल पंकज दास साहब ने सूरत उनमें एक शेख अबू आदम वाला को, एक शायर रहे हैं गुजराती के, बड़े शायर रहे हैं, तो उनकी पुण्यतिथि पर सूरत में कंसर्ट था। हाँ, तो वो पंकज जी वहां पे उन्होंने कंसर्ट किया, वहां गाने गए। मजरूर सुल्तानपुरी वहां पे चीफ गेस्ट थे, तो मजरूर साहब बैठे थे सामने, तो पंकज जी ने ये गजल सुनाई। तो फिर ये जब शेर सुनाया तो फिर मजरूर साहब ऑडियंस में बोलते हैं हाँ पंकज फिर सुनाओ। तो जब जो कहते हैं ना फिर सुनाओ, तो शायद मुशायरा हो या म्यूजिक पर हो, तो ये लगता है कि कुछ गलत तो नहीं हो गया।
0: हाँ बिल्कुल,
1: कुछ तलफ़ुज़ गलत हो गया या कुछ मिसरा गलत हो गया, कुछ मैंने कुछ कमजारा तो नहीं कर बोल दिया है, सुना दिया हाँ, ये सुर का इधर उधर नहीं, फिर सुनाओ, फिर एक बार फिर। उन्होंने तीन बार ये सुना और हाँ वाह, तो ये होगा। फिर जब ग्रीन रूम में आए मजरू साहब, उनसे मिले, तो बोले कि ये किसकी गजल थी ये? तो उन्होंने बताया कि ये उस वक्त मैं नौजवान हुआ करता था
0: जी।
1: तो नौजवान शायर बॉम्बे के राजेश रेड्डी, तो ये बहुत अच्छी गजल है, अलग गजल है, उसको मेरी तरफ से मुबारकबाद देना।
0: वाह वाह वाह,
1: तो ये मजरू सुल्तान पर आशीर्वाद
0: शायर की बात है ना,
1: तो इस गजल से जुड़ी एक दो बातें हैं, तो ये मैं शेयर करना चाह रहा था।
0: क्या बात है, पंकज जी की आवाज में ये गजल सुनते हैं अब।

0: अपने सफर के बारे में कुछ और बातें बताइए।
1: मुंबई में फिर सफर तो मेरा ज्यादातर शायरी का ही रहा
0: जी,
1: और जगजीत जी वाला मैं सिलसिला एक और बहुत महत्वपूर्ण इंसिडेंट है वो सुनाता हूँ। उससे पहले एक मेरी शायरी और मुशायरों में कैसी वो एक सिलसिला शुरू हुआ, बड़ा सिलसिला जो है
0: जी।
1: तो नेहरू सेंटर का एक ऑल इंडिया मुशायरा होता है सालाना,
0: बिल्कुल बहुत ही मशहूर जी।
1: आज तो वो दौर नहीं है
0: जी,
1: लेकिन एक जमाना था मतलब उसके सुनने वालों में। और जब मैंने ये पहला मुशायरा पढ़ा तो उस वक्त स्टेज पे अली सरदार जाफरी
0: जी,
1: मजरू सुल्तानपुरी,
0: कैफी आजमी,
1: मुमताज राशिद और ये सब बड़े बड़े नाम है ना, बशीर बद्र, निदा साहब उसके संचालन कर रहे थे
0: जी।

0: अली सरदार जाफरी उसका वो थे, सदारत कर रहे थे, और सुनने वालों में दिलीप कुमार,
1: बाप रे,
0: अजीत एक्टर
1: जी,
0: और भी और कई तो फिल्म इंडस्ट्री के काफी लोग थे। तो वो दौर था जब बिहार जो नेहरू सर्कल के अलग ही हुआ करता था
1: जी,
0: हॉल खचाखच भरा हुआ। तो और मेरा पहला बड़ा मुशायरा मुंबई का,
1: क्या बात है,
0: मेरा पहला मुशायरा, तो बड़ा मुशायरा, तो निधा साहब ने मुझे उसकी ओपनिंग के लिए, बल्कि यू कह लीजिए,
1: अरे बाप,
0: तो शुरुआत के एक दो मुशायरों में,
1: और निधा साहब की अपनी अदा थी, वो बहुत रेफरेंसेस के साथ बुलाया करते थे।
0: तो उन्होंने

0: करें, तो इसके लिए अलग से प्रोग्राम क्यों करते हो? मेरा कंसर्ट है केयर का जो है नेहरू सेंटर में, तो उसमें कर देते हैं, तुम उसको किताब लेके आ जाना, फिर अपन कर लेंगे। तो मैं चला गया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो हुआ वो ऐसा होगा।
1: जी।
0: तो किताब लेके रैपर वैपर सबके रिबन में सब लेके मैं चला गया। तो मैं मिला वहां पे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम ऑडिशन में बैठो, मैं तुम्हें बुलाऊंगा और वहां उसको कर देंगे उसमें सब ठीक है। तो मैं बैठ गया, फिर उन्होंने वो गजल गाई, दूसरी गजल, जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। तो जगजीत जी ने ये गजल गाई और उसके बाद श्रोताओं से कहा कि ये गजल जो मैंने अभी गाई ये हमारे प्यारे शायर राजेश रेड्डी की लिखी हुई है और आज इत्तेफाक है कि वो हमारे ऑडियंस में मौजूद है, तो मैं चाहता हूं कि वो ऊपर आए और आज उनकी किताब का भी वो है वो लेके आए किताब। तो फिर मैं ऊपर गया और वो नमस्ते और तक क्लैपिंग वगैरह सब कुछ हुआ, फिर जगजीत जी ने वो उसका
1: रिबन
0: कर दिया
1: खोला।
0: रिबन खोला, ऑडियंस के सामने ये सब हो गया और तालियां वालियां सब हो गई और मैं स्टेज से उतरने लगा।
1: जी
0: तो बोले नहीं राजेश रुक गए, तो मैं आया तो उनका कंसर्ट है, देखिए स्टेज है
1: हाँ,
0: पूरा,
1: बाकायदा और पूरा
0: हाँ
1: हॉल
0: पूरा
1: भरा
0: हॉल
1: हुआ
0: है, म्यूजिक का पूरा सेटिंग है, वो गा रहे हैं, वो बीच में उन्होंने बुलाया हुआ है। फिर वो उन्होंने कहा कि भाई एक माइक इधर लगाइए,
1: है। अरे
0: स्टैंडिंग
1: बाप।
0: माइक दीजिए। हाँ तो ये इसकी म्यूजिक कोई उम्मीद नहीं, कल्पना नहीं, और तो वो दिया उन्होंने कि तो अब वो गजल पढ़िए, जाने कितनी उड़ान बाकी है।
1: अरे बाप रे।
0: वो उससे पहले महफिलों में गा चुके थे, मतलब
1: जी
0: उनको
1: जी
0: पसंद थी गजल, तो सारे तो वो गजल पढ़ी, जाने की उड़ान बाकी। तो बात वहीं खत्म हुई, मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी। हो
1: जी
0: ये रहा है कि मैं मतलब मैंने पढ़ा शुरुआत की और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए।
1: अरे गजब।
0: ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ,
1: जी जी
0: आज
1: जी
0: तक किसी शायर के साथ नहीं हुआ
1: गजब गजब।
0: ऐसा विमोचन और ऐसी ऐसा सम्मान, ऐसा प्यार। तो मैं पढ़ रहा हूं और वो उसे गा रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं वो उसे गा रहे हैं,
1: अद्भुत
0: ये
1: अद्भुत।
0: अद्भुत अद्भुत। तो और जब घर पे मैंने श्रीमती जी को बताया कि ऐसा हुआ, तो वो मुझे क्यों नहीं लगे आप, मुझे
1: अरे
0: क्यों नहीं
1: बाप
0: लगे,
1: रे यार, ये तो
0: और
1: बड़ा
0: आपको
1: मिस हुआ।
0: मालूम था कि ऐसा होगा वैसा होगा। तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, तो मुझे बता दी। तो ये था उनका प्यार,
1: वाह
0: ये था उनका शायर को सम्मान देने का तरीका। तो इस गजल के साथ ये जुड़ाव है, इसलिए मैंने बताया था।
1: क्या बात है, ये आपसे सुनेंगे।
0: हाँ जान

0: जाने कितनी उड़ान। और ये शेर खास तौर से यूनुस,
1: स्वागत है।
0: जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन,
1: बाबा
0: जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन, अब तो बस

0: अचानक, तो उसके लिए छुट्टी भी हो तो सब लोग एक फोन पर पूरी टीम विविध भारती की स्टूडियो में हाजिर
1: और
0: पूरा प्रोग्राम शुरू हो गया। तो ये सब वो एक अनुभव जो है वो विविध भारती में हुआ और कहीं नहीं हो सका।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो विविध भारती में वो जोश, वो जुनून, वो जज्बा हमेशा रहा कि चाहे मौजूदा कलाकार हों चाहे ट्रिब्यूट्स हों, जी जान के साथ लोगों ने काम किया। एक चीज जो क्रिकेट का आपका शौक, उसकी भी मैं बात करना चाहूंगा। एक बहुत जुनून रहा है आपको क्रिकेट का।

0: क्रिकेट का आपका शौक, उसकी भी मैं बात करना चाहूंगा। एक बहुत जुनून रहा है आपको क्रिकेट का। मुझे याद है कि वर्ल्ड कप हो रहा है तो आपने स्पेशल प्रोग्राम शुरू कर दिया था और मैंने वो चुनौती निभाई थी कि रोज सुबह एक बुलेटिन देना है।
1: नहीं, क्रिकेट का शौक बहुत अरसे से रहा और शायद ये हमारा राष्ट्रीय खेल शुरू से रहा है
0: जी।
1: तो थोड़ा बहुत खेला भी, लेकिन देखने का शौक जो है वो, ये तो वो जमाना था, वो दीवानगी का वो आलम था कि इसके लिए मैंने ऑफिस से छुट्टी तक ली है मैच देखने के लिए।
0: जी जी,
1: तो ये भी हुआ है। और खासतौर से जब हम वर्ल्ड कप जीते 83 में,
0: बिल्कुल,
1: तो उसके बाद तो कमाल ही हो गया मतलब। और जब जयपुर में आकाशवाणी में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव था, स्पोर्ट्स भी था, देखता था
0: जी।
1: तो पाकिस्तान इंडिया का मैच, इंडिया इंग्लैंड का मैच, ये सब देखा और आनंद आया।
0: बिल्कुल, विविध भारती के दौर में भी क्रिकेट पर हमने बहुत कार्यक्रम किए आपके दौर में, और मंथन किया जब पाकिस्तान गई थी इंडिया की टीम, और ऐतिहासिक दौरा था। दिलीप साहब को रिकॉर्ड किया उस जमाने में, और उन्होंने शुभकामनाएं भेजी इंडिया की टीम को। तो एक जुनून, उससे मैं वाकिफ हूँ।

0: जरूरी बात रह गई है और वो है रेखा जी से आपकी मुलाकात की बात।
1: रेखा से, रेखा का यूं है कि वो हम लोग एमए में साथ थे,
0: जी जी,
1: एमए हिंदी लिटरेचर में राजस्थान यूनिवर्सिटी में, तो एक ही क्लास में थे और हम दोनों का बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था। मैं जैसे मैंने बताया, हमारे पिताजी पीएनटी डिपार्टमेंट में काम करते थे, तो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली, सरकारी मुलाजिम के बेटे बेटा, वो उस तरह से परिवार में पला बढ़ा, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हम लोग बहुत समृद्ध थे। लेकिन जो रेखा की जो फैमिली है वो सिंधी कम्युनिटी है, वो लालवानी रहे हैं है, मतलब तो वो बिजनेस में थे जापान में, हमारे फादर इन लॉ, दोनों ब्रदर इन लॉ हांगकांग मनीला, तो वो उनका बैकग्राउंड ही अलग था, मतलब उनका आर्थिक स्तर भी बहुत अलग था
0: जी,
1: तो कोई संभावना नहीं थी इसकी, लेकिन वो जो होता है वो होता है। तो जब उस वक्त मेरी थोड़ी बहुत पहचान गीतकार के रूप में, थोड़े पत्रकार के रूप में सब होने लगी थी, लिखने वाले के, तो और अट्रैक्शन भी हो ही गया था और हम लोगों में मिलना जुलना सब कुछ है। लेकिन शादी तक की बात, ये उनका साहस था
0: जी जी,
1: प्रपोज तो नेचुरली मैंने ही किया था, लेकिन मैं, हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था और विलोम था एक तरह से, तो उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत दिखाई, उनका ठीक है। और ये कहानी बड़ी दिलचस्प है
0: जी,
1: तो घर में बता के तो उन्होंने कहा कि संभव नहीं है।
0: ओके,
1: घर में तो वहां तो राजी होने का सवाल ही नहीं उठता कि वो मान जाए। तो अच्छा, उस वक्त हमारे इन लॉ फादर इन लॉ जापान में रह रहे थे, ये हमारी जो सास है मदर इन लॉ जो है वो उनके साथ ये रह रही थी, सब कुछ, दोनों भाई बाहर थे, तो घर का कोई पुरुष यहां मौजूद नहीं था, और माँ को भी ये बताने की और इस हालत में वो उम्मीद नहीं थी कि हो जाएगा। तो ठीक है, तो हमने कहा कि हम आर्य समाज में शादी करते हैं।
0: अरे बाप रे,
1: तो आर्य समाज में तय हुआ शादी। हम मेरे कोई निकट के मित्र 5-7, और उस वक्त भी मतलब मैं क्योंकि अपने कॉलेज के जमाने से अपनी एक्टिविटीज की वजह से, लिखने पढ़ने और थिएटर का जो माहौल था, तो अपने लेक्चरर्स का चहेता बन गया था, मतलब ये था
0: जी,
1: तो वो सब आगे आगे करते थे, तो मेरे 2-3 जो लेक्चरर्स थे वो शादी में आए।
0: अरे वाह,
1: आर्य समाज की शादी में,
0: क्या बात है।
1: तो उन्होंने संभाला और सब कुछ हुआ। अच्छा हुआ ये कि मैं शादी के बाद वो अपने घर चली गई,
0: अरे
1: मैं अपने घर चला आया।
0: जी जी जी,
1: तो उन्होंने कहा कि अब मैं बता सकती हूँ कि हम, मैंने शादी कर ली है। और तो अब तो
0: कुछ हो नहीं सकता,
1: होंगी नहीं सबकी, तो हमारे जो लेक्चरर्स थे तो नेचुरली वहां से रेजिस्टेंस होना था कि नहीं नहीं तुम्हारे पिताजी को बुलाते हैं, वो करते हैं, तो उन्होंने वो दौड़े दौड़े जापान से लौट के आए। फिर उन्होंने सब बता दिया सब कुछ, तो बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, हम उनसे बात करेंगे, उनको बुलाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुझे लग नहीं रहा कि मानेंगे, तो मुझे यहाँ से ले जाओ।
0: अरे बाप रे,
1: ये इनकी हिम्मत बता रहा हूँ मैं अब,
0: हा।
1: तो मुझे ले जाओ यहाँ से। तो मैं अपने 2 लेक्चरर्स के साथ घर गया हूँ उनके,
0: गजब।
1: और हमारे फादर लॉ जो मौजूद थे, तो हाँ हाँ ये बैठी चाय वाय पी सब कुछ के बाद, तो उन्होंने वही कहा कि थोड़ा हमें वक्त दीजिए ना, हम ढंग से करते हैं, करेंगे उसको पूछे। लेकिन ये फिर मुझे अलग ले गई, बोले नहीं
0: ये नहीं हो रहा,
1: ये नहीं होने देंगे, मैं भी चलूंगी।
0: गजब,
1: मैं भी चलूंगी। तो फिर उन्हीं के साथ हम लोग बाहर आ गए और हम लोग निकल आए, और फिर मैंने अपने घर वालों को भी तब बताया
0: जी जी जी,
1: जब उनको लेके आया कि मेरी शादी हो गई है।

0: और ये है।
1: तो इस तरह से ये पूरी कहानी हुई और इसके पीछे मेरी तो जो है सो है, सारा साहस इनका है।
0: क्या बात है,
1: ये उस जमाने में
0: जी, शानदार शानदार। तो ये अद्भुत कहानी रही है और ये हमारे सुनने वालों के साथ शेयर हुई, तो ये भी एक दिलचस्प है। सबसे अच्छी मुलाकातें वो होती हैं जिनमें आगे की गुंजाइश छूट जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, दो एपिसोड में उनको समेटना बड़ा मुश्किल था। आगे फिर मिलेंगे और कुछ बहुत सारी बातें आपके साथ की जाएंगी। चलते चलते आपसे कुछ सुनना चाहेंगे।
1: मैं दो तीन शेर सुनाता हूँ।
0: जी जरूर इरशाद।
1: ये रोजमर्रा का सच हम सबके साथ, किसी दिन जिंदगानी में
0: किसी दिन
1: करिश्मा क्यों नहीं होता।
0: वाह।
1: किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूं जिंदा क्यों नहीं होता।
0: वाह वाह वाह वाह वाह।
1: किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूं जिंदा क्यों नहीं होता।
0: वाह वाह।
1: मेरी एक जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं लेकिन, मेरी एक जिंदगी के
0: कितने
1: हिस्सेदार हैं लेकिन, किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं, मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता। और दो छोटी छोटी बहर के शेर
0: इरशाद।
1: एक तो ये शेर के, एक आंसू कोरे कागज पर गिरा।
0: वाह।
1: एक आंसू
0: कोरे कागज
1: पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह। क्या
1: एक आंसू कोरे कागज पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया।
0: क्या बात है।
1: और ये शेर आखिर में, गम छुपाना कोई मजाक नहीं, गम छुपाना कोई मजाक नहीं, देर तक मुस्कुराना पड़ता है।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह। क्या बात क्या बात।
1: गम छुपाना कोई मजाक नहीं, देर तक मुस्कुराना पड़ता है।
0: क्या बात है क्या बात है। सर इतनी सारी बातें हुई, मैं चाहता हूं कि एक ऐसी गजल सुनाए जो आपके इस पूरे रचनात्मक सफर की रिप्रेजेंटेटिव हो, जो आपके मन की हो, जिसे आप जरूर सुनाना चाहें।
1: यूनुस, ये गजल मैं इसलिए खास महसूस करता हूं अपने क्रिएटिव सफर की, कि रामपुर की एक बहुत मशहूर लाइब्रेरी है, रजा लाइब्रेरी।
0: जी जी बिल्कुल।
1: तो उसमें रिसर्च का नामी गिरामी लोग तो आए, बहुत अच्छी महफिल थी। तो उसमें ये गजल जो मैंने पढ़ी
0: जी,
1: तो इतना प्यार मिला, तरह मुशायरा था जो मेरा पहला अनुभव था।
0: जी जी।
1: मतलब किसी लाइन
0: होता है।
1: लेकिन ये गजल मुझे वहां दो बार पढ़नी पड़ी।
0: क्या बात है।
1: इतना प्यार मिला तो वो हासिल मुशायरा साबित हो गई।
0: वाह।
1: तो इसलिए मेरे लिए वो जो है बड़ी यादगार गजल रही। तो मैं वो उसके कुछ शेर पढ़ देता हूँ।
0: इरशाद इरशाद।

0: खुद को समेटते हैं यहाँ से वहाँ से हम
1: क्या बात क्या बात।

0: कहां से हूं।
1: क्या बात है, क्या बात है। तो आगे की बातचीत के लिए प्यास बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतनी बातें की।
0: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस, और पूरे विविध भारती परिवार को मेरी तरफ से धन्यवाद, आभार, और अपने पूरे परिवार में फिर एक बार अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए और पुराने श्रोताओं से मिलने के लिए, मिलाने के लिए मैं आभारी हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।
1: शुक्रिया सर, शुक्रिया। ये था जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है। आज के मेहमान।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं मंजू द्विवेदी। आपकी आशा, ये एल्बम का नाम आशा भोसले की आवाज, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी।

रंग तरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं हरिहरन और लेस्ली लेविस की आवाजों में, लेस्ली लेविस और मुनव्वर मासूम का लिखा हुआ ये गाना, संगीत लेस्ली लेविस और हरिहरन का, एल्बम का नाम आत्मा।

अलीशाज लव नोट्स ये एल्बम का नाम है, अलीशा की आवाज, नितिन रायकवार के बोल और संगीत है संदीप चौटा का।

0: बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
1: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना क्या हुआ।
0: ओहो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
1: बादल देखे फिर दादी माँ?
0: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
1: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
0: शाबाश। छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
1: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
1: दादी माँ दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए। फिर?
0: फिर? अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी
1: यानी खरगोश, हिरन और मोर।
0: शाबाश। तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
1: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
0: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?

0: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पेड़ हमारे दोस्त।
2: इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को बताया गया है कि हमारे जीवन में पेड़ों का कितना महत्व है। बच्चों को पेड़ पौधों की देखभाल करने और वृक्षारोपण के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।
3: किशनपुर गांव में अटकू मटकू नाम के दो शरारती दोस्त रहते थे। दोनों कोई काम नहीं करते थे और सारा दिन इधर उधर घूमते रहते। कभी कभार तो वो गांव से लोगों की मुर्गियां चोरी कर बाजार में बेच देते और जो पैसा मिलता उससे मन मर्जी का खाते पीते। उनकी इस हरकत से सारा गांव परेशान था। एक दिन अटकू के दिमाग में एक युक्ति सूझी। वो मटकू से बोला,
4: अरे भाई मटकू, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज हम जंगल में चलकर पेड़ काटें और उसकी लकड़ी बेचकर जो पैसे मिले उससे हम खूब मजे करें।
5: अरे वाह अटकू भाई, तुमने तो बड़े काम की बात बोल दी। फिर कोई हमसे झगड़ा भी नहीं करेगा कि हमने उनका कोई सामान बिना पूछे ले लिया। चलो जल्दी से जंगल में चलते हैं और लकड़ी काट कर लाते हैं।
4: हाँ, बहुत सारी लकड़ी काट कर लाएंगे
5: और बहुत सारे पैसे कमाएंगे।
4: हाँ। अरे भाई मटकू, वो देखो आम का पेड़।

0: के मोटे मोटे तने बेच कर हमें कितना अच्छा पैसा मिलेगा।
1: बिल्कुल सही कहा अटकू।
2: इसे काट। भाई मुझे मत काटो, मैं तुमको मीठे मीठे आम दूंगा जिनको खाकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, और इसके लिए तुम्हें कोई पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे।
1: अच्छा चल अटकू, आम का पेड़ नहीं काटते, कोई और पेड़ देखते हैं।
3: अटकू मटकू को आम के पेड़ की बात पसंद आ गई और वो आगे बढ़ गए। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक बरगद का बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया और उसे देखते ही दोनों की आंखों में चमक आ गई। जैसे ही वे बरगद के पेड़ को काटने लगे, पेड़ उनसे बोला,
4: रुको रुको रुको रुको, काटो मत मुझे, छाया दूंगा तुम्हें मैं।
5: अच्छा चलो कोई और पेड़ ढूंढते हैं।
1: हाँ अटकू चल आगे चलते हैं।
3: जंगल में कुछ आगे बढ़े ही थे,
1: अरे अटकू भाई वो देख, कटहल का एक पेड़।
5: अरे वाह क्या लंबा चौड़ा पेड़ है, वो भी कटहल से लदा हुआ।
3: वो उसे काटने लगे।
0: काटो मत मुझे, कटहल दूंगा तुम्हें, मैं कटहल दूंगा।
5: अच्छा ठीक है
1: चलो अटकू आगे बढ़ते हैं।
3: आगे जाने पर उन्हें एक नीम का पेड़ दिखा, वे दोनों नीम के पेड़ को काटने लगते हैं।
1: ना, क्या मिलेगा काट कर मुझे, अरे जीने दो, मैं तुम्हें हवा दूंगा। अगर हम पेड़ न होंगे तो जीवित रहने के लिए शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी तुम्हें।
6: हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ये पेड़।
3: अब अटकू मटकू सोच में पड़ गए कि पेड़ पौधों से हमें छाया फल सब्जियां आदि बहुत कुछ मिलता है। पेड़ तो हमारे दोस्त हैं, इसलिए हमें इन्हें काटना नहीं चाहिए बल्कि हमें पेड़ लगाने चाहिए। दोनों वापस गांव पहुंचे और उन्होंने अपने बगीचे में पेड़ पौधे लगाना शुरू किया। अब वे रोज बगीचे में जाने लगे और पेड़ पौधों की देखभाल करने लगे। अटकू मटकू में आए इस बदलाव को देखकर गांव वाले बहुत हैरान थे।
0: अरे वाह अटकू मटकू,
3: जब भी कोई उनसे पूछता कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो तो वो सामने से मुस्कुराते हुए जवाब देते,
7: पेड़ हमारे
1: दोस्त हैं।
7: जीवन में हरियाली लाओ,
1: पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ।
8: पेड़ हमारे दोस्त, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
9: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
8: नमस्कार,
10: उमंग।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: मिशन कश्मीर फिल्म का ये गाना शंकर महादेवन, जसपिंदर नरूला, सुनिधि चौहान और साथियों की आवाजों में। राहत इंदौरी की बोल, संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

0: सुनहरे दौर के सदा बहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदा बहार नगमे।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है

0: कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: इंग्लिश विंग्लिश फिल्म का गाना, सुनिधि चौहान, स्वानंद किरकिरे, नीलांबरी किरकिरे और साथियों की आवाजें, स्वानंद किरकिरे के बोल, संगीत अमित त्रिवेदी का।

लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मुकेश और साथियों की आवाजों में लीजिए अब सुनिए श्री 420 इस फिल्म का गाना। गीतकार शैलेंद्र हैं, संगीतकार शंकर जयकिशन।

यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला जो गीत है ये किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना, आर डी बर्मन का संगीत, फिल्म का नाम नौकर।

0: zarasa o zarasa a zarasa sido o zarzalima mar diyo.
1: कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना गोदान फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज, अनजान के बोल और रविशंकर का संगीत.
0: मैं उठते ही लो अरे पुरवा के झोंकवा में

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। आज के कार्यक्रम को लेकर मैं उपस्थित हूं मंजू द्विवेदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विविध भारती के फेसबुक पेज पर आज के कार्यक्रम की जो इबारत या जो टेक्स्ट हमने लिखा है वो तो आपने पढ़ा ही होगा, और जाहिर सी बात है कि उससे जुड़े हुए बहुत सारे गाने आपने हमें लिख भी भेजे हैं, जिनका अंदाजा आपने लगाया है कि इन बातों को पढ़ते हुए कौन कौन से गीत आपके जहन में आए वो आपने लिख भेजे। बहुत सारे गाने हमारे गानों से मेल खाते हुए भी है। चलिए पहले आपको इबारत जो है वो पढ़ के सुना देते हैं कि नदिया के पानी के पास बैठ हवा के साथ साथ मैं आपको कोई खत लिखूं जिसे पाके तुम्हें लगे कि तुमने सारा जहां पा लिया है, तो मेरे हम सफर तुम चले आना। अगर कभी चांद तारों के पार चुपचाप मेरी बात तुम्हारे कानों में पड़े तो उस अनोखी रात को याद करना। तुम्हारा आना, तुम्हारी याद का आना, प्यार का रंगीन जमाना ठंडी हवा के झोंके के समान सुकून देता है। अगर उस तरह के बादल फिर से आकाश में छा जाएं जब हम पहली बार मिले थे तो समझना किसी ने दिल से याद किया है। इनमें जो शब्द हैं जिनके गाने आज के कार्यक्रम में हमने शामिल करना चाहा है तो उन पर हमने थोड़ा स्ट्रेस भी दिया है, तो हो सकता है कि आपको उसकी बात समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम अब शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे एक साथी की बात है। नदिया का किनारा, ठंडी हवाओं का झोंका और अपनों की याद, उनको खत लिखना यह बहुत ही सुकून भरा और काव्यात्मक एहसास है। मानो प्रकृति की गोद में बैठकर कोई अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरो रहा हो, जैसे जिंदगी के पन्नों में बसी कोई सबसे खूबसूरत और पुरानी याद हो। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि सुरीला सफर के हम सफर साथियों को उन्होंने नमस्कार करते हुए लिखा है कि आज की इबारत में मोहब्बत का इजहार इकरार और स्वीकार से ओतप्रोत है, जहां खतों, हवाओं, चांद, सितारों, बादलों को माध्यम बनाया गया है प्रीत से पूर्ण प्रेमी युगल के हृदय के अरमानों, उमंगों और तरंगों का ताना बाना बुना गया है। सात्विक प्रेम में दिलों से निकलती बहुत सुंदर प्रस्तुति है यह। चलिए अब आपको आज के इस कार्यक्रम का पहला गाना सुनवाते हैं, नदिया के पानी के पास। जी हाँ, सवेरा फिल्म का गाना है ये, शैलेंद्र, लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, शैलेश का संगीत, कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए। इसके अलावा कौन से साल की ये फिल्म है, अगर ये भी आप हमें बता सके तो जरूर बताइए।

सवेरा फिल्म का गाना आपने सुना 1958 1958 की ये फिल्म है। मीना कुमारी और अशोक कुमार पर फिल्माया गया ये गाना है। हमारे बहुत सारे साथियों ने इसका सही जवाब भी हमें लिख करके भेज दिया है। एक साथी लिखते हैं कि नदी केवल एक पृष्ठभूमि नहीं है, नदी प्रेम में पड़े प्रेमियों की भावनाओं को प्रगाढ़ कर देने वाली, मन को निर्मलता और सुकून देने वाली एक सजीव साथी है। नदी की निश्चलता और निरंतरता को समय या फिर जीवन के प्रवाह के रूप में देखा जाता है। नदी बहती जलधारा लहरें प्रिय के साथ गुजारे पलों को याद दिलाया करती है। इसके अलावा आज एक दिवस है, चाय दिवस। बहुत सारे श्रोताओं ने इसके बारे में भी हमें लिख भेजा है और शुभकामनाएं भी दी है। उनकी भी कुछ बातें हैं, वो भी हम आपको पढ़ के सुनाएंगे। एक साथी लिख रहे हैं कि अचानक नदी की तरफ से एक ठंडी हवा का झोंका आता है। वो हवा सिर्फ मेरे शरीर को नहीं छूती बल्कि सीधे मेरे दिल को छूकर निकल जाती है। उस बर्फीली और मखमली हवा के स्पर्श के साथ ही मेरे जहन में अचानक तुम्हारी यादें ताजा हो जाती है। ऐसा लगता है मानो उस बहती हवा ने चुपके से कान में तुम्हारा नाम लिया हो। इस शांत माहौल में तुम्हारी याद आना कोई इत्तेफाक नहीं है। जी हाँ, ये बातें हमारे साथियों ने लिख करके भेजी है। लेकिन एक बात आपसे और भी यहां पर कहना चाहते हैं कि गर्मी इस वक्त अपने चरम पर है। बहुत परेशान हैं हम सब लोग गर्मी की वजह से कि जब बाहर जाते हैं तो गर्मी परेशान करती है। तो इस तपती गर्मी में पानी, हवा और छांव ये तो हमें सुकून देते ही हैं। इनकी इच्छा तो हमें रहती है कि खूब अच्छे से हम पानी पिए और चलते वक्त अगर ऐसा लगे कि छांव मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन इसके अलावा भी कौन सी चीजें हैं जो तन और मन को बहुत ठंडक देती है और सुकून देती है? क्या किसी की प्यार भरी बातें होती हैं? क्या किसी का साथ होता है या किसी की याद होती है जो आपको इस गर्मी में भी बहुत ठंडक का एहसास करवाती है? इसके बारे में भी आप हमें लिख सकते हैं। चलिए अपनी टेक्स्ट की इबारत की तरफ हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हवा के साथ साथ, जी हाँ, अगला जो गीत है सीता और गीता फिल्म का, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ें हैं। आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है, आरडी बर्मन का संगीत है, संजीव कुमार और हेमा मालिनी पर फिल्माया गया ये गाना है।

सीता और गीता फिल्म का ये गाना हमने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि संगीत में खो जाने से मन भटक जाता है और गर्मी का एहसास नहीं होता, तन मन दोनों को सुकून मिलता है और विविध भारती इसके लिए सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अपनी पसंद के गाने सुनने मिलते हैं और सुरीले सफर में जो है बहुत सुरीले गाने भी आपको कई बार जो आपकी पसंद के होते हैं वो भी आपको सुनाई देते हैं। इसके अलावा एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आज जो चाय दिवस है उसके बारे में बहुत सारे साथियों ने जिक्र किया है। लिखते हैं कि आज इंटरनेशनल टी डे है, यानी कि आज सुरीला सफर प्रोग्राम 1 बजे से मैं सुनूंगा, ऑफिस में सुन रहा हूं और आपके साथ मेरी पसंद जो है वो अदरक इलायची वाली चाय का आनंद भी ले रहा हूं, घर की चाय जो मेरी हमसफर यानी कि धर्म पत्नी ने बनाकर दी है, स्टील के थर्मस में लेकर के आया हूं और वही चाय पीते हुए आज का कार्यक्रम सुनूंगा। एक साथी लिख रहे हैं कि आजकल नदिया के किनारे भी कमर्शियल हो गए हैं, जब लोग जुड़ते हैं तो कोलाहल बढ़ जाता है, उस माहौल में सुकून तो नहीं मिलता पर हां थोड़ा अच्छा जरूर लगता है। और इसके अलावा एक साथी लिख रहे हैं कि अगर संगीत में सुरीले सफर में चाय का जिक्र हो तो सफर का मजा दुगुना हो जाए, क्योंकि आज दोस्तों चाय दिवस है, हम जिंदगी को बड़ी जिंदा दिली से जीते हैं, मजा तब आता है जब चाय दोस्तों के संग पीते हैं, चाय की चुस्कियों में यादों को डुबोया करो, दुनिया वालों की बातों को खाम खा दिल पे न लगाया करो, महफिल में रंग बिखेर जाती है, ये चाय ही है दोस्तों जो हमें एक दूसरे के साथ बैठाती है। अब देखिए भाई, हमने अपने जो टेक्स्ट में बिल्कुल भी चाय का जिक्र नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने इतनी बार हमें याद दिलाया कि हमें लगा कि एक चाय का गाना सुन लिया जाए, उसके बाद इबारत की तरफ आगे बढ़ा जाए। सुनिए, ये लीजिए अपनी पसंद का गाना।

बन फूल इस फिल्म का ये गाना हमने सुना। हमारे एक साथी लिखते हैं कि ये गाना तो भाई सर्दियों के अनुकूल है, लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है चाय पर हमें दो ही गाने पता है, एक तो ये और एक दूसरा शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, उसमें भी चाय का जिक्र आता है। इसके अलावा अगर आपको कोई गीत पता हो कि जिसमें चाय का जिक्र आता है तो वो आप हमें बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम आपको बताते हैं कि हमारे एक साथी लिखते हैं कि श्रोताओं के मन और आग्रह का सम्मान कर ये गाना बजाकर आपने सिद्ध कर दिया कि विविध भारती हर समय श्रोताओं के

साथ है। धन्यवाद जी। बिल्कुल, आपका भी धन्यवाद कि इस तरह के जब कोई खास दिन होते हैं तो आप हमें लिख भेजते हैं उसके बारे में, और आपका जो इसमें रुचि है उसके बारे में भी आप हमें बताते हैं, हमें पता चलता है। एक साथी लिख रहे हैं कि अपने परिवार के लोग साथ हों, आइसक्रीम कुल्फी का स्वाद हो, विविध भारती पर बजते हुए गीत हो, तो गर्मी का एहसास बिल्कुल कम हो जाता है। एक साथी लिख रहे हैं कि चांद और तारों को प्रेमी अपने मन की बात बताते हैं और नदी किनारे ठंडी हवा में बैठकर प्रेम का इजहार करते हैं। रात भर आकाश में तारे गिनना, यही सब करते सपनों के शहर में चले जाना, यही है पागल प्रेम की कहानी। जी धन्यवाद आपका। चलिए हमारी इबारत की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि नदिया के पानी के पास बैठ हवा के साथ साथ मैं आपको कोई खत लिखूं। चलिए अगला गीत कन्यादान फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज, शंकर जयकिशन का संगीत, आशा पारेख और शशि कपूर पर फिल्माया गया गाना है, गीतकार का नाम आपको बताना है।

कन्यादान फिल्म का गाना नीरज का लिखा हुआ ये गाना है। एक साथी की बात है कि वो छुपा कर रखे गए खत जिनकी हर एक लाइन को कभी सैकड़ों बार पढ़ा था और जिन्हें छूते ही आज भी दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है। वो खत भले ही धूल खा रहा था लेकिन उसने दिल के किसी कोने में जमी धूल को साफ कर दिया। उसे पढ़कर आंखें भले ही थोड़ी नम हो जाए लेकिन होठों पर एक ऐसी मुस्कान तैर जाती है जो सिर्फ और सिर्फ अतीत के उस खूबसूरत हिस्से को जीने से ही मिल सकती है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि हमने पूछा था कि कौन सी और बातें हैं जो ठंडक देती है, तो लिखते हैं कि सच कहें तो हमें ठंडक देते हैं हमारी नन्ही परी के बोल और हमारे गुरुजी के इतने मधुर वचन और अपनों की प्यारी सी याद और फूलों के पास बैठना और चांद की चांदनी और सबसे ज्यादा ठंडक मिलती है अपने नटखट कान्हा जी से बात करके। हालांकि हमारी उनसे बातें किसी और को सुनाई नहीं देती, यानी हमारी और उनकी बातें किसी और को सुनाई नहीं देती लेकिन वो बातें हमें सबसे ज्यादा ठंडक देती है। चलिए धन्यवाद आपका इन बातों के लिए। अब अगला गाना आपको सुनवाते हैं, गहरा दाग, इस फिल्म का ये गाना है। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, शकील बदायूनी के बोल हैं, रवि का संगीत है। कौन से कलाकारों पर यह गाना फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

गहरा दाग फिल्म का ये गाना आपने सुना, माला सिन्हा और राजेंद्र कुमार पर फिल्म आया गया है। एक साथी लिख रहे हैं कि मंजू जी इतनी गर्मी है कि छाछ और मट्ठे के बिना तो हमारा काम चल ही नहीं रहा है। और

इसके अलावा हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि बस विविध भारती के सुरीले सफर की ठंडक है और आपका सूत्र संचालन है जो हमें बहुत ठंडक देता है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि गर्मी की चिलचिलाती दोपहर में जब चिलचिलाती धूप और लू मन को थका देती है तब सुरीला सफर के सुमधुर गीत एक मरुद्यान का काम करते हैं। मानो को शीतल बयार ठंडी हवा का झोंका तन मन को सहला रही हो, धीमी और मधुर धुने पुरानी मीठी यादों को ताजा कर रही है जिसमें उदास दोपहर भी संगीत में और खुशनुमा बन गई है। ये संगीत और गीतों का ही जादू है जो बाहर के मौसम की तपिश को भुलाकर भीतर एक खुशनुमा और भावुक मौसम का निर्माण कर देता है। बहुत धन्यवाद आपका इतने प्यार के लिए। चलिए हम अपने इबारत की तरफ और आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको सुनवा रहे हैं अनामिका फिल्म का गाना, लता जी की आवाज है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल है, आर डी बर्मन का संगीत है, संजीव कुमार और जया जी पर फिल्माया गया ये गाना है।

अनामिका फिल्म का गाना हमने सुना। एक हमारे साथी की ये बात है, लिखते हैं आदरणीय बहना जी, आपका ये संबोधन हमें बहुत पसंद आया। आज सुरीला सफर कार्यक्रम के गीतों का इतना सुकून मिल रहा है इनको सुनकर के, वो ठंडक भी जो मौसम, इस मौसम में कूलर पंखे उनमें भी जो ठंडक हमें नहीं मिल रही है वो विविध भारती को सुनने से मिल रही है। और एक साथी लिख रहे हैं कि ये अनामिका फिल्म का बहुत लाजवाब और सदाबहार गाना है, हमें बड़ा पसंद है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि इस गाने की लाइन लिखते हुए लिखा है कि हमारे समय की आरडी बर्मन के गाने का ये बहुत ही इनका पसंदीदा गाना है उस जमाने का, इसके बारे में इन्होंने लिखा है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बहुत इन्होंने नमस्कार करते हुए प्यार भरे शब्दों में इन्होंने लिखा है कि इस भरी दोपहरी और गर्मी के मौसम में नदी का किनारा और ठंडी छांव कौन नहीं चाहता। बचपन में भैंस चराने नदी के किनारे जाया करते थे और नदी में नहाते ही भैंस तो घंटों पानी में से बाहर ही नहीं निकलती थी और उसे निकालने के लिए हमें तैर कर अंदर जाना पड़ता था और फिर उसकी पूंछ पकड़कर हमें बाहर लाना पड़ता था। भाई देखिए, गर्मी से जब परेशान हम केवल इंसान ही नहीं होते, पशु पक्षी जानवर हम सब भी परेशान होते हैं, और जब उन्हें सुकून मिलता है तो वो वहां से आना क्यों पसंद करेंगे भला, है ना। चलिए आप बताइए हमें कि पानी, हवा और कूलर और पंखे ये तो है ही, लेकिन इसके अलावा और कौन सी चीजें हैं जो आपको इस गर्मी से ठंडक दिलाने में या निजात दिलाने में आपकी मदद करती, कौन सी बातें हैं जो और भी ज्यादा आपको ठंडक देती। ये सवाल हमने किया था, कुछ श्रोताओं की बातें हम तक पहुंची है, लेकिन अगर आप और भी इस बारे में लिखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। अनोखा प्यार, इस फिल्म का गाना अब आपको हम सुनवाते हैं। जिया सरहदी का लिखा हुआ गाना, अनिल विश्वास का संगीत है।

प्यार फिल्म का गाना आपने सुना, कितनी खूबसूरती के साथ लता जी ने इस गाने को गाया है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आज के अनुपम सुंदर इबारत देखकर दिल के झरोके से प्रकृति के सानिध्य में अपने साजन या सजनी के साथ गुजारे हुए बेहद खूबसूरत अनुराग के पल याद किए जा रहे हैं, जो उन्हें पसंद आ रहे हैं। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि कितनी शांति है, कभी नदी किनारे बैठ कर देखा है, ऐसा लगता है बहती हवा के साथ साथ मन भी कहीं दूर उड़ चला है। चांद तारों भरी निशब्द रात के

ती हवा के साथ साथ मन भी कहीं दूर उड़ चला है। चांद तारों भरी निशब्द रात के साए में जब कोई बात तुम्हारे कानों को छुए तो समझ लेना कोई तुम्हें दिल से याद कर रहा है। ऐसे में जहां कहीं भी हो चले आना। ये हमारी इबारत जो है उसमें से कुछ एक लाइन इन्होंने इसमें लिखी है। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि दिल जब प्रेम में पड़ जाता है ना तब दिन दुनिया और इस जहां की और कोई ध्यान नहीं जाता है, बस एक मैं और एक वो। उसे सामान्य जगह बैठकर भी खत लिखने लग जाऊं तो अपने आप लगने लगता है कि नदी किनारे शीतल हवा के झोंकों के बीच लिख रहा हूं। मुझे आज भी वो पहली मुलाकात याद है। बादल आसमान में छाए थे, बीच बीच में बिजली हल्के से चमक रही थी, दूर कहीं शायद हल्की बारिश भी हुई थी क्योंकि मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू वातावरण में घुल गई थी। कितना प्यारा समा था वो। धन्यवाद। उमर कैद, इस फिल्म का गाना। इस गाने के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने हमें लिखा भी था, अंदाजा लगाया था उन्होंने कि आज की इबारत पढ़ने के बाद हमें लग रहा है कि ये गीत तो आप सुनवाएंगे। जी हाँ, यही गाना अब आपको सुनवा रहे हैं। मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजें, गुलशन बावरा के बोल हैं। संगीत किसका है ये आप बताइए।

तरह से ठंडक लोगों को मिल रही है। और एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं, जो पहले अनोखा प्यार फिल्म का गाना हमने आपको सुना उसके बारे में उन्होंने लिखा कि ये गाना तो हमने पहली बार सुना है और ये विविध भारती की लाइब्रेरी में ही हो सकता है। एक साथी लिख रहे हैं कि अबोध शिशु को गोद में लेकर खेलना और उसकी किलकारी हंसी में खो जाना, ये भी मन को बहुत शीतलता प्रदान करता है। और एक हाँ एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि चिलचिलाती धूप में भी अमलतास के फूलों की तरह ये कार्यक्रम चल रहा है, हमारे विविध भारती से गानों की ठंडी बुछार हो रही है और मन को आनंद एवं सुकून मिल रहा है। सचमुच ही सुरीला सफर हम दोस्तों को एक डोर में माला की तरह पिरो कर रखता है। अमलतास के फूलों का आपने जिक्र किया, वो जो एक गुच्छा होता है अंगूर की तरह पीले फूलों का, वाह सचमुच बहुत तेज गर्मी में भी जब आप बाहर जा रहे हैं और अमलतास के फूलों का गुच्छा अगर आपको दिख जाए तो उसे निहारिए सिर्फ दो मिनट के लिए, देखिए आपकी आंखों को कितना सुकून मिलता है, कितनी ठंडक मिलती है। और जब मैं इसे देखती हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति ने या ईश्वर ने हमें जो ये उपहार दिए हैं इसके बदले में हम उन्हें कैसे धन्यवाद कह सकते हैं। भाई बहन फिल्म का गाना, शमशाद बेगम की आवाज, इसमें संगीत किसका है ये आप बताइए।

उमर कैद फिल्म का गाना जिसमें संगीत सोनिक ओमी का। एक साथी लिख रहे हैं कि इस तेज गर्मी में जब ऑफिस के लिए निकलता हूं और धर्मपत्नी मुस्कुराते हुए लंच बॉक्स और चाय का थर्मस देती है तो मानो तेज गर्मी छुमंतर हो जाती है और उनकी मुस्कुराहट की ठंडक का एहसास होता है पूरे समय। और एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि जब कोई अपना करीबी ठंडा मन से सुकून से कह दे कि मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, तो मानो दिल में इतनी ठंडक और सुकून महसूस होता है कि क्या बताएं। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि पंजाब में भी अभी गर्मी पड़ रही है तो नींबू पानी, मीठी लस्सी, गोंद कतीरा और मीठी छबील का शरबत का लंगर लगाया जा रहा है और इस

भाई बहन फिल्म का गाना, इसमें संगीत है श्याम सुंदर का। एक साथी हमारे लिखने की सुबह सुबह प्राणायाम में चंद्रभेदी और शीतली प्राणायाम से अंदर तक शीतलता मिलती है। जी हाँ, ये प्राणायाम भी बहुत कारगर है। अगर आप गर्मी से परेशान हो तो इसे करके आप थोड़ी राहत इसे पा सकते हैं। और एक साथी हमारे लिखे, प्रकृति में पानी और हवा के अलावा भी कई ऐसे तत्व हैं जो हमें शीतलता और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। हरी घास, नंगे पैर चलने पर शरीर की गर्मी शांत होती है। घने पेड़ सूर्य की किरणों को रोककर तापमान कम करते हैं। पौधों से वाष्पोत्सर्जन, हवा में नमी बढ़ाकर प्राकृतिक कूलिंग करते हैं। मिट्टी और चट्टाने, गीली मिट्टी, इसकी सुगंध और स्पर्श मन को शांत करता है। गुफाएं भूगर्भीय संरचना के

कारण ये स्थान हमेशा ठंडे रहते हैं। चंदन और मुल्तानी मिट्टी त्वचा पर लगाने से तुरंत ठंडक मिलती है। चंद्रमा की रोशनी चांदनी रात में मन और मस्तिष्क को शीतलता मिलती है। भोर का समय सूर्योदय से पहले की प्रकृति सबसे अधिक ठंडी होती है। हरियाली के दृश्य हरा रंग आंखों के तनाव को दूर करता है। पक्षियों की चहचहाट से मानसिक सुकून मिलता है। और इस तरह से इन्होंने गर्मी को थोड़ा कम कर सके इस तरह की बातें इन्होंने लिखी। एक साथी हमारे लिखे, खाने में खरबूजा तरबूज आम फ्रिज में काटकर ठंडा करके ठंडक का एहसास किया जा सकता है। पना बेल का शरबत भी शरीर को तरोताजा रखता है। धन्यवाद आपका। चलिए अब हम बात करते हैं कश्मीर की कली इस फिल्म के गाने की। मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाजें, SH बिहारी के बोल, संगीत OP नैयर का। कौन से कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

शर्मिला टैगोर और शम्मी कपूर पर फिल्माया गया ये गाना। एक साथी लिख रहे हैं कि मंजू जी भले मेरी लिस्ट आपकी लिस्ट से ना मिले पर आपके गीत सुनकर दिल तो गदगद हो गया है। एक साथी लिख रहे हैं कि आज आपने जो बहुत पुराने कम सुने गाने सुनवाए हैं सुनने तो इससे भी ना सुरमई ठंडक हमें मिल गई। एक साथी लिख रहे हैं कि गर्मी की दोपहरिया में मिट्टी के सकोरों में पंछियों को नहाते हुए देखकर भी मन को बहुत सुकून मिलता है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि सुराही का पानी सबसे अधिक ठंडक देता है तो उसे भी पीकर के आप अपने दिल दिमाग को ठंडक पहुंचा सकते हैं। चलिए कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना, हमारी आखिरी लाइन थी कि याद किया है, ठीक है तो चलिए पतिदा फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं, हेमंत कुमार और लता जी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, देव आनंद और उषा किरण पर फिल्माया गया ये गाना है।

दोस्तों कार्यक्रम का समय समाप्त होने को है, लेकिन आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स, प्यारी प्यारी बातें, और उसमें कई बातों में तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी छुपी हुई थी, जानकारी छुपी थी, तो आपकी इन बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और अब कार्यक्रम का सफर यहीं तक है, और मुझे यानी कि मंजू द्विवेदी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों, बच्चे कच्चे घड़े की तरह होते हैं। बचपन में उनकी छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी शरारतें, रूठना मनाना, उनके मासूम सवाल बहुत प्यारे लगते हैं। उनकी नटखट जिद भी बड़ी प्यारी लगती है, क्योंकि उस जिद में प्यार, स्नेह, अपनापन भरा होता है। जिस तरह कुम्हार गीली मिट्टी को आकार देता है, उसी तरह माता पिता के द्वारा स्नेह सिंचित बच्चों का मन भी धीरे धीरे सुंदर रूप लेता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है और किशोरावस्था और युवावस्था की ओर बढ़ते हैं, उनके भीतर अपनी सोच, अपनी पसंद और अपनी पहचान बनने लगती है।
1: बच्चे मन के सच्चे,

आजकल बच्चों और युवाओं में क्रोध और जिद की अधिकता हो रही है। हर बात पर उनकी ये जिद होती है कि वो ही सही हैं, बाकी सब गलत। बड़ों की बातों पर विश्वास ना करते हुए पुराने जमाने की सोच बताकर नजरअंदाज कर देते हैं। अपनी बात मनवाने की जिद और बड़ों की बातों पर असहमति उनकी बढ़ने लगती है। यही वो समय होता है जब वो खुद को समझे जाने की अपेक्षा रखते हैं। बहुत सारे सवाल उनके जहन में होते हैं और आत्मसम्मान उन्हें बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन शब्दों में उसे वो व्यक्त नहीं कर पाते, इसलिए उनका व्यवहार बदलता हुआ दिखाई देता है। जबकि भीतर से वो बहुत अधिक स्नेह, प्रेम, विश्वास और अपनापन खोज रहे होते हैं, अत्यधिक ऊर्जा से भरे होते हैं।

आदि आदि। ये वो समय है जब इन्हें प्यार और स्नेह की बहुत अधिक जरूरत होती है और ज्यादातर माता पिता इन्हें तमाम कारणों की वजह से ये समय नहीं दे पाते। यदि बच्चों युवाओं को समय निकालकर धैर्य से उन्हें सुना जाए, उन्हें सम्मान दिया जाए और प्यार से सही गलत क्या है ये बताया जाए और उनसे बातचीत किया जाए तो उनका स्वभाव धीरे धीरे संतुलित होने लगता है। बच्चों और युवाओं के जीवन को स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए परिवार और समाज को आगे आना होगा, जिससे उन्हें ये एहसास न हो कि हम अकेले हैं। उनके भीतर स्नेह और सहिष्णुता का बीज बोना होगा।

जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल में अब 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर

0: चर्चा की भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन हुयुल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
2: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है। यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बैठक में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वत नैनी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है।
3: ये विडंबना ही है कि पाकिस्तान ऐसे मुद्दों का जिक्र कर रहा है जो पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने बताया है कि 2026 के पहले 3 महीने में अफगानिस्तान में 750 नागरिकों की मौतों के मामले दर्ज किए गए। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊंचे सिद्धांतों की वकालत करना और दूसरी तरफ बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाना, ये सरासर दोहरा मानदंड है। टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों

0: को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोध और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने ये बात कही।
1: India has recently launched
2: भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक रणनीति शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य एक नैतिक और मानव केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की हमारी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य दवाओं के क्षेत्र में अपने नेतृत्व के कारण भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है।
1: इट्स लीडरशिप इन जेनेरिक मेडिसिन।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये आनुवांशिक विकारों के प्रबंधन की अनूठी विधियां हैं। उम्मीद आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये निर्देश सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों, साथ ही अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत संचालित अनुमोदित शिशु शिक्षा केन्द्रों और माध्यमिक शिक्षा पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना सभा की प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना है। इस आदेश को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूल के जिला निरीक्षकों और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।
2: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा सीट पर आज शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक कुल 60.43% मतदान दर्ज किया गया है। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनावी मैदान से हटने के बाद अब मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इस नए विस्तारित मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। आज सुबह लोकभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
3: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली 10 दिन पुरानी सरकार को कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई, सीपीएम, आईयूएमएल और एआईएडीएमके के कुछ विधायकों का समर्थन मिला है। इससे पहले आज कैबिनेट में शामिल कांग्रेस के सदस्यों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री पेरुम्बुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्मारक का दौरा कर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सरकार का समर्थन करने वाले एआईएडीएमके ने आज लोकभवन में हुए मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थायी अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सबसे पहले शपथ ली। इसके बाद मंत्रिमंडल के मंत्री अजंता नियोग, रामेश्वर तेली, चरण बोरो और अतुल बोरा ने शपथ ली। नवगठित केरलम विधानसभा का पहला सत्र आज तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। अस्थायी अध्यक्ष जी सुधाकरन ने नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अंकतालिका में 4th स्थान के लिए अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश करेगी।

0: आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना और समुदायों का समर्थन करना। इस दिवस का उद्देश्य मेहनती चाय श्रमिकों को उनका हक दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट।
1: ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं।
2: चाय, ये चाय।
3: आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। भारत की हर घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की टपरी तक चाय हमारी रग रग में बसती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तमाम शिकवे गिले भुला देती है, ये चाय है जनाब मुर्दों को भी जगा देती है। रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे, बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है। चाहे वो सिरदर्द को मिनटों में गायब करने वाली कड़क मसाला चाय हो, या फिर आज के फिटनेस फ्रीक युवाओं की पहली पसंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जायकेदार ग्रीन टी, असम के हरे भरे मैदानों से लेकर दार्जिलिंग और नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों तक लाखों चाय श्रमिक दिन रात कड़ी धूप और बारिश में पसीना बहाते हैं, तब जाकर चाय की ये पत्तियां हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। संस्कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आध्यात्मिक साधना और उपासना के साथ साथ साहस, शक्ति और जन कल्याण की पवित्र भूमि रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कामना की कि महान विरासत और प्राचीन संस्कृति की ये पवित्र भूमि सदैव सभी को सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रखे। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी लू की संभावना है। इस बीच कल तक ओडिशा और उत्तर प्रदेश में रात के समय मौसम गर्म रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। अब मंत्रिमंडल में 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना है बड़ा आदमी। इस फिल्म का महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजें, प्रेम धवन का लिखा हुआ गाना, संगीत है चित्रगुप्त का।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अब आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और गीता दत्त की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना। संगीत एस मदन का, फिल्म का नाम है बंटवारा।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आशा भोसले और मुकेश की आवाजों में भाभी की चूड़ियां इस फिल्म का ये गाना आपने सुना। नरेंद्र शर्मा का लिखा हुआ गाना, संगीत सुधीर फड़के का।

0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
1: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं तलत महमूद की आवाज में राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गाना। संगीत है सलील चौधरी का, फिल्म का नाम छाया।

0: सुनहरे दौर के सदा बहार गानों की महफिल
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदा बहार नगमे।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं दाग फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है सदाबहार नगमे और अब आपको सुनवाते हैं घराना फिल्म का गाना। मोहम्मद रफी की आवाज, शकील बदायूनी के बोल, संगीत रवि का। ये है आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अंतिम गाना। आप इस गीत को सुनिए और मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए।

आप सुन रहे हैं विविध भारती सेवा, देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है सखी सहेली। कीजिए बस कुछ पल का इंतजार।

0: सखी सहेली सखी सहेली सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को सभी सखियों को और मेरे सामने बैठी हैं आरती आपको नमस्कार कैसी हैं आप
1: चंचल जी और साथ ही सभी सखियों को सभी सखाओं को श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार और कैसी हैं पूछ रही हो इतनी गर्मी में बस ऐसा लग रहा है कि आधे हो गए गर्मी में पिघल पिघल के
0: भी देखिए आलम तो गर्मी का ऐसा है कि शायद देश का कोई कोना इससे अछूता नहीं होगा सिवाय कुछ जो बर्फीले प्रदेश हैं जहां अभी भी राहत के लिए लोग जा रहे हैं घूमने फिरने
1: इस वजह से वहां पे भी गर्मी होने शुरू हो गई
0: जी
1: क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है तो फिर ऐसी जगहों पे भी गर्मी पड़ने लगती है
0: लेकिन अपने ही शहर में आप हैं जहां रह रहे हैं और गर्मी में आपको कहीं बाहर निकलना हो तो

0: लू से बचाव के तो बहुत सारे इन दिनों हम तरीके बता ही रहे हैं और कहीं कई बार हमने डॉक्टर से भी बातचीत सुनवाई है, लेकिन आंखों की देखभाल कैसे करनी, क्योंकि आंखों पर भी जो तपती धूप है, चिलचिलाती धूप है, इसका बहुत बुरा असर,
1: इसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहे हैं आंखों में। हाँ, तो बहुत ध्यान रखने वाला है, तो इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। और आप घरेलू उपाय क्या अपनाते हैं या आप क्या क्या चीजें करते हैं तो आप हमें बताइए।
0: और घरेलू उपचार के अलावा कुछ खास बातें, जैसे घर से निकलते वक्त सर पे कोई कपड़ा लेना, कैप पहन लेना, आंखों पर काला चश्मा लगा लेना, ये उपाय तो सभी करते होंगे। इसके अलावा अगर आंखों में कोई ईचिंग इरिटेशन हो गया तो क्या घरेलू उपाय तुरंत किए जा सकते हैं, इसके बारे में जरूर हमारे साथी लिखकर बताएंगे। और कुछ चीजों से डर होता है, फोबिया होता है।
1: फोबिया पता नहीं हर एक को कुछ ना कुछ होता ही है, जैसे कि हमें भी है हर एक को होता है।
0: अभी हमारे क्या फोबिया, हम इसके बारे में बाद में करेंगे बात, लेकिन हमारे सुनने वालों को किस तरह का फोबिया है भाई,
1: उन्हें अपना बिल्कुल छुपाइए नहीं, बताइए ईमानदारी से पूरी अपनी अपनी बात, क्योंकि सभी को होता है कुछ न कुछ किसी में किसी चीज का डर, तो आप बताइए।
0: इसके अलावा आज बात होगी कहानी पद्मश्री की में राहीबाई सोमा पोपरे, जो महाराष्ट्र की बीज माता, इनकी सीड मदर कही जाती हैं, इनके बारे में। और बहुत खास दिन है भाई, चाय दिवस, चाय की चुस्कियां लेते लेते बहुत सारे काम है ना खत्म हो जाते हैं, कब हो जाते पता ही नहीं पड़ता। और जब भी हम
1: देश ऐसा यही है भारत, जहाँ पे इतनी 50 आप सोच लीजिए गर्मी, इतना तापमान चल रहा है, उसके बाद भी उनको क्या चाहिए, चाय चाहिए चाय के बिना गुजारा नहीं है।
0: हाँ, चार दोस्त बस मिलकर बैठे तो वहाँ एक पांचवी चीज होती है, वो चाय होती है। दो लोग बैठे तो चाय होगी, अगर आप अकेले भी बैठे हैं तो आपका साथी अगर चाय का प्याला है तो बस। और बड़े से बड़ा होटल हो या छोटी सी एक टपरी हो, हर जगह चाय की चुस्कियां जो है वो अपना आलम बांध देती हैं। तो भाई अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, इसके बारे में तो थोड़ी चर्चा होगी, लेकिन एक और बड़ा खास दिन है, संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता का दिवस, इसके बारे में
1: बात करेंगे। और साथ ही हम चाय के बारे में आप भी बताइए कि आप किस तरीके से अपनी महफिल जमाते हैं चाय की प्याली के साथ में।
0: और जब संवाद की बात हो रही है तो संवाद यानी कि बातचीत के लिए भी चाय जरूरी होती है। संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता का जो दिवस है, ये जनता को इसके महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए और विश्व की बहुत सी समस्याओं का समाधान करने के लिए, संसाधनों को जुटाने और मानवता की उपलब्धियों का जश्न मनाने और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए आयोजित किया जाता है।
1: और बिल्कुल ऐसे बहुत से अंतर्राष्ट्रीय दिवसों का अस्तित्व संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से भी पहले का है, लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र ने इन्हें एक शक्तिशाली प्रचार उपकरण के रूप में अपनाया है, इसीलिए दुनिया भर में इन संयुक्त राष्ट्र दिवसों को हम मनाते हैं।
0: तो आज हम मना रहे हैं संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता का दिवस, और साल 2001 में यूनेस्को ने इस दिन को अपनाया था, इसकी घोषणा की थी, और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2002 में इसका प्रस्ताव रखा और हर साल 21 मई को इसे मनाने की आधिकारिक शुरुआत की गई फिर।
1: जी, और इसका मुख्य उद्देश्य है दुनिया की संस्कृतियों को समृद्धि का जश्न मनाना और शांति बनाए रखना और सतत विकास को बढ़ावा देना, ताकि सभी अलग अलग समाजों के बीच आपसी संवाद को प्रोत्साहन मिल सके।
0: बिल्कुल, ये दिन दुनिया भर की विभिन्न भाषाओं, परम्पराओं, कलाओं, जीवन शैलियों को सम्मान देने और उनका जश्न मनाने के लिए होता है, और इस दिन शांति और विकास संवाद को बढ़ावा देकर दुनिया भर में संघर्षों को कम करने और संवाद को बढ़ावा देकर दुनिया भर में जो विकास के लक्ष्य हैं, संस्कृति की क्षमता है, उसको उजागर किया जाता है।
1: जी हाँ, और अभी समय हो रहा है, इतना हम लोगों ने इतनी बातें करी तो एक अच्छा सा प्यारा सा गीत सुन लिया जाए।

0: भाई बात बन जाती है, कुछ तुमने कहा कुछ हमने कहा और इसी तरह से संवाद होता है, बात बन जाती है और आगे बात को हम बढ़ा रहे हैं राहीबाई सोमा पोपड़े की बात के साथ में, जिन्हें महाराष्ट्र की सीड मदर या बीज माता कहा जाता है और सह्याद्री पर्वतमाला के बीचों बीच महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में, जिसे पहले अहमदनगर नाम से हम जाना करते थे, वहीं पर स्थित कोंभालने की ढलानों पर पर्वत श्रृंखला के भीतर गहराई में बसे स्थान पर महिलाएं दोपहर में भी एक साथ मिलकर काम करती हैं। थोड़ी ही दूरी पर राहीबाई सोमा पोपड़े का अपना यहां पर बीज भंडारण है। राहीबाई महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के अकोले आदिवासी ब्लॉक के कुमले गांव में रहा करती थी। मूल रूप से महादेव कोली आदिवासी समुदाय से वो ताल्लुक रखने वाली उनका राहीबाई का जन्म एक बहुत ही निर्धन परिवार में हुआ, जिसमें उनके 5 भाई बहन थे। उनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ था और आर्थिक हालात ठीक नहीं होने के कारण वो पढ़ाई भी नहीं कर सकी। उनका अधिकांश बचपन अपने माता पिता के साथ खेती बाड़ी करते हुए बीता और जब वो सिर्फ 12 साल की ही तभी उनका विवाह हो गया था और उसी गांव के समुदाय के एक किसान थे जिनके साथ उनका विवाह हुआ। शादी के बाद उन्होंने अपने पति के साथ खेती का काम जारी रखा और समय के साथ साथ विभिन्न फसलों की खेती में सराहनीय दक्षता भी उन्होंने हासिल कर ली।
1: बिल्कुल, और जिस तरह से आपने बताया कि महज 12 साल की उम्र में राहीबाई का विवाह हो गया था उनका, तो वो उसी गांव के समुदाय के किसान थे और शादी के बाद भी उन्होंने अपने पति के साथ खेती जारी रखी और समय के साथ साथ विभिन्न फसलों की खेती में सराहनीय दक्षता हासिल कर ली थी उन्होंने। और शिक्षा से वंचित होने के बावजूद राहीबाई का दिमाग बहुत तेज था और उनकी दृष्टि पैनी थी। खेती करते करते उन्हें एक समय ये एहसास हुआ कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से फसलों का उत्पादन तो बढ़ता है लेकिन खेती की लागत भी साथ साथ बढ़ती जाती है। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों से उगाई गई जो फसलें होती हैं उनका सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। और जब राहीबाई अपने बीज बैंक के दरवाजे को खोलती हैं, जहां वो बीज इकट्ठे करती हैं, जमा करती हैं, तो अंदर जो होती है वो गौरैया रहती है।
0: क्या बात है?
1: तो गौरैया उड़ती है तो राहीबाई कहती है कि पक्षियाला कलता काये खाच अनि काये नहीं, मनसाला एकता ज्ञान असुनपन त्याला हे समझते नहीं। यानी पक्षी सहज रूप से जानते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है लेकिन मनुष्य हमारे सभी ज्ञान के बावजूद समझने में विफल रहते हैं।
0: बिल्कुल, राहीबाई पोपड़े जो हैं वो बाजरे की एक देसी किस्म को बोने के लिए अपने अनुभव बयान करते हुए बताती हैं कि पहले 3 साल तो अच्छी फसल हुई, पक्षी खेतों में आते, दाना चुगते और अनाज में कुछ रुचि दिखाते, लेकिन 4थे साल कुछ

0: इस समय तो खेतों की हालत यही है कि धूप से वो जल रहे हैं और कहीं बादल का एक टुकड़ा आके थोड़ी सी छांव ले आता है ना, तो वो ऐसा लगता है कि सुकून दे गया है। और इन दिनों बहुत सारी नजरें बस निहार रही हैं कि वो काले बादल का कोई टुकड़ा है जो बरस जाए। हालांकि बारिश आने में थोड़ा सा भी समय बाकी है, लेकिन अगर अभी हमें सुकून चाहिए तो गर्मी में भी एक गर्म चाय की प्याली अगर मिल जाए,
1: चाय मिल जाए ना तो बस ऐसा लगता है कि अगर चाय ना मिले ना तो ऐसा लगता है कि सर में दर्द अपने आप ही महसूस होने लगता है। मतलब ये सोच है हमारी, असल में ऐसा नहीं हो रहा होता, लेकिन अपने दिमाग को ऐसे सोचने में मजबूर, चाय नहीं पिए इसीलिए सर में दर्द हो रहा है, चाय नहीं पिए इसीलिए कुछ काम सही नहीं हो रहा है।
0: कुछ लोगों को आदत होती है काम करते समय बीच बीच में एक टी ब्रेक लेने की, थोड़े थोड़े अंतराल पे अगर उन्हें चाय ना मिले तो सच में उनका सर दर्द होने लगता है। और चाय दुनिया के सबसे पुराने पेय पदार्थों में से एक है आरती, हमारे सुनने वाले भी इस बात को जानते होंगे। पानी के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा सेवन किया जाने वाला कोई पेय पदार्थ अगर है तो वो है चाय। और दुनिया भर में एक बात बड़ी सामान्य सी मानी जाती है, और हिंदुस्तानियों की तो चाय पीने की आदत जो है ना वो वर्ल्ड फेमस है।
1: अगर आप किसी के घर गए चंचल जी, अगर आप कहीं किसी के घर में जाते हैं तो अगर उसने पानी दे दिया, कोल्ड ड्रिंक दे दिया, आपको खाने को सब कुछ दिया, लेकिन आप घर के उसने मुझे चाय नहीं पिलाया चाय बस चाय नहीं मिला तो आपको शिकायत हो जाएगी।
0: भाई कुछ लोग कहते हैं कि एक लत होती है, लेकिन कुछ कहते हैं ये जिंदगी की खुराक है। लेकिन बता दें कि मेहमान नवाजी का भी प्रतीक मानी जाती है चाय, और अपना इसका एक खास दिन भी आता है। जी हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं 21 मई की आज के दिन की, जिसे अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यानी इंटरनेशनल टी डे के नाम से भी हम जानते हैं। और इस दिन चाय दुनिया भर में सुर्खियों में रहती है, और सभी चाय प्रेमी अपना पसंदीदा पेय चाय उसका जश्न मनाने के लिए एक साथ इकट्ठे होते हैं। दुनिया भर के बहुत सारे समुदाय हैं जहां चाय का गहरा सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी है। ये एक बहुत व्यापक रूप से सेवन किया जाने वाला पेय पदार्थ है। आतिथ्य, परंपरा, सामाजिक जुड़ाव, इन सब का प्रतीक भी हम इसे मानते हैं। और चाय पर जो शोध किए जाते हैं ना वो भी बहुत हैं। जब बताते हैं कि भाई करीब हर सेकंड में 25,000 कप लोग चाय पी लेते हैं, यानी कि अगर पूरे दिन में अगर से हम जोड़ें तो 1 अरब से भी ज्यादा चाय एक दिन में पी जाती है।

0: सच में बहुत ज्यादा।
1: और पौराणिक कथाएं है ना वो बताती हैं कि चीन के सम्राट शेन हॉन्ग ने चाय की खोज तब की जब एक बार एक पेड़ से कुछ पत्तियां उड़कर उनके उबलते हुए पानी में गिर गईं, और जब उन्होंने उस उबलते हुए पानी को पिया तो वो जो गर्म पेय था ये उन्हें बहुत ही पसंद आया, और तब से बस चाय का जो है इजाद हो गया, ऐसा कहा जाता है।
0: और जंचल जी ऐसा है ना कि एक प्यारी चाय अगर दोस्तों के साथ हो
1: हाँ
0: तो क्या होता है, तो मतलब ऐसा समय बनता है ना कि बस लगता है कि अब ये समय जो है वो खत्म ना हो, बस चलता चला जाए।
1: जहाँ लगता है कि हम सिर्फ 10 मिनट 5 मिनट के लिए मिले हैं ना, वो 10 मिनट कब आपके 1 घंटे में बदल जाएंगे ना,
0: वो चाय की चुस्कियाँ चलती रहती हैं। चलो एक बार और हो जाए एक एक प्याली और हो जाए, तो एक प्याली चाय अगर अपने अपनों के साथ हो तो घर मुस्कुराहटों से भर जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: और एक प्याली चाय अगर रिश्तेदारों के साथ हो तो सारी मुश्किलें सारी परेशानी जिससे समस्याएं लड़ाई झगड़े सब बाहर निकल आता है वहीं बैठे बैठे। और जो एक प्याली चाय ऑफिस की टेबल पर मिल जाए या जैसे हमें मिल जाए अगर समय बात करते करते तो हमारी जो बातें वो और स्वादिष्ट हो जाती हैं, और फाइलें अगर हम काम कर रहे हैं फाइलों पे तो फाइलें निपट जाती है फटाफट।
1: और जब पुराने दोस्त मिलते हैं उनके सामने अगर एक चाय की प्याली हो तो पुराना जितना समय साथ गुजारा हुआ है उसे हम एक बार फिर से जी भर के जी लेते हैं, और जब दिन भर की पीड़ा चिंता थकान इसके बाद एक चाय की प्याली मिल जाती है ना तो उसके एक एक घूंट में जो सुकून मिलता है आरती वो शब्दों में शायद हम बयां भी नहीं कर सकते। और चाय अभी से नहीं सदियों से बहुत तरह तरह के स्वाद से और भीनी भीनी सुगंध से हम सबका मन लुभाती रहती है।
0: बिल्कुल। और इसके अलावा बहुत से शोध कहते हैं कि चाय बनाने और पीने खाली पीने नहीं बनाने और पीने की प्रक्रिया मन को शांत करती है, तनाव कम करती है और आराम पाने में सहायक होती है। और भारतीय संस्कृति में चाय महज एक पेय नहीं है बल्कि एक एहसास ताजगी का प्रतीक है, सामाजिक मेल जोल का सबसे लोकप्रिय माध्यम भी है। और इतना ही नहीं चाय में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो तनाव कम करने और शरीर को ऊर्जा देने में मदद करते हैं।
1: भाई चाय की बातें हम करते रहेंगे लेकिन चाय के अलावा सुकून गीतों में भी होता है, तो एक गीत भी सुन लेते हैं।

0: हम भी चाय जरूर पियेंगे कार्यक्रम खत्म होने के बाद में।
1: बिल्कुल पीते ही हमेशा।
0: हाँ हाँ। और आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है और फिर हम बैठकर चाय लेकर थोड़ी बहुत गपशप ना करें, बातें ना करें, तो भाई उस चाय को कितना तौहीन हो जाएगी।
1: सम्मान करना जरूरी है भाई।
0: और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो है ये चाय की सांस्कृतिक विरासत, स्वास्थ्य लाभ और आर्थिक महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के बारे में है, उसके अवसर ताने के बारे में, साथ ही इसके उत्पादन को खेत से लेकर प्याले तक टिकाऊ बनाने की दिशा में काम करने का भी एक दिन है, ताकि लोग संस्कृतियां और पर्यावरण और इसके आने वाले लाभ के बारे में पीढ़ियों तक लोगों को पता लगे। खेत से लेकर कब तक कुशल, पारदर्शी और टिकाऊ मूल्य श्रृंखलाएं और लोगों और पर्यावरण दोनों के लिए सुनिश्चित करने के लिए ये चीजें महत्वपूर्ण हैं।
1: जी, और अभी कुछ साल पहले तक दुनिया भर में 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता था, पर अब ये 21 मई को मनाया जाने लगा है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर माजरा क्या है, बदला क्यों गया आखिर, तो हम आपको बता देते हैं कि इसके पीछे भारत की अहम भूमिका, मतलब इसके पीछे भारत का हाथ ये तो हम कहेंगे।
0: चाय की बात और भारत की बात ना ऐसे कैसे होगा,
1: इसमें तो हम भारत का हाथ कहेंगे, क्योंकि भारत ने ही चाय को उसका हक दिलाया है। दरअसल दुनिया भर में चाय उत्पादक देश 15 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाते रहे हैं, क्योंकि तब तक इसे संयुक्त राष्ट्र की ओर से मान्यता नहीं दी गई थी।
0: लेकिन हाँ, इसे लेकर भारत ने एक बड़ी पहल की। 2015 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के माध्यम से आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया, और अच्छी बात तो ये हुई आरती कि इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया गया और इसे आधिकारिक तौर पर 2019 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया और पहली बार 2020 में विश्व स्तर पर इसे मनाया गया था। ये सारी जानकारी हमारे श्रोताओं ने भी हमें लिखकर पहुंचाई।
1: हाँ, बहुत सारे उन्होंने कमेंट्स किए इस पे। और चाय का उत्पादन यूं तो कई देश करते हैं, लेकिन भारत इस मामले में दूसरे पायदान पर आता है, और मजे की बात यह है कि चाय के उपभोग यानी कि इस्तेमाल के मामले में भारत पहले स्थान पर है, और रहना ही चाहिए था। भारत में चाय की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से आप आसानी से लगा सकते हैं कि दुनिया भर में सबसे अधिक चाय का उत्पादन, लगभग 30% चाय की खपत जो है उत्पादन की, वो भारत में ही होती हो जाती है।
0: और दुनिया भर में चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है एशिया के जो अन्य देशों में होता है, जिसमें भारत, चीन, नेपाल, श्रीलंका और केन्या जैसे कई देश शामिल हैं। इन देशों में चाय पीना रोजाना दिनचर्या से लेकर समारोह अगर हैं तो वहां भी इनका प्रचलन बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि चाय आसानी से और बेहद कम लागत में उपलब्ध हो जाती है। अब अगर हमें भी बातचीत करनी हो तो जरूरी नहीं हम बहुत बड़े होटल या रेस्टोरेंट में जाकर बैठे, एक टपरी पर भी हम आराम से 5-6 रूपये की एक चाय की छोटी प्याली लेकर
1: स्वादिष्ट मिलती है
0: और वहां घंटों बैठकर बतिया सकते हैं।
1: बिल्कुल। और हालांकि चाय के भी कई रूप हैं और हर रूप में इसका स्वाद भी अलग है। अलग अलग क्षेत्रों में चाय बनाने के तरीकों में भी भिन्नताएं हैं। कोरोना महामारी के दौरान में कई ऐसे लोग जो चाय नहीं पीते थे, लेकिन वो भी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अदरक, लौंग, इलायची वगैरह सब चीजें।
0: और भाई चाय के चक्कर में तुम ये ना भूल जाओ कि इस अंतराल का समय हो चला।
1: हाँ, मैंने देख लिया आपको, आप मुझे कह रही हैं कि अब बस करो, अब बस करो।

0: विविध भारती पर इस समय कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली और आपके साथ हाजिर हैं हम सखियां, मैं चंचल वर्मा
1: और मैं आरती श्रीवास्तव।
0: और भाई हम बात कर रहे थे ना अदरक लौंग इलायची वाली अंदाज की।
1: आरती अंतराल का समय हो गया, चाय टी टाइम हो गया है।
0: हाँ तो अब समय है एक प्यारा सा कमेंट पढ़ने का। हमारे श्रोता लिखते हैं कि चाय एक तृप्त करने वाला पेय है जो भोजन के बीच भूख को नियंत्रित करने में मदद

0: करता है। ये हृदय के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखता है। चाय के जो मसाले हैं उन्हें चाय के साथ मिला देने से पॉलीफेनॉल का अच्छा स्रोत मिलता है, जो रक्त में वसा का स्तर नियंत्रित करता है और धमनियों में जमाव को रोक देता है।
1: बिल्कुल, बस एक बात का ध्यान रखिए कि खाना खाने के तुरंत बाद चाय मत पीजिए, और चाय पीने से पहले आप एक गिलास पानी पी लेंगे तो जो अगर थोड़ा बहुत आपको लगता है कि हाँ चाय एसिडिटी कर रही है तो वो चीज नहीं होगी। अब हम श्रोता का अपने कमेंट ले रहे हैं, तो हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि सिर्फ आज ही के दिन क्यों, हम तो चाय दिवस हर दिन हर सुबह शाम मनाते आए हैं और मनाते रहेंगे, चाय पीते आए हैं और पीते रहेंगे। सखी सहेली प्रोग्राम खत्म होने के बाद आज की चाय हमारी ओर से आप सभी को पिलाई जाएगी। जो चाय से करते हैं प्यार वो इस आमंत्रण से कैसे करें इनकार। इस बात पर गुजराती मुहावरा चाय चा बाकी बीजा पीना वगड़ा नवा।
0: क्या बात है,
1: क्या बात।
0: और जैसे तुम बता रही थी ना, बहुत सारे जो फ्लेवर डाले जाते हैं, स्वाद डाले जाते हैं, जिसमें अदरक, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, तो बहुत सारे लोग इसे इम्यूनिटी बूस्टर झिंगा टी कहते हैं, कुछ मसाला टी कहते हैं, लेकिन जो थोड़ा स्वास्थ्य की तरफ ज्यादा ध्यान देने वाले लोग हैं वो दूध वाली चाय ना पी के ब्लैक टी या ग्रीन टी, हरी चाय जिसे कहते हैं, उसे पीना पसंद करते हैं। लेकिन भारत में अधिकांश लोगों की जो पसंद है वो दूध वाली चाय ही होती है, और कड़क चाय जिसे हम कहते हैं ना वो पीना पसंद करते हैं।
1: अगर आप चाहते हैं कि चाय जैसे हमें लगती है दूध वाली, बहुत ज्यादा दूध मत डालिए उसमें, अगर आपने एक छोटा चम्मच दूध भी डाला ना तो भी चलेगा, तो भी आपको वो नुकसान नहीं करेगी। बहुत ज्यादा दूध डालने से थोड़ा सा एसिडिटी का परेशानी कर देती है, तो आप इस तरह से बना के पी सकते हैं। भाई चाय तो चाय है। और एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि एक कप चाय का महफिलें जमा देता है और कई मसले जो है वो सुलझा देता है, और हाँ मेरे जैसे चाय के दीवाने पति से एक कप अदरक इलायची वाली चाय से धर्म पति के कई फरमाइशें भी पूरी करा देता है। इस साल इंटरनेशनल टी डे का विषय है चाय की उपयोगिता बनाए रखना। मुबारक हो सबको अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। मैं तो सिर्फ चाय का दीवाना दीवाना दीवाना, मतलब इनकी वाइफ जो है वो इनसे सब अपने जो चीजें हैं कि भाई साड़ी लानी है, ये काम करना है, वो काम करना है, वो करवा लेती है,
0: चाय की प्याले भी करवा लिए जाते हैं
1: कब चाय मिल जाने पे।
0: अगले श्रोता का कहना है कि चाय हमें धैर्य सिखाती है, धीरे धीरे उबालना, खुशबू फैलाना, फिर दिल को सुकून देना। शायद इसीलिए कहा जाता है चाय सिर्फ एक पेय पदार्थ नहीं बल्कि एक भावना है। एक और बड़ा अच्छा सा संदेश है जिसपे लिखा गया है, सुनो तुम ना बड़े गजब हो, बिल्कुल चाय की तरह मेरी तलब हो, सांवला है रंग, थोड़ा कड़क मिजाज है, मेरी खुशियों की चाबी बस चाय का प्याला है।
1: ओहो, क्या बात है भाई,
0: लिखने का अंदाज ही बड़ा प्यारा है इनका।
1: एक और मैच होता है जो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर बशीर बद्र का, मतलब एक जो शायर है उनका एक बेहतरीन शेर है कि हंस पड़ी शाम की उदास फजा, इस तरह चाय की प्याली हंसी, सच ही तो है कि चाय की एक प्याली से उदास शाम भी हंस पड़ती है। चाय तो प्रेम है लेकिन इन दिनों वजन ज्यादा होने की वजह से चाय पीना हमने छोड़ दिया है, सारा दोष भयंकर पड़ रही गर्मी पर डाल दिया है।
0: तो वही चलिए, गर्मी में सुकून देते हैं, राहत देते हैं एक प्यारे से गीत के साथ।

0: भाई हर दर्द की दवा होती है एक कप चाय का प्याला। और हमारे साथी क्या लिख रहे हैं कि सुबह की शुरुआत हो या दोस्तों की महफिल, चाय भारतीय जीवन शैली का सबसे पसंदीदा हिस्सा बन चुकी है। हर घूट ताजगी और स्वाद का एहसास कराती है।
1: बिल्कुल। और हमारे दीक्षित हैं जो लिखते हैं कि अभी भी हम चाय पीते पीते ही मैसेज लिख रहे हैं, मीठे नीम पुदीना और तुलसी पत्ती वाली चाय बनाती श्रीमती जी ने आप दोनों बहनों को दो कप चाय भेजी है, हमने बहुत टेस्टी और शरीर के फायदेमंद ये जो चाय है वो भयंकर गर्मी में वो भेजी उन्होंने। बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो इतनी गर्मी में हमारे लिए चाय बनाती है।
0: हमारे श्रोता साथी लिखते हैं कि हर घूट में घुला अपनेपन का प्यार, चाय की खुशबू से महके हर घर द्वार, थकी हुई सुबह को देती नई मुस्कान, चाय दिवस पर सभी को मेरा स्नेहिल नमस्कार। तो आपको भी नमस्कार और आपको भी चाय दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: बिल्कुल। और एक हमारे जो श्रोता है जो लिखते हैं कि हमारे घर में, मेरे घर में सुबह की जो पहली चाय होती है वो मैं ही बनाता हूँ और इस बहाने मेरी वाइफ को सब्जी बनाने का थोड़ा सा और टाइम मिल जाता है और हेल्प हो जाती है और धीरे से पढ़ना उन्होंने कहा है, मीठी मीठी बातें और शरारतें भी हो जाती है। अरे क्या बात है।
0: हमारे श्रोता लिखते हैं कि सर्दियों की सुबह रजाई में पैर सिकोड़ कर सोया हुआ बचपन और कोयले के लाल अंगारों पर केतली से उड़ती सुगंधित चाय की नींद को तोड़ती हुई सीधे पेट में पहुंच जाती और बिना कुछ सोचे समझे चीनी मिट्टी की पेट के साथ वाला कप और उसके साथ घी के बने हुए नमकीन कुरकुरे पराठे के साथ सर्दियों की सुबह की शुरुआत होती थी। और हमारे लिए बचपन की जो चाय और पराठे की दुनिया थी ये सबसे लजीज पेय हुआ करते थे। चाय सिर्फ एक चाय नहीं बल्कि हमारे समाज में सम्मान सूचक भी। बिल्कुल सही बात है, सर्दियों में अगर चाय का प्याला मिले तो बात ही क्या है, इस गर्मी में कोई चाय नहीं छोड़ता।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि चाय सिर्फ एक पेय नहीं है बल्कि भारत की आत्मा है, जो सुकून, गहरी बातचीत और नए रिश्तों की शुरुआत के प्रतीक है। चाय के साथ लोगों के गहरे जज्बात जुड़े होते हैं। एक हाथ में मेरी चाय का कप है, एक हाथ में मेरे हाथ तेरा हाथ है, हाथों को तलब है हाथों की और दिल को तलब है साथ की।
0: देखो भाई संदेश बहुत सारे हैं लेकिन चाय विषय ही ऐसा है कि चाय छोड़ना तो छोड़, हम उस विषय को ही नहीं छोड़ पा रहे। हम आगे बढ़ते हैं और फोबिया कैसे कैसे होते हैं इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। फोबिया किसी चीज या स्थिति के प्रति एक अत्यधिक तर्कहीन डर होता है जो अक्सर वास्तविक खतरे से कहीं ज्यादा होता है। ये एक प्रकार की एंजाइटी डिसऑर्डर या चिंता विकार कहा जा सकता है। जैसे कि एक्रोफोबिया, ऊंचाई से बहुत सारे लोगों को डर लगता है, ये भी एक फोबिया हो सकता है। और बताओ कौन कौन से फोबिया होते हैं।
1: फोबिया होते हैं जैसे कि किसी को किसी जगह बंद हो गया, जैसे लिफ्ट में नहीं जाना चाहता कोई,
0: हाँ।
1: तो एक छोटी सी जगह में बंद हो जाने का डर होता है,
0: हाँ।
1: है ना, ये भी फोबिया होता है। किसी को भूतों का डर होता है, तो बहुत से सारे फोबिया ही होते हैं। आपको अगर किसी चीज से बहुत ज्यादा डर लग रहा है अनावश्यक तौर पर तो वो फोबिया ही है।
0: जैसे साइनोफोबिया

0: फोबिया कुत्तों का डर होता है, ग्लासोफोबिया सार्वजनिक रूप से पब्लिकली जो बात करने का यानी कि सबके बीच में आकर बात करने का, उन्हें कुछ कहने का जो डर है उसे कहा जाता है। हीमोफोबिया होता है खून देखने से डर। कई बार लोगों को होता है ना कि कहीं अपने कोई एक्सीडेंट देख लिया, अस्पताल में गए, हमारे कोई परिचित है, यहां तक कि अगर आप सिर्फ ब्लड देने भी गए जांच के लिए तो वो इतना सा खून भी कई लोगों से देखा नहीं जाता, वो फोबिया होता है सिर्फ उनका।
1: बिल्कुल। और एक होता है ट्राइपैनोफोबिया जो कि सुई या इंजेक्शन से

0: वो फोबिया होता है सिर्फ उनका।
1: बिल्कुल। और एक होता है ट्राइपेनोफोबिया जो कि सुई या इंजेक्शन से डर लगता है जिसमें आपको, और सोशल फोबिया जैसे कि सोशल जो भी आप बाहर जाते हैं तो सोशल जो एंजाइटी होती है आपको वो होता है, और बहुत से लोगों के बीच में शर्मिंदगी महसूस होती है तो वो भी एक तरीके का फोबिया है। और एगोराफोबिया होता है वो उस स्थानों या स्थितियों का डर होता है जिनसे बचना मुश्किल हो सकता है या जहां फंस जाने पर मदद नहीं मिल सकती है। तो इसमें पीड़ित जो होते हैं वो खुली जगहों पर, हम जैसे अगर इसमें हमारा फोबिया ऐसा तो हम भीड़ वाली जगहों पर नहीं जाना चाहेंगे, बचना चाहते हैं वहां पर जाने से। तो इस तरीके से जो चीजें होती हैं ये अपने मन का जो डर है जो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो फोबिया कहलाता है।
0: तो फोबिया पर हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन एक गीत सुन लेते हैं।

0: सारे लोग तो सिर्फ बिजली जब कड़कती है उसी से डर जाते हैं। अभी हमारी श्रोता सखी लिखती हैं कि मेरी बेटी छिपकली को देखकर बहुत डर जाती है और सिर्फ देख लेने भर से ही उसकी चीख निकल जाती है। और एक श्रोता ने लिखा है, मुझे सफाई का बहुत फोबिया है।
1: सफाई का बहुत लोगों का होता है कि ये फोबिया, कि मतलब मुझे भी है कि जरा सा भी कुछ गंदा होगा ये क्यों ऐसा हो रखा है, फिर से उसमें लग जाएंगे।
0: हाँ बिल्कुल, उनको हर जगह साफ सुथरापन चाहिए होता है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि फोबिया दो प्रकार के होते हैं, कुछ लोगों को अंधेरे से फोबिया होता है, किसी को स्टेज से डर लगता है, बहुत लोगों को स्टेज पर जाने से बहुत फोबिया होता है, इतना बर्फ हो जाते हैं वो। और मुझे बचपन में फोबिया था, गुब्बारे से मुझे बहुत डर लगा करता था और तब मैं उसको देख भी नहीं पाता था।
1: एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि मुझे सिर्फ भूत प्रेतों से डर लगता है, ये जानते हुए भी कि ये सब कपोल कल्पित है, फिर भी अंधेरा होते ही सारी भूत प्रेत की कहानियां या फिल्में जाने कहां से याद आने लगती हैं और फिर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए रात गुजरती है। तो मतलब ये है कि भूतों का भी इनको, ये अधिकतर लोगों को होता है कि तब तक दिन में नहीं लगता है, रात होते अंधेरा होते लगते रहता है डर।
0: तो चलिए अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं आरती, और गर्मियों में आंखों की देखभाल किस तरह कर सकते हैं इसके बारे में बताते हैं कि आप पर्याप्त पानी पीजिए ताकि आंखों में सूखापन ना आए, क्योंकि आंखों में सूखापन, जलन और बेचैनी ये सभी पानी की कमी के लक्षण होते हैं। और दिन भर पानी का सेवन करने से आंखों में भी नमी बनी रहती है और सूखापन दूर हो जाता है। तैराकी या साइकिलिंग अगर करने वाले कुछ लोग हैं तो उनके उचित जो चश्मे होते हैं वो पहनकर आंखों की सुरक्षा जरूर करनी चाहिए।
1: बिल्कुल, और चश्मे के रूप में आंखों की सुरक्षा क्लोरीन और खारे पानी के संपर्क के साथ साथ तैरते समय बैक्टीरिया से भी बचाती है। और स्पोर्ट्स ग्लासेस और रैप राउंड जो सनग्लासेस होते हैं जो पूरी अपने आंखों, आपके पूरी आंखों को कवर करते हैं, उससे धूल के कणों, मलबे और जो भी आप आ रहा है उससे सीधी धूप से आंखों की रक्षा करते हैं। और अपने दैनिक भोजन में आप पत्तेदार सब्जियां, गाजर और खट्टे फल शामिल कर लीजिए तो ये बेहतर होगा आपके लिए।
0: और बातें आगे बढ़ाएंगे पर एक गीत सुन लेते हैं।

0: देखो, हमारे श्रोता लिखते हैं कि फोबिया एक ऐसा डर होता है जो सामान्य डर से बहुत ज्यादा होता है। किसी चीज, जगह, जानवर या किसी परिस्थिति को देखकर मन में घबराहट होने लगती है। जब हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं तब डरते भी हैं। फोबिया अक्सर पुराने बुरे अनुभव, तनाव या मन में चिंता के कारण हो सकता है, लेकिन इसका इलाज भी संभव है। सही सलाह, काउंसलिंग, सकारात्मक सोच और धीरे धीरे डर का सामना।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि फोबिया मतलब एक भय है जिसकी कोई सीमा तय नहीं, किसी विशिष्ट वस्तु, जानवर या स्थिति के प्रति अत्यधिक तर्कहीन तीव्र भय है जो व्यक्ति के दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। इसके तीन प्रकार होते हैं, विशिष्ट फोबिया, सोशल फोबिया और एगोराफोबिया। किसी को कोई विशेष जानवर से डर लगता है तो किसी को मौसम की स्थिति या प्राकृतिक तत्वों का डर लगता है। मेरा एक सहकर्मी था, अब वो भी मेरे साथ में सेवानिवृत्त हो चुका है। उसे कुत्तों का डर सेवा काल के दौरान लगता था और आज भी लग रहा है। मतलब वो जो डर है

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।
1: इस आयोजन की जिसकी चर्चा भी हो रही थी
2: बिल्कुल जाना है शुरू होने वाला है
1: और कुछ ही समय बाकी है तो जो मुंबई में रहने वाले हमारे श्रोता हैं वो जरूर ही इसका हिस्सा बनेंगे।
2: पहुंचिए फटाफट।
1: और हम बात कर रहे थे आंखों की।
2: तो एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि तेज गर्मी और एसी वगैरह में अगर बैठे हैं आप बहुत ज्यादा तो वहां आंखें जल्दी सूखती हैं और आंखों के प्राकृतिक आंसू के स्तर को बनाए रखने के लिए विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए आप आई ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: इसके अलावा हमारे श्रोता ने लिखा है कि गर्मियों में पिंक आई यानी कंजक्टिवाइज का जो है संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है और अपनी आंखों को ऐसे में बार बार ना रगड़े। घर अगर आप लौटते हैं कहीं बाहर से धूप से तो साथ साथ आंखों को भी साफ पानी से जरूर धोया करें।
2: बिल्कुल। और धूल प्रदूषण से बचें। और साथ ही हमारे एक श्रोता है जो लिखते हैं कि गर्मियों में आंखों की देखभाल करना बहुत जरूरी होता है। तेज धूप और गर्म हवा और धूल से आंखों में जलन या खुश्की हो सकती है तो आप धूप का चश्मा जरूर पहनिए।
1: बिल्कुल। और हम सुन लें गाना और है ये कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: और देखो आरती, कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा, लेते हैं हमारे सुनने वालों से इजाजत। हाँ बिल्कुल, चंचल वर्मा
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।

0: नमस्कार श्रोताओ, विविध भारती के स्टूडियो नंबर एक से मैं हूं संगीता श्रीवास्तव लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश। मौसम बेशक करवटें ले चुका है श्रोताओ, और हमारे श्रोता भी अपने अपने काम में व्यस्त हैं। ऐसे में विविध भारती से आपके रेडियो तक पहुंचते गीत है ना किसी शीतल छाया की तरह। इन्हीं गीतों की झनकार लिए आ चुका है आपका पसंदीदा प्रोग्राम हेलो फरमाइश, जो सज रहा है हमारे श्रोताओं की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातों से और उनके पसंदीदा गीतों से। तो चलिए शुरू करते हैं बातों का सिलसिला, और ये बजी टेलीफोन की घंटी। चलिए देखते हैं ये पहला कॉल किसका है। ध्यान से सुनिए, कहीं ये आपका कॉल तो नहीं। हेलो फरमाइश। हाँ जी बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है?
1: मेरा नाम पूरन वर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का नाम अंजनल बुगला से बात कर रहा हूँ। मैडम,
0: तो विविध भारती में आपकी बात हो रही है, बताइए अपने जयपुर शहर के बारे में कुछ।
1: जी मैडम, बहुत खुशी हो रही है विविध भारती में मेरा कॉल लग गया। यहाँ मौसम बढ़िया है मैडम, गर्मी पड़ने लगी। आपके वहाँ बम्बई में कैसा हो रहा है मौसम मैडम?
0: बम्बई का तो मौसम इस समय थोड़ा बहुत गर्म है, वैसे तो मौसम यहाँ का खुशगवार ही रहता है। राजस्थान के बारे में कुछ बताइए, पिंक सिटी कहा जाता है इसे।
1: पिंक सिटी कहा जाता है, और यहाँ जयपुर में ना दूर दूर के श्रद्धालु आते हैं मैडम। यहाँ घूमने के लिए जगह है बहुत सारी, जैसे रामनिवास बाग हो गया और आमेर किला हो गया, आमेर की माता हो गई।
0: अच्छा, तो यहाँ का तो खान पान भी बड़ा प्रसिद्ध है।
1: हाँ जी, यहाँ खान पान बड़ा दाल बाटी चूरमा होता है मैडम।
0: अच्छा, तो ये बताइए कि विविध भारती सुनते रहते हैं?
1: जी मैडम, मैं विविध भारती सुन रहा हूँ 2011 से, मैं विविध भारती के साथ जुड़ा हूँ मैडम।
0: अच्छा, कार्यक्रम कौन कौन से अच्छे लगते हैं आपको?
1: मेरे को सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, मैं सुबह से लेकर शाम तक सुनता रहता हूँ। ये हेलो फरमाइश हो गया, आज के पनकार हो गए, और ये सखी सहेली में खासकर मेरे बहुत फेवरेट है। उसमें सचिव की बात होती है और सखाओ की बात होती है, कमेंट पढ़े जाते हैं मैडम। बचपन से लेकर हमारे जो भी

0: बातें होती है तो पता जाता मैडम।
1: अच्छा अब ये बताइए कि आप क्या काम करते हैं?
0: जी मैडम हम खेती बाड़ी करते हैं और इस टाइम तो खेत खाली है।
1: अच्छा चावल की तैयारियां हो रही होंगी या क्या लगेगा गर्मी के बाद फिर?
0: जी अभी इसे बाजरा की फसल लगाएंगे मैडम, एक डेढ़ महीने बाद बाजरा बोएंगे।
1: अच्छा तो चलिए अब आप बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
0: जी मैडम आज फिल्म का नाम रहेगा सलाके और इसमें गाने के बोले धक धक वाला ऐसा कुछ गाना है वो सुनना चाहूंगा मैडम मैं।
1: तो चलिए आपके रेडियो सेट पर आ रहा है ये गीत आपकी पसंद का, सुनिए।

0: हेलो फरमाइश, बताइए कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए।
1: मेरा इंतजारिया प्रयाग से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा, क्या करते हैं
1: जी? अभी पढ़ाई कर रहे हैं।
0: अच्छा, कौन से क्लास में है?
1: नाइन्थ में।
0: नाइन्थ में, तब तो बड़ी सारी जिम्मेदारियां आ रही हैं। नाइन्थ का एग्जाम तो बहुत सावधानी से देना पड़ता है क्योंकि उसके बाद तो टेंथ आ जाता है, तो जिम्मेदारियां नाइन्थ से बढ़ जाती हैं। तो बताइए तैयारियां कैसे चल रही हैं आपकी, और अभी तो वैसे रिजल्ट आ गया होगा।
1: जी।
0: अच्छा, तो आप दसवीं क्लास में चले गए।
1: जी, आपके कार्यक्रम सारे सुनते हैं।
0: अच्छा, कौन कौन सा कार्यक्रम अच्छे लगते हैं?
1: आज के फनकार, गीतों भरी कहानी, आज के मेहमान, सारे कार्यक्रम सुनते हैं।
0: तो आप तो पढ़ाई भी साथ साथ करते हैं और रेडियो भी साथ साथ सुनते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो रेडियो से आपका जुड़ाव कैसे हो गया?
1: रेडियो जुड़ाव बचपन से सुन रहे हैं रेडियो को।

0: क्योंकि देखिए आजकल जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर तो मोबाइल देखते हैं और ज्यादातर टीवी देखते हैं, रेडियो की तरफ तो झुकाव होना बहुत अलग बात है, लेकिन आप रेडियो सुनते हैं ये बहुत अच्छी बात है। तो आपको कौन सा विषय अच्छा लगता है?
1: हमें जो सखी सहेलियां जो विषय रखते हैं आप लोग बहुत ही अच्छा लगता है।
0: अच्छा, क्योंकि उसमें बहुत सारी जानकारियां होती हैं।
1: हाँ, हमें मोबाइल ज्यादा नहीं देखना चाहिए क्योंकि इसमें आंख में रोशनी भी जा सकती है।
0: तो आप अपने आप को मोबाइल से कैसे दूर रखते हैं?
1: क्योंकि हम रेडियो सुबह से शाम तक सुनते रहते हैं, हमारी पढ़ाई भी चलती रहती है।
0: तो बहुत अच्छी बात है। आप ये बताइए कि आप अपने साथ के जो बच्चे हैं जो आपको सुन रहे हैं इस समय रेडियो पर, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
1: उनके लिए मैं ही कहेंगी कि आप भी पढ़ाई करिए, रेडियो सुनिए, मोबाइल से ज्यादा दूर रहिए।
0: और अपने शहर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे?
1: बिल्कुल, यहाँ संगम है, बहुत ही अच्छा संगम है।
0: तो ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अभी से हम दे देते हैं क्योंकि आप 10वीं में आ गए हैं। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: चंदना में फिर तेरी कहानी याद आई, काले बोलने दिल में सनम की सूरत आंखों में आके दे, मेरे खुदा मुझे एक और जिंदगी दे।
0: और अब सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश
1: मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा गांव गुरपुरी से गोल्डी बात कर रहा हूँ।
0: हिमाचल प्रदेश कांगड़ा, ये तो बहुत सुंदर जगह है गोल्डी जी।
1: जी जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल
0: जी। तो आजकल क्या मौसम है वहाँ?

0: हेलो फरमाइश। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं, नाम बताइए।
1: हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदाना का इंदौर से।
0: क्या करती हैं हसीना जी?
1: सिलाई करती हूँ मैडम।
0: अच्छा, तो इंदौर के क्या हाल हैं?
1: अच्छा हाल है, मगर गर्मी तो सब दूरी है मैम।
0: तो गर्मी से बचने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या खास है, क्या खान पान है, या किस तरह से गर्मी से निजात पाने की कोशिश की जा रही है?
1: गर्मी के लिए तो एक शायरी कर देती हूँ आपके लिए। इस गर्मी में थोड़ी सी ठंडक का एहसास हुआ जब आपकी आवाज का हमारे कानों में आगाज हुआ।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो ये तो विविध भारती की आवाज है, और इसका जब आगाज होता है तो फिर हर तरफ शीतलता ही शीतलता होती है, और बहुत हमारे श्रोता
1: ठंडक पहुँचाते हैं आपके गाने। जो मुंबई से आते हैं ना मैडम, बहुत ठंडक पहुँचाते हैं, शीतलता देते हैं।
0: जी जी जी। हसीना जी, अपने काम काज के बारे में बताइए।
1: मैं गनी बेग का काम करती हूँ, जूट का होता है मैडम। सुबह हम 9:30 बजे चले जाते हैं और 6 बजे वापस आते हैं। मतलब घर का भी काम करना पड़ता है, बाहर का भी करना पड़ता है।
0: तो जूट का काम, क्या काम, कुछ बनाती हैं उसका?
1: इसका रिपेयरिंग होता है मैडम, हाथ से रफू होता है।
0: अच्छा अच्छा, और क्या करती हैं
1: इसके अलावा? तो बस अभी कहीं पर भी कॉल रहते तो लगाती रहती हूँ मैं, आप लोगों को सुनती रहती हूँ। हेलो सहेली में भी और विविध भारती के जितने भी कार्यक्रम आते हैं, अभी जब मंच आएगी तो आपने शुरू करा, इसके लिए भी शुक्रिया।
0: अच्छा हसीना जी, एक बात बताइए कि आप काम करने भी जाती हैं, घर भी संभालती हैं, तो इस बीच रेडियो कैसे सुनती हैं?
1: मैडम दुकान पे भी रेडियो रहता है दिन भर, और घर पे भी रहता है,
0: तो काम भी चलता रहता है, रेडियो भी चलता रहता है। तो हसीना जी, अब आप ये बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम इम्तिहान और गाने के बोल।

0: हेलो फरमाइश, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार,
1: मैं अमृतसर से बोल रहा हूँ जी, शरण पल्ला जी।
0: अच्छा,
1: महाराष्ट्र आम की मुंबई, सुंदर मुंबई। मैं बम्बे में रहा हूँ 18 साल जी।
0: मुंबई में किसी कामकाज के सिलसिले में रहते थे?
1: हेल्पर था मैं नेवी, जब ये त्रिशूल और विजय बनते थे ना, विक्रांत चालू हुआ था, मैं उस टाइम बम्बे में ही था जी।
0: अच्छा अच्छा,
1: मैं अभी मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं फिर अमृतसर आ गया जी, मेरे को हो गए 20-22 साल अमृतसर में जी।
0: अच्छा अच्छा, तो अमृतसर के क्या हाल है बताइए?
1: अमृतसर में इस टाइम गर्मी बहुत है मैडम जी, फसल तो कट गई है, खेत खाली पड़े हैं बस।
0: जी जी जी, और वैसे भी बहुत ज्यादा गर्मी हो तो थोड़ा घर में ही रहना ज्यादा दोपहर के समय अच्छा होता है।
1: ये आप लोग बताते रहते हैं ना कि गर्मी में 12 बजे से लेके 4 बजे तक बाहर मत निकलो, सुन के अमर भी करते हैं। अमृतसर तो खाने पीने वाला शहर है जी, मेरा वैसे अमृतसर के बाजू में अटारी गाँव है, वाघा बॉर्डर।
0: तो अमृतसर तो बड़ी सुंदर जगह है।
1: बहुत सुंदर है जी, बहुत सुंदर, गोल्डन टेम्पल, दुर्गियाना मंदिर, जलियांवाला बाग, घूमने लायक जगह है जी।
0: जी जी जी,
1: बॉर्डर जो हमारा अटारी है वहाँ शाम को रोज 25-30 हजार आदमी इकट्ठा हो जाता है जी, झंडा उतरता है लश्कर। हाँ जी,
0: हाँ हाँ, तो वो सेना का जो ये कार्यक्रम होता है बहुत ही अच्छा होता है।
1: हाँ जी,
0: एक बात बताइए, जो अमृतसर का यानी पंजाब का सुंदर सी परंपरा है सांझा चूल्हा की, इस बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: हाँ जी, सांझा चूल्हा, जैसे परिवार एक साथ रहते थे ना जी, सांझा चूल्हा उसको बोलते हैं कि परिवार एक और चूल्हा एक ही बनेगा, सबकी रोटी बनेगी। अभी सांझा चूल्हा तो खत्म हो गया, अभी तो एक एक बेटा कहाँ, एक बेटा कहाँ, पहले एक ही घर में 25-25 जी रहते थे, तो तंदूर भी एक चलता था, तो रोटी सारा मोहल्ला बनाता था, तो चूल्हा एक होता था, सारे खानदान की रोटी बन जाती थी, बोलते थे सांझा चूल्हा। ये टीवी सीरियल भी आया था सांझा चूल्हा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और अमृतसर या पंजाब की कहें तो वहाँ की जो खेती बाड़ी है, वहाँ की परंपरा जो है, और वहाँ का खान पान बढ़ाई। तो अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए, और बताइए कि विविध भारती आप ही सुनते हैं या आपके परिवार?
1: मैं अकेला ही सुनता हूँ बहुत। मैं तो ना जी, जब बड़े बड़े रेडियो भी होते थे ना जी, पनाका गीत माला आता था सिलोन से, मैं तभी से जुड़ा हुआ हूँ।
0: तो अब आप बताइए कि आप कौन सा अपने पसंद का गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म मनोज कुमार की पत्थर के सनम है जी, विजय रहमान मुमताज, तौबा ये मतवाली चाल, चुपचाप फूलों की डाल।
0: तो सुनिए लीजिए अपनी पसंद का ये गीत,
2: तौबा ये मतवाली चाल।

0: हेलो फरमाइश
1: मैम। नमस्ते।
0: नमस्कार, बोलिए कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैम मैं ग्राम अलीनगर बरेली उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ मैम। मेरा नाम है मोहम्मद उमर रैना।
0: रैना जी बताइए क्या हालचाल है आपके, क्या करते हैं?
1: जी मैम बहुत बढ़िया हालचाल है मैम। आज बहुत दिनों में कॉल लगी मैम, बहुत खुशी हो रही है मैम। जी मैम मैं कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री उसमें काम करता हूँ मैम।
0: तो कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं क्या?
1: जी मैम पीना पसंद करते हैं गर्मी में मैम।
0: अच्छा, तो कोल्ड ड्रिंक के बारे में हमें कुछ बताइए कि वहाँ फैक्ट्री में क्या काम करते हैं आप?
1: जी मैम मैं वहाँ मैन्युफैक्चरिंग का काम देखता हूँ मैम, जो है डिस्पैच का काम देखता हूँ, सुपरवाइजर हूँ मैम वहाँ में। ये तो मैम जो है लोड कराते हैं कंपनी मैम, जो है बढ़िया से बनती है मैम, ये चीनी से और इसकी जो होती है वगैरह वगैरह उससे बनती है मैम।
0: अच्छा, तो ये कोल्ड ड्रिंक बच्चे भी बहुत पीते हैं और सबको भी बहुत पसंद है?
1: जी जी मैम ये चीनी से बनती है मैम।
0: तो इसमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है कि भाई इसको कम पिए?
1: जी मैम कोल्ड ड्रिंक है जैसे सोटनर की कोल्ड ड्रिंक होती है मैम, ये बच्चों को से भी बच्चों को कम पिलाना चाहिए सोटनर की कोल्ड ड्रिंक मैम। ये कहना चाहता हूँ सोटनर के माल से बच्चे रहे मैम, चीनी का माल पिए और कंपनी का माल पिए, अच्छा माल पिए मैम, उससे कुछ नहीं होता मैम। सोटनर का माल पीने से थोड़ी बीमारी होती है।
0: और इसके अलावा और क्या काम करते हैं? यही है आपका मेन काम?
1: जी मैम यही काम है, गाँव में दुकान है मैम अपनी।
0: अच्छा, रेडियो विविध भारती भी आप सुनते रहते हैं?
1: जी मैम मैं ये सब बहुत सुनता हूँ मैम, मेरा बचपन से शौक रहा रेडियो सुनना मैम, और विविध भारती तो बहुत समय सुनता हूँ मैम। इससे पहले एक प्रोग्राम आता था ऐसे में इसके बहाने बीबीएस के तराने, ये मैम तो बहुत पसंद था मैम।
0: तो ठीक है, अब आप ये बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: जी मैम फिल्म का नाम है आई मिलन की रात और गाने के बोल है कितने दिनों के बाद आई सजना रात मिलन की।
0: तो हम आपको सुनवा रहे हैं

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार भाई।
0: नमस्कार, बोलिए कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है?
1: मैं सुरेश रामू साबले ग्राम सामनापर तालुका कागल जिला कोल्हापुर से बात कर रहा हूँ। सही,
0: क्या हालचाल है कोल्हापुर के सुरेश जी?
1: गर्मी साधारण है और हमदे करवांदा का मौसम है, धान मेवा है। वैसे पिछले साल में बंद रहता हो, घर में रहता हो, सुनता हो।
0: और सुरेश जी ये बताइए कि कोल्हापुर में गर्मी कैसे पड़ रही है?
1: गर्मी बहुत है।
0: तो फिर दिनचर्या कैसी रहती है?
1: दिनचर्या क्या है, सभी उठता हो, रेडियो सुनता हो, भजन सुनता हो, भजन गाता हो, भजन मंडल है, भजन मंडल में भजन गाता हो।
0: अच्छा, तो भजन भी गाते हैं, तो कुछ सुनाइए भजन।
1: दक्कनचा राजा ज्योतिबा माझा बोलूया चांगे भले, दक्कनचा राजा ज्योतिबा माझा बोलूया चांगे भले, सासन काठी डुले ज्योतिबाची सासन काठी डुले, सासन काठी डुले ज्योतिबाची सासन काठी डुले, सासन काठी डुले डुले।
0: बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा आप गाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इसको ढोल मंजीरे के साथ गाते होंगे तो ये भजन और भी अच्छा और भी सुंदर लगता होगा, है ना? तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब ये बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मैंने तैयार किया लता मंगेशकर एस बी बालसुब्रमण्यम, और गीत है देव कोहली, संगीतकार का नाम है राम लक्ष्मण। बोल भाई दिल दीवाना दिल सजना के ये पगला है समझाने के समझे ना।
0: ठीक है सुरेश जी, आपकी पसंद का ये गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, लीजिए सुनिए।

ये था हेलो फरमाइश कार्यक्रम। आप सुन रहे थे अपनी पसंद के गीत। आपको याद दिला दें श्रोताओं कि आज इस कार्यक्रम में जिन श्रोताओं के कॉल हमने शामिल किए हैं वो कृपया हमें 2 महीने बाद ही दोबारा फोन करें, जिससे हमारे दूसरे श्रोताओं को भी कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिल सके। हेलो फरमाइश कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कीजिए हमारा फोन नंबर 4002466 2। मुंबई का STD कोड है 022। हमारा दूसरा टेलीफोन नंबर है 2867-0288। एक बार फिर आपको बता दें हमारा फोन नंबर आप नोट करें 4002466 2। मुंबई का STD कोड है 022। हमारा दूसरा टेलीफोन नंबर है 2867-0288। मुंबई का STD कोड 022। इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है प्रत्येक गुरुवार शाम 4 बजे से। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुर्लेकर का, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। तो अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात और फिर होंगी ढेर सारी बातें। तब तक के लिए संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से प्रसारित राष्ट्रीय सेवा विविध भारती के कार्यक्रम। एफएम 103 पर आकाशवाणी का यह झांसी केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजे हैं। युवा साथियों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। मैं चंचल कुशवाहा आपका स्वागत करती हूं आज के कार्यक्रम युवाड़ी में। दोस्तों, आज हम करेंगे ढेर सारी बातचीत और करेंगे मनोरंजन कुछ फिल्मी गीतों के साथ। तो चलिए दोस्तों, फिर हम चलते हैं अपने कार्यक्रम की ओर। दोस्तों, कहा जाता है कि जहां शांति होती है वहीं तरक्की अपने कदम बढ़ाती है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो हमारे देश की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है, और वो है आतंकवाद और हिंसा विकास के बड़े दुश्मनों की। दोस्तों, किसी भी देश का विकास तभी संभव है जब वहां के लोग सुरक्षित हों, खुश हों, साथ ही अपने सपनों को पूरा कर रहे हों और हर व्यक्ति खुलकर अपने भविष्य के बारे में सोच सके। दोस्तों, आज का युवा जागरूक है, आज की पीढ़ी शांति, एकता और प्रगति की बात करती है। तो हम सभी अगर अपने आसपास प्रेम, सम्मान और भाईचारे का माहौल बनाए रखें तो समाज और देश दोनों आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि असली ताकत हिंसा में नहीं बल्कि एकता और समझदारी में होती है। इसलिए हमें यह याद रखना चाहिए कि एक छोटा सा अच्छा कदम भी समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है, और अगर हम सब मिलजुल कर रहने की सोच अपनाएं तो हमारा देश और भी मजबूत बन सकता है। तो आइए आज हम सब मिलकर ये संकल्प लेते हैं कि हम शांति और सकारात्मक सोच को आगे बढ़ावा देंगे। तो दोस्तों, इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए अब समय है एक विशेष वार्ता का, जिसमें हम जानेंगे आतंकवाद के खिलाफ जागरूकता, शांति और उद्देश्य के महत्व के बारे में, जिसकी वार्ताकार है सोनाली यादव।
1: आतंकवाद एक ऐसा शब्द है जो न केवल खून खराबे से जुड़ा है बल्कि उससे भी ज्यादा यह डर और असुरक्षा की भावना को जन्म देता है। इस दिन का उद्देश्य सिर्फ किसी घटना को याद करना नहीं है बल्कि यह संकल्प लेना है कि हम उस विचारधारा के खिलाफ हैं जो नफरत फैलाती है और आतंक को औजार बनाती है। आतंकवाद धर्म, भाषा, जाति यह सीमाओं को नहीं देखता, यह इंसानियत का दुश्मन है और इसके खिलाफ सबसे मजबूत हथियार है एकता, शिक्षा और जागरूकता। आतंकवाद विरोधी दिवस का मुख्य उद्देश्य युवाओं को कट्टरपंथ से दूर रखना, समाज में शांति और भाईचारे का वातावरण बनाना और यह सुनिश्चित करना कि हम हिंसा की किसी भी विचारधारा को पनपने ना दें। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां आतंकवाद का स्वरूप बदल चुका है। पहले यह सीमाओं पर हमला करता था, अब यह विचारों में जहर घोलता है। सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें, धार्मिक द्वेष और कट्टरपंथी विचारधाराएं, यह सब आतंकवाद

के नए चेहरे हैं। हमें अपनी भूमिका समझनी होगी। हम सजग नागरिक हैं। हम समाज के ऐसे प्रहरी बन सकते हैं जो अफवाहों से बचे और नफरत भरे भाषणों को फैलने ना दे। भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी युवा पीढ़ी है और आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए सबसे जरूरी है युवाओं का सही दिशा में मार्गदर्शन। आज जब सोशल मीडिया, मोबाइल और इंटरनेट हर किसी की पहुंच में है तो अफवाहें, घृणा और भ्रम भी उसी रफ्तार से फैलते हैं। युवाओं को यह समझना होगा कि हर शेयर किया गया झूठ किसी न किसी सच को मार देता है। हमारी एक लाइक, एक कमेंट या एक फॉरवर्ड किसी मासूम को शक के घेरे में डाल सकती है। आज दुनिया भर में कई देश आतंकवाद से जूझ रहे हैं, लेकिन भारत जैसे देश जहां विविधता ही पहचान है, वहां आतंकवाद की चुनौती और भी गंभीर है। हमारा संविधान हमें विचारों की आजादी देता है, पर उस आजादी के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी है। भारत ने हमेशा शांति और मानवता का संदेश दिया है। महात्मा गांधी ने कहा था, अहिंसा ही सबसे बड़ा हथियार है। और आज जब हम आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं तो यह जरूरी है कि हम वही शांति का रास्ता चुने जहां नफरत नहीं संवाद हो, जहां हिंसा नहीं समाधान हो। आतंकवाद एक सोच की लड़ाई है जिसे नफरत से नहीं, समझदारी से, हिंसा से नहीं, ह्यूमैनिटी से खत्म किया जा सकता है। और उस सोच से लड़ने के लिए हमें एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां हर धर्म का सम्मान हो, हर भाषा को अपनाया जाए और हर व्यक्ति को यह यकीन हो कि वह इस देश का अभिन्न हिस्सा है। कभी कभी सबसे बड़ा साहस युद्ध जीतने में नहीं, शांति बनाए रखने में होता है। एक सैनिक सीमा पर जो कर रहा है, आज हमें वैसा ही साहस अपने भीतर, सोशल मीडिया पर, अपने मोहल्ले में, अपने विचारों में दिखाना होगा। आतंकवाद को हराने के लिए हमें हथियार नहीं, होशियार बनना होगा। युवाओं को विशेष रूप से यह समझना होगा कि किसी भी युग की किसी भी उग्र विचारधारा की पहली शिकार वही होते हैं। इन्हें लक्ष्य बनाया जाता है क्योंकि जहां ऊर्जा होती है वहीं सबसे तेज प्रभाव होता है। आतंकवाद की लड़ाई सोच से लड़ी जा सकती है और सोच बदलने के लिए हमें शिक्षा को बढ़ावा देना होगा, संस्कारों को मजबूत करना होगा और सबसे जरूरी अपने अंदर शांति और सहनशीलता का निर्माण करना होगा। आतंकवाद की सोच न केवल जाने लेती है बल्कि समाज के भीतर घाव छोड़ जाती है। घर के दरवाजे बंद हो जाते हैं, स्कूलों की घंटियां डर में डूब जाती हैं और सबसे खतरनाक भरोसा टूटता है। भारत जैसे विविधता भरे देश में जहां हर 100 किलोमीटर पर भाषा बदलती है, हर जिले में त्योहारों की परंपरा अलग है, वहां आतंकवाद न सिर्फ जान का बल्कि संविधान और संस्कृति का भी दुश्मन है। और इस सोच से लड़ने के लिए हमें सबसे पहले जागरूक नागरिक बनना होगा। कोई संदिग्ध चीज दिखे तो चुप ना रहे, कोई अफवाह सुने तो उसे फैलाए नहीं, किसी भी जातिगत नफरत को जगह ना दें, सोशल मीडिया पर सोच समझकर प्रतिक्रिया दें। आज हम देख रहे हैं कि कैसे दुनिया भर में आतंकवाद ने मासूमों की जिंदगी छीन ली, कोई देश अछूता नहीं रहा। हमारे देश ने हमें एक ऐसा आधार दिया है जो कहता है हम सब भारतीय हैं, पहले और सबसे ऊपर। आतंकवाद ठीक इसी नींव पर हमला करता है, वह हमें बांटना चाहता है, हमसे हमारी पहचान छीनना चाहता है, लेकिन हर बार भारत ने दिखाया है कि हम टूटते नहीं और बढ़ते नहीं। लेकिन भारत ने आतंकवाद से केवल लड़ाई नहीं लड़ी, हमने शांति को कभी मरने नहीं दिया। हमने गीता के उपदेशों, गांधी जी के सत्याग्रह और अब्दुल कलाम के सपनों को जिंदा रखा। जब हम एक दूसरे की तकलीफ समझने लगते हैं, जब हम अपने आसपास के लोगों के दर्द और दुख को महसूस करते हैं,

0: तब हम नफरत के बजाय प्यार, असहिष्णुता के बजाय सहिष्णुता फैलाते हैं। आतंकवाद का उद्देश्य होता है डर, घृणा और अलगाव, लेकिन मानवता की ताकत हमें जोड़ती है, हमें मजबूत बनाती है। अगर हम एक दूसरे की कहानियों को सुने, उनके दर्द को समझें, तो हमारे दिलों में डर की जगह सहानुभूति और विश्वास बढ़ेगा, और यही सबसे बड़ी ताकत है जो आतंकवाद को भीतर से कमजोर कर देती है। आज जब हम यहाँ बैठे हैं एक सुरक्षित माहौल में, तो हमें याद रखना चाहिए कि इस सुरक्षा की कीमत बहुत बड़ी है। किसी ने सीमा पर खड़े होकर दी है, किसी ने अपनों को खोकर, तो किसी ने समाज में शांति बनाए रखने के लिए अपने विचारों की आहुति दी है। हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय आतंकवाद दिवस का लक्ष्य आम लोगों को जागरूक करना है। इस दिन कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित कर युवाओं को हिंसा के खिलाफ जागरूक किया जाता है। कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को आतंकवाद और मानव जीवन पर पड़ रहे गलत प्रभाव की जानकारी दी जाती है। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि आतंकवाद के खिलाफ पूरी जनता और सुरक्षा बलों को मिलकर काम करना चाहिए, ताकि भारत सुरक्षित रहे। राष्ट्रीय आतंकी विरोधी दिवस पर हम सभी को आपसी एकता, भाईचारा को बढ़ावा देने का संदेश मिलता है। तो चलिए, आज हम सिर्फ मौन नहीं रखते, आज हम एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ खड़े होंगे, अपने विचारों से, अपने साहस से और अपने लोकतंत्र की ताकत से। क्योंकि अगर हम चुप रहेंगे तो इतिहास फिर से खुद को दोहराएगा, लेकिन अगर हम जागरूक होंगे तो एक बेहतर भारत बनेगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।
1: तो आइए दोस्तों, आज हम सब मिलकर ये संकल्प लेते हैं कि हम शांति और सकारात्मक सोच को आगे बढ़ावा देंगे और साथ ही साथ आतंकवाद के खिलाफ शांति और उद्देश्य के महत्व को बारे में समझेंगे, और साथ ही साथ हम अपने आसपास रह रहे लोगों को भी जागरूक करेंगे कि वो शांति और उद्देश्य के महत्व के बारे में समझें। तो आइए दोस्तों, अब सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, फिल्म राजी से अरिजीत सिंह की आवाज में यह गीत।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे बेहद प्यारा सा गीत ए वतन फिल्म राजी से अर्जित सिंह की आवाज में यह गीत। तो दोस्तों अब चलते हैं छोटे से ब्रेक की ओर।
1: वक्त बदलता है, दौर बदलते हैं,
2: पर कुछ धुनें कभी पुरानी नहीं होती।
1: ये वो यादगार नगमे हैं जो यादों में आज भी महकते हैं। हर लफ्ज में छुपी है

0: रहती हो।
1: आज का संगीत जो हर पल को बना दे यादगार।
0: तेरी मेरी गल्लाए होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर।
2: जब बीती कल की मिठास और आज की धड़कन

0: सुनते रहिए नए पुराने गीत सुहाने रोज शाम 6:35 पर
1: सिर्फ FM 103 आकाशवाणी झांसी पर।
2: दोस्तों ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है हमारे कार्यक्रम युवाणी में। दोस्तों धीरे धीरे सूरज ढल रहा है, शाम अपने खूबसूरत रंग बिखेर रही है और इसी शाम में अगर हाथों में हो एक कप गर्म चाय तो पूरा दिन जैसे और भी खूबसूरत लगने लगता है। साथ में दोस्तों का साथ होना, बस इतना ही मिल जाए ना तो दिन की सारी थकान कहीं गायब सी हो जाती है, क्योंकि चाय सिर्फ एक स्वाद नहीं बल्कि ये एक फीलिंग्स है। कभी फैमिली के साथ बातचीत करने की तो कभी दोस्तों के साथ एंडलेस गॉसिप्स करने की, और शायद इसलिए भारत में चाय दिलों को जोड़ने का काम करती है। इसलिए आज का दिन बेहद खास भी है, क्योंकि आज पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है वर्ल्ड टी डे को। तो दोस्तों चाय फ्रेशनेस के साथ एनर्जी देती है, कई लोगों के लिए तो यह दिन को पॉजिटिव से भर देती है और साथ ही साथ यह हमारे थकान स्ट्रेस को भी हल्का बना देती है। इतना ही नहीं दोस्तों, चाय में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर को रिफ्रेश रखने में मदद करते हैं, और शायद इसलिए भारत में चाय सिर्फ एक स्वाद नहीं बल्कि इमोशंस और कनेक्शन का हिस्सा बन चुकी है। तो दोस्तों इस शाम को हम और भी खूबसूरत बनाने वाले हैं, फिलहाल छोटे से ब्रेक के बाद।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
4: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प

0: अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है हमारे कार्यक्रम युववाणी में। दोस्तों सच में भारत में चाय सिर्फ एक टेस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि अब ये बन चुका है एक शानदार स्टार्टअप आइडिया और यूथ इंस्पिरेशन भी। आज इंडिया में टी स्टार्टअप का ट्रेंड तेजी से बढ़ता जा रहा है, और जब टी स्टार्टअप की बात होती है ना तो एक नाम जरूर सामने आता है, और वो है प्रफुल्ल बिल्लौर, जिन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए एक अलग रास्ता चुना था। उन्होंने MBA की तैयारी की, लेकिन जब चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो गई तो उन्होंने हार मानने के बजाय एक नया कुछ करने का फैसला किया, और फिर शुरू हुई MBA चाय वाला की कहानी। शुरुआत एक छोटी सी चाय की दुकान से हुई, लेकिन उन्होंने कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन और यूनिक आइडिया से लाखों युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन बन गए। तो दोस्तों अगर आप भी प्रफुल्ल बिल्लौर से इंस्पायर्ड हुए हैं तो आप भी अपने करियर में इन सारी चीजों को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी चाय पीना पसंद है और लोगों को चाय पिलाना पसंद है तो आज से ही इस स्टार्टअप के बारे में जरूर सोचिए। तो दोस्तों सक्सेस पाने के लिए मेहनत, कंसिस्टेंसी और खुद पर भरोसा होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आज से ही आप इस शाम को और खूबसूरत बनाने के लिए तैयार हो जाइए और एक कप चाय को लेकर जरूर बैठिए, क्योंकि दोस्तों अब प्रोग्राम में और भी मजा आने वाला है। तो दोस्तों जब तक कहते हैं ना कि चाय मीठी ना हो, चाशनी ना हो उसमें, तो मजा ही नहीं आता है। तो इसलिए आपको ले चलते हैं इस गीत की ओर, चाशनी की ओर। फिल्म भारत से नेहा वसीम की आवाज में यह गीत, और ऐसे ही आप आनंद लीजिए और चाय को एंजॉय कीजिए।

0: तो दोस्तों अभी आप सुन रहे थे गीत चाशनी फिल्म भारत से नेहा वसीन की आवाज में, बेहद प्यारा सा गीत। और आप सभी को चाय का स्वाद तो आ ही गया होगा, है ना। तो दोस्तों ऐसे ही चाय का स्वाद लेते रहिए। और ये सच बात है कि हमारी सुबह बिना चाय से नहीं हो सकती और ना ही हमारी शाम बिना चाय के खत्म हो सकती है। तो दोस्तों आप सभी ऐसे ही शाम का मजा लेते रहिए और चाय को एंजॉय कीजिए। और भी हमारी बातों को सुनने के लिए इंतजार कीजिए थोड़ा सा, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद।
1: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गईं?
2: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
1: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
2: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
3: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़ें, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
4: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
5: सो इजी।
6: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: दोस्तों ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे कार्यक्रम युवाणी में। दोस्तों जैसा कि हम सभी ने अभी बात की है सक्सेस की, कि अगर सक्सेस चाहिए हम सभी को तो हमारी रूट्स, हार्ड वर्किंग, कंसिस्टेंसी को इम्पोर्टेंस देना काफी जरूरी है। क्योंकि जब अपनी रूट्स मजबूत होती है तो सक्सेस की राह भी और खास बन जाती है। और कहा भी जाता है कि पेड़ जितना ऊंचा होता है उसकी जड़ें उतनी ही मजबूत भी होती है। ठीक वैसे ही आज यूथ चाहे दुनिया के किसी भी कॉर्नर में पहुंच जाए, उसकी असली आइडेंटिफाई हमेशा उसकी रूट से ही जुड़ी होती है। आज इंडियन यूथ्स टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप और इनोवेशन के थ्रू ग्लोबली अपनी पहचान बना रहा है। लेकिन सबसे इंस्पायरिंग बात यह है कि मॉडर्न बनने के साथ साथ आज का यूथ अपने कल्चर और ट्रेडिशन को भी प्राउडली प्रेजेंट कर रहा है। तो दोस्तों अपनी संस्कृति का सम्मान करना कोई एक ओल्ड फैशन नहीं है, बल्कि अपनी पहचान को समझना भी है। हमारी लैंग्वेज, फेस्टिवल्स, कल्चर, यही हमें दुनिया में यूनिक बनाते हैं। तो आइए दोस्तों हम सभी मिलकर हम ग्लोबल बनते हैं, आगे बढ़ते हैं और सक्सेस को हासिल करते हैं। तो दोस्तों आज की ये थी हमारी बातचीत, आज हम सभी ने इतनी सारी बातचीत की और आपको कैसा लगा आज के हमारे प्रोग्राम में? तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आज आप सभी को काफी मजा आया होगा और आपने चाय के बारे में मजा तो लिया ही है, आप सभी चाय को एंजॉय भी कर रहे होंगे शाम के साथ। तो दोस्तों आप लाइफ में कैसा स्टार्टअप शुरू करने वाले हैं, क्या इनोवेट करने वाले हैं, ये जरूर हम सभी को आप

अपने आइडियाज थॉट को हमारे आकाशवाणी झांसी के इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल पर जरूर शेयर करें, ताकि हम भी जान सकें कि आप अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ने वाले हैं और कैसे नए नए इनोवेटिव करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारा पिन कोड है 284128। तो इसी के साथ अब अपने दोस्त चंचल कुशवाहा को दीजिए इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, खेलते रहिए और ऐसे ही शाम को मजा बनाते रहिए, आनंद लेते रहिए।

युवा साथियों के लिए अभी युवाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। एफएम 103 पर आकाशवाणी का ये झांसी केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा।

0: विविधा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को अल्पना श्रीवास्तव का नमस्कार। श्रोताओं, आज का विशेष कार्यक्रम लेकर मैं उपस्थित हूं और आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लाए हैं कई विषयों पर चर्चा और साथ ही एक भेंटवार्ता भी आपको सुनवाएंगे, जिसका विषय होगा लू से बचाव के उपाय, क्या करें क्या ना करें। इस समसामयिक विषय पर हम बातचीत करेंगे विशेषज्ञ वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमित कुमार गुप्ता से और साथ ही हम अपने विविधा कार्यक्रम में विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। तो श्रोताओं, आज सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, इसका उद्देश्य क्या है, इस विषय पर। भारत में मनाया जाने वाला राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस हर वर्ष 21 मई को मनाया जाता है और श्रोताओं, इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है लोगों को आतंकवाद और हिंसा के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना, देश में शांति, एकता और सद्भाव का संदेश फैलाना, युवाओं को अहिंसा और मानवता के मूल्यों से जोड़ना। इसके साथ ही समाज में जो कट्टरता है, हिंसा है और आतंकवाद के खिलाफ जन जागरण करना, राष्ट्रीय एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाना। श्रोताओं, आतंकवाद मानवता का शत्रु है, हम सभी मिलकर शांति, प्रेम और भाईचारे का संकल्प लें आज के इस दिवस पर। तो श्रोताओं, इन सभी बातों का तो हमें ध्यान रखना होगा क्योंकि हमें समाज में एकता बनाकर चलना है और शांति का संदेश देना है। इसके साथ ही श्रोताओं, हम आज बात करते हैं मौसम की, क्योंकि देखिए भीषण गर्मी और लू का प्रकोप इन दिनों पूरे उत्तर भारत में तेजी से फैल रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड सहित कई क्षेत्रों में लू का अलर्ट भी जारी किया है। जब तेज गर्म हवाएं शरीर के तापमान को असंतुलित कर देती हैं और शरीर स्वयं को ठंडा नहीं रख पाता है, तब लू या हीट वेव की स्थिति बनती है और ये बच्चों, बुजुर्गों और बाहर काम करने वालों के लिए अधिक खतरनाक हो सकती है। तो तेज धूप से बचाव करें, स्वस्थ रहें। आइए इसी विषय यानी लू से बचाव के उपाय, क्या करें क्या ना करें, सुनिए विशेषज्ञ डॉक्टर अमित कुमार गुप्ता, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ागांव से, और आपसे बातचीत कर रहे हैं हेमंत पाल सिंह बुंदेला।
1: श्रोताओं नमस्कार। जैसा

0: ये आप सभी जानते हैं, आकाशवाणी समय समय पर आप सभी के लिए ज्ञानवर्धक स्वास्थ्य वार्ताओं भेंट वार्ताओं को प्रसारित करता आया है, ताकि आप जागरूक रहें, स्वस्थ रहें और खुशहाल रहें। श्रोताओं, आज हम सभी महसूस कर रहे हैं कि हमारे आसपास का तापमान लगातार 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा रहा है। ऐसे में लू लगने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आमजन इसे सामान्य थकान या धूप का असर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे में लू से जुड़ी सही और आवश्यक जानकारी ही हमारा सबसे बड़ा बचाव है। श्रोताओं, आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय लू से बचाव के उपाय, क्या करें क्या ना करें पर हमारे साथ चर्चा और मार्गदर्शन के लिए हैं डॉक्टर अमित कुमार गुप्ता, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ागांव। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि सामान्य गर्मी और लू में क्या अंतर होता है।
1: नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर अमित गुप्ता, कंसल्टिंग फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट। और हेमंत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे स्टूडियो में बुलाने के लिए। और जैसा कि आपने मुझे पूछा है, सामान्य गर्मी और लू में क्या अंतर होता है। लू को हमारी मेडिकल भाषा में हीट स्ट्रोक बोलते हैं, जो कि सामान्य गर्मी से थोड़ा अलग होता है। सामान्य गर्मी में क्या होता है कि ये कभी भी हो सकता है, इसमें पसीना आता है, बहुत जोर की प्यास लगती है, थकान महसूस हो सकती है, लेकिन जो शरीर का तापमान है वो नॉर्मल रहता है, वो सामान्य सीमा में ही रहता है। जबकि लू में क्या होता है कि हमारा शरीर का तापमान एकदम से बहुत तेज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से शरीर उसको मेंटेन नहीं कर पाता है। इसकी वजह से एकदम से आपको बहुत ज्यादा तेज प्यास लगेगी, तेज बुखार सा महसूस होगा और चक्कर आने की समस्या हो जाती है। कभी कभी लोग बेहोश होकर गिर भी जाते हैं। तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, इस टाइम पे आपको तुरंत ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, लू के शुरुआती लक्षण कौन से होते हैं जिनको आमजन समझें और तुरंत सतर्क हो जाएं?
1: जी बिल्कुल, जैसा कि आप देखेंगे, जब आपको लू का तेज थपेड़ा लगता है तो एकदम से आपको बहुत तेज गर्मी लगती है और उसके बाद में बहुत तेज प्यास होती है, जीभ आपकी सूख जाती है, कभी कभी सरदर्द होने लगता है, वो चक्कर आता है, अत्यधिक कमजोरी होने लगती है, शरीर का तापमान एकदम से बढ़ने लगता है और कभी कभी एक कंफ्यूजन या भ्रम वाली स्थिति पैदा हो जाती है। आपको आंखों के सामने थोड़ा धुंधलापन सा भी महसूस होने लगता है। कभी कभी पानी की कमी की वजह से धड़कनें भी तेज हो जाती हैं। इन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
0: जी, तो ऐसे लक्षण अगर हमारे श्रोता किसी अपने साथी में पाएं तो तुरंत सतर्क हो जाएं। इस तपती गर्मी में डॉक्टर साहब कामकाजी लोग हैं और हमारे किसान भाई हैं, जिन्हें काम के लिए अक्सर बाहर निकलना ही पड़ता है, तो वो अपनी दिनचर्या में क्या बदलाव करें जिससे वो इस भीषण गर्मी में बच सकें?
1: जी बिल्कुल, आपने जैसा कि बोला कि कामकाजी लोगों का मतलब, कामकाजी से मतलब है कि जो अपना सुबह निकलते हैं और शाम को अपने घर पे आते हैं। तो जनरली देखा जाता है कि जो शिफ्ट होती है, जो भी जॉब करने वाले लोग हैं, उनकी शिफ्ट सुबह 9 बजे से स्टार्ट होकर शाम को 5 बजे तक रहती है। वैसे तो उनका टाइमिंग इस हिसाब से है कि यदि वो भरी दोपहरी में ना निकले तो अच्छा रहेगा, बट किसी कारणवश उनको यदि दोपहर में निकलना पड़ता है तो वो अपना टाइमिंग थोड़ा सा ये करें कि तौलिया वगैरह लेके चलें, गमछा या तौलिया, और हल्के और सूती कपड़े, फुल कपड़ों का उपयोग करें, है ना। किसान भाई बहन तो वैसे भी आपने देखा होगा सूती कपड़े ज्यादातर यूज करते हैं, सफेद तौलिया वगैरह गमछा लेके चलते हैं, तो उन लोगों को बहुत पुराना अभ्यास है, तो वो लोग इस चीज को पहले से समझते हैं क्योंकि उनका अधिकांशतः काम खुले में ही रहता है। तो इस सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए, या तो छाता लेके भी चल सकते हैं, छोटे बच्चे हैं या माताएं हैं तो छाता लेके भी चल सकते हैं।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। शरीर को ठंडा रखने के लिए ऐसे कौन से पारंपरिक पेय पदार्थ हैं जो हम रोजमर्रा में ले सकते हैं, जिससे हम अपना शरीर अंदर से ठंडा रख सकते हैं और इस गर्मी से बच सकते हैं?
1: सामान्यतः देखा गया है कि अपने जो भारत है वहां पर जो पारंपरिक पेय पदार्थ हैं वो काफी प्रचलित हैं। जैसे कि आप नींबू पानी बना सकते हैं, नींबू का घोल बना सकते हैं, ओआरएस का घोल घरों में भी बना सकते हैं और बाकी सब जगह पे जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां पर उपलब्ध रहता है। छाछ का उपयोग कर सकते हैं आप, नारियल पानी का उपयोग कर सकते हैं, बेल का शरबत यूज कर सकते हैं। आम पना बहुत फेमस है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, तो आम का पना और बहुत सारा यूज करते हैं, लस्सी भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप पेय पदार्थों में ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। और बाकी मौसमी फल होते हैं तरबूज।

0: तरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, खरबूजा है, इन सब में पानी की मात्रा पर्याप्त होती है, तो आप इन सब का भी यूज कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, अब बात उन साथियों के बारे में करेंगे जो अमूमन तो गर्मी में बचाव करते ही हैं और 11 से 4 तक घरों में रहते हैं, लेकिन अगर उन्हें मजबूरी बस बाहर निकलना पड़े तो वो अपने साथ क्या चीजों को साथ लेकर चले।
0: बिल्कुल, देखिए इमरजेंसी किसी के साथ में कभी भी आ सकती है ना, तो अपन को कभी कभी निकलना पड़ता है, तो उस समय अपन बचाव क्या क्या करना चाहिए। एक तो अपनी पानी की बोतल अपने साथ में रखें, है ना, कहीं दूसरे के भरोसे नहीं रहें कि हमको पानी मिल जाएगा, बट पानी की बोतल हमेशा अपने साथ में रखें। ORS का पाउडर है या उसको बना के ग्लूकोज, ये सारी चीजें रखें। छाता या टोपी रखें अपने साथ में, सूती गमछा वगैरह रखें ताकि वो कहीं यदि आप बाहर निकल रहे एकदम से बस से या रिक्शे से तो उसको बांध सकें, और यदि आप यूज कर सकते हैं तो धूप का चश्मा वगैरह यूज कर सकते हैं, और थोड़ा सा कुछ दवाइयां जैसे उल्टी की है या कुछ एसिडिटी की है, इस तरह की दवाइयां भी साथ में रख सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, अभी आप बात कर रहे थे ORS के बारे में, तो यहाँ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि घर में ORS का घोल कैसे तैयार कर सकते हैं।
0: हाँ देखिए, ORS का घोल बहुत नॉर्मल रहता है, उसमें अपने को नमक पानी मिला लिया और उसके बाद में नमक का कंटेंट्स मिलाना पड़ता है, थोड़ा सा शक्कर की मात्रा मिलानी पड़ती है, और उसे स्वादानुसार आप नींबू वगैरह भी मिला सकते हैं, तो इसमें मिनरल्स भी हो जाते हैं और साथ में ग्लूकोज भी हो जाता है, तो आप ऐसे घर पे भी इमरजेंसी में बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको लाभ देगा।
1: बिल्कुल, हमारे श्रोता ये जो जानकारी डॉक्टर साहब दे रहे हैं इसका जरूर लाभ उठाएंगे। डॉक्टर साहब, अक्सर लोग धूप से घर में आते हैं, तुरंत फ्रिज खोलते हैं, ठंडी बोतल निकालते हैं और पीने लग जाते हैं, या वो तुरंत ही AC ऑन करते हैं और ठंडी हवा में बैठ जाते हैं। ये जो शैली लोगों के बीच में बनी हुई है, तो ये हमारे शरीर पर क्या प्रतिकूल प्रभाव डालती है?
0: आपने देखा होगा कि जनरली बोला जाता है कि आज मुझे लू लग गई है, लपट लग गई है, ऐसे बोलते हैं। ये इसी कारण की वजह से होता है, क्योंकि हम बाहर आते हैं वहां का तापमान एकदम 45 डिग्री 46 डिग्री है, और आप एकदम से अंदर आ गए, AC चल रहा है, उसका टेम्परेचर, तो अपनी बॉडी उसको यूज नहीं कर पाती है, उसको एकदम से जो उसको मेंटेन करना चाहिए वो मेंटेन नहीं कर पाती है बॉडी। इसी वजह से ये टेम्परेचर चेंज की वजह से हमारे शरीर में कुछ चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से हमको हल्का सा बुखार सा या एकदम से थकान सी लगने लगती है
1: जी।
0: और हमको बैठने के बाद में, थोड़ा देर रुकने के बाद में, फ्रिज का पानी भी एकदम से पूरा ठंडा नहीं पिए, उसमें कुछ ना कुछ नॉर्मल पानी मिला के पीना चाहिए,
1: तो एकदम से चिल्ड वाटर जिसको कहते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, यूज ना करें उसको, उससे गला पकड़ने की भी बहुत समस्या होती है,
1: और भी समस्याएं जो है
0: बिल्कुल
1: हो सकती है। तो श्रोता हमारे इन बातों का जरूर ख्याल रखेंगे। डॉक्टर साहब, गर्मी के दिनों में ऐसा कौन सा भोजन है या ऐसा कौन सा पहनावा है हमें उससे परहेज करना चाहिए, जिससे हम अनजाने में लू के खतरे से बच सकें?
0: हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो गर्मियों का सीजन आ जाता है, तो बहुत सारे लोग खाने में बहुत परिवर्तन कर देते हैं, बहुत ज्यादा मिर्च मसाले वाली चीजें बंद हो जाती हैं, जो पूड़ी पराठे हम लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, क्योंकि इसमें तेल ज्यादा रहता है, और तेल रहता है तो हमारे शरीर के टेम्परेचर को वो भी बढ़ाने की कोशिश करता है। तो इस तरह से जो तली भुनी चीजें हैं, मसालेदार है, बाहर का है, ये सब चीजें अपन को अवॉइड करनी चाहिए, और जो लोग भी शराब और जो धूम्रपान करते हैं उनको भी अभी इससे अपना बचना चाहिए,
1: मादक पदार्थों
0: से बचना चाहिए। खाली पेट आप धूप में ना निकले, कुछ ना कुछ खा के आप जाए, और जनरली आपने देखा है कि अपने यहाँ पे काफी मठा रोटी का प्रचलन है, तो वो लोग दही और मठे में और रोटी खाते हैं, ये काफी ठंडक देता है शरीर को, छाछ में मिला के देते हैं,
1: शहरों में छाछ कहते हैं,
0: छाछ कहते हैं, हमारे यहाँ पे मठा बोलते हैं,
1: ग्रामीण क्षेत्रों में मठा।
0: हाँ, और प्याज का सेवन करना चाहिए, प्याज का सेवन करने से बहुत अच्छा रहता है, और अपने हल्के रंग के कपड़े पहने, फुल बाहें के कपड़े पहने,
1: जिससे कि आपको जो लू है वो
0: बचाव कर सकते हैं,
1: उससे आप कर सकें। जी डॉक्टर साहब, अगर किसी व्यक्ति को हमारे सामने लू लग जाए या वह बेहोश हो जाए, तो डॉक्टर के पास ले जाने से पहले या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने से पहले हम उसको प्राथमिक उपचार के रूप में क्या कर सकते हैं?
0: देखिए, ये इमरजेंसी कहीं पे भी आ सकती है, रोड पे भी हो सकती है, कहीं पर स्कूल में भी हो सकती है, तो हमको सबसे पहले तो जो कपड़े पहने उसको थोड़ा ढीला कर दें, छायादार जगह पे उसको लिटा दें, है ना, यदि पानी आपके पास में वहां पर है तो अच्छा थोड़ा ठंडा पानी उसको पिला दें, और थोड़ा पंखा कर दें, हवा कर दें उसको, ताकि उसको जो टेम्परेचर है धीमे धीमे उसका नॉर्मल आ जाए, और यदि ORS वहां मिल सकता है तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा ORS उसको देंगे तो उसका टेम्परेचर भी नॉर्मल होगा, थोड़ा जो शरीर में पानी की कमी हो गई है वो भी पूरी हो जाएगी।
1: जी, इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न और डॉक्टर साहब है, हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि जैसे कभी कभी तापमान बढ़ने के साथ कुछ लोगों के सर में दर्द होना शुरू हो जाता है,

0: सिर्फ उनको मेडिसिन देनी ही पड़ती है, वो बिना मेडिसिन के ये दर्द खत्म नहीं होता। तो ये क्यों दर्द होता है?
1: देखिए क्या होता है कि उस टाइम पे एकदम आप गर्म टेम्परेचर में निकले तो शरीर से पानी का अवशोषण जो बाहर की तरफ निकल जाता है, शरीर में पानी की कमी होती है, जिसकी वजह से अपने शरीर में थोड़ा सा खून गाढ़ापन हो जाता है। इसकी वजह से वो जो अपना ब्रेन है उसके अंदर ट्रांसमीटर्स है वो पानी की डिमांड करते हैं, इसी वजह से थोड़ा सा आपको सर में दर्द का और जी मिचलाने जैसा।

0: क्या सावधानी इन लोगों को बरतनी चाहिए?
1: अब जैसे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और गर्भवती महिलाएं हैं, देखा जाए तो ये तीनों ही लोग थोड़ा सा इनकी इम्यूनिटी कम होती है, एक तो प्रेगनेंसी वजह से, उम्र की वजह से, तो इनकी इनको अपन को एक्स्ट्रा केयर देने की बहुत जरूरत है। इनको कम से कम आप कोशिश करें कि धूप में निकालें, बहुत ही अर्जेंट है तो ही आप इनको निकालें, और इनको पानी आप बिना प्यास के भी थोड़ा थोड़ा करके पिलाते रहें बीच में, क्योंकि वो कई बार बच्चे नहीं बता पाते या बूढ़े लोग हैं जो 70-80 साल के ऊपर हैं, वो नहीं समझ पाते कि मुझे प्यास लग रही है क्या है, नहीं बता रहे हैं, बट आप उनको धीमे धीमे करके कुछ ना कुछ तरल पदार्थ देते रहें। बच्चों को बंद गाड़ी में बिल्कुल ना छोड़ें। जनरली लोग क्या करते हैं कि गाड़ी बैठा दी, मैं सामान लेके आता हूँ 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए, बट वहां पर समय लग गया, बच्चा गाड़ी में बैठा पूरा, वो एक तो ओवन की तरह हो जाता है पूरा, है ना, तो उसको वो थोड़ा सा ध्यान रखें। बुजुर्गों का जो यदि जो बीपी और शुगर के मरीज हैं उनका नियमित रूप से चेक करते रहें, उनकी दवाइयां कुछ कम करनी है, ज्यादा करनी है गर्मी के हिसाब से, क्योंकि खाना पीना भी थोड़ा कम हो जाता है, उस हिसाब से वो भी ध्यान रखें। और गर्भवती महिलाएं हैं, ज्यादा देर उनको खाली पेट ना रखें और उनको अच्छे से तौलिया वगैरह उड़ा के ही भेजें।
0: जी डॉक्टर साहब, अब इसमें सबसे मुश्किल हमें तब प्रतीत होती है जब बच्चों को कंट्रोल करना हो, तो बच्चे बाहर घर से बाहर निकलने के लिए जिद करते हैं, तो उनके लिए क्या हमें सावधानी विशेष रूप से इसके लिए आप हमारे श्रोताओं को बताइए?
1: अब देखिए बच्चे तो मानते नहीं है कई बार, लेकिन उनको थोड़ा समझाना जरूरी है, उनसे बोलिए कि आप सुबह या तो जल्दी सुबह खेलना चाहें तो उस टाइम खेल सकते हैं, या फिर शाम के टाइम 6-7 बजे के बाद में, और उनको टोपी वगैरह पहनने के लिए बोलते, थोड़ा सनस्क्रीन वगैरह उनको लगा दें हाथ में, ताकि वो एकदम से जो सूर्य की रोशनी होती है वो उनके ऊपर पड़ेगी तो उतना नुकसान नहीं होगा। और पानी के लिए विशेषता ध्यान रखें, यदि वो बच्चे खेलने में मशगूल हो गए हैं तो आप बीच बीच में जाके उनको पानी का थोड़ा देते रहें, और एक आध घंटे खेलने दें, बस उसके बाद उनको आप लेके आ जाएं। इंडोर गेम्स हैं जो घर के गेम हैं, उनमें उनको थोड़ा सा उनको यूज करना चाहिए। हाँ बिल्कुल जी,
0: बाहर के गेमों की जगह आप उन्हें इंडोर गेम
1: बिल्कुल
0: अंदर खेलने वाले,
1: क्योंकि घर में क्या होता है वो बाहर इसलिए बोल भेज देते हैं, पेरेंट्स घर में परेशान करेंगे, चलो इनको बाहर वो भेज देते हैं,
0: तो पेरेंट्स की टेक्निक और अब लू के जो मरीज हैं वो उनके लिए सरकारी अस्पतालों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर क्या इंतजाम किए गए?
1: ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमारी सरकार निरंतर रूप से अपने जो पेशेंट्स रहते हैं, लोग जनमानस रहता है, उनके लिए हमेशा वो कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। तो आप जैसे ही किसी भी सरकारी अस्पताल है, चाहे वो पीएससी हो, सीएससी हो, जिला अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज हो, वहां पर एक ओआरएस कॉर्नर बनाया गया है, वहां पानी की व्यवस्था भी है, ओआरएस के पैकेट रखे हुए हैं, वहां पर आप चाहें तो आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं, आप जाएंगे यूज कर सकते हैं। वहां पर एक आपको ठंडा वार्ड बनाया गया है जिसमें एसी या कूलर जैसी हिसाब से व्यवस्था रहती है वहां बनाया गया है, तो ऐसे मरीज आते हैं उनको हम तुरंत वहां पर टेम्परेचर कम करने के लिए वहां पर रख सकते हैं। इमरजेंसी बेड उनके लिए अलग से, जो गर्मी के टाइम में इमरजेंसी बेड उनके लिए अलग से बनाए गए हैं, ताकि सबसे प्रायोरिटी बेसिस पर उनको ट्रीटमेंट किया जा सके। और आवश्यक दवाइयां हैं, देखिए सरकारी अस्पताल में तो 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध रहती हैं, है ना। यदि ये स्पेशली अपन उनको देखें कि जो लू के मरीज हैं उनके लिए हमने अलग से वार्ड बनाए हुए हैं, है ना, ताकि उनको कोई वेटिंग नहीं करना पड़े, उनको एकदम इंतजार नहीं करना पड़े। तो जैसे ही आते हैं उनको हम आईवी सेट वगैरह देख लेते हैं, जीभ की कंडीशन देख लेते हैं, पेशाब कितनी आ रही है, तो उससे पता चल जाता है कि शरीर में डिहाइड्रेशन हुआ है, तो हम तुरंत आईवी वगैरह भी रहता है तो उसमें हम ग्लूकोज की बोतल है, एनएस की बोतल है, ये सब लगा सकते हैं। उल्टी हो रही है तो तुरंत उल्टी रोकने के लिए इंजेक्शन वगैरह हमारे पास में उपलब्ध रहते हैं, हम वो लगा सकते हैं, और जब मरीज ठीक हो जाता है उसके बाद ही उसको हम घर में भेजते हैं।
0: तो बहुत अच्छी जानकारी थी, निश्चित हमारे श्रोता इस जानकारी का लाभ उठाएंगे, और किसी भी परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति लू से प्रभावित या पीड़ित मिलता है तो उसको तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर या जिला चिकित्सालय में हम रेफर करेंगे या पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। वहां पर डॉक्टर साहब ने बताया कि सभी तरह की सुविधाएं मरीजों के लिए मौजूद हैं। अब आपसे ये जानना चाहते हैं कि ग्रामीण अंचल में लू लगने पर कई तरह के टोटके या जिनको हम कहें झाड़ फूंक भी कहीं कहीं प्रचलित है, तो इस बारे में आप श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे?
1: अभी आपने देखा होगा कि अब काफी शिक्षा के क्षेत्र में भी, चिकित्सा के क्षेत्र में भी काफी विकास हो गया है, और लोग धीमे धीमे इस चीज को मानने लगे हैं कि झाड़ फूंक से बहुत ज्यादा हमारा कोई फायदा नहीं होना, उससे थोड़ा साइकोलॉजिकल आपको जरूर फायदा होता है कि, बट क्या होता है कि अपन उनको एकदम से बोलते हैं ना कि आप इसको मत मानो, तो वो एकदम अग्रेसिव हो जाते हैं, तो उनकी बात सुन के हाँ हाँ ठीक है आपकी बात भी ठीक है ये, लेकिन आप ये करिए पहले, तो थोड़ा उनको पॉजिटिव वे में हमको समझाना चाहिए, है ना। तो अब उसका क्योंकि ज्यादा झाड़ फूंक

0: करके यदि पेशेंट को वो रोके रहेंगे तो वो खतरनाक हो सकता है, उसमें जान पे भी बात कभी कभी आ जाती है। इसलिए आप वहां पर उतने देर तक के लिए रखिए जब तक आप घरेलू उपचार कर रहे हैं। यदि आपको लग रहा है कि स्थिति गड़बड़ हो रही है तो आप तुरंत नियत जो सरकारी अस्पताल है वहां पर लेके आ जाइए और तुरंत आपको वहां ट्रीटमेंट मिल जाएगा। और हमारी 108 एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है, आपके घर तक वो आ जाती है और वहां से आपको अस्पताल तक पहुंचा देती है।
1: एम्बुलेंस तो अब टोल फ्री नंबर 108 पर मौजूद है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो आप कभी भी टोल फ्री नंबर डायल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई इमरजेंसी है, डॉक्टर साहब ने जो आपको कंडीशन बताई है या जो परिस्थितियां बताई हैं लू के मरीजों के, अगर आपको लगता है श्रोताओं के किसी मरीज की हालत गंभीर होती नजर आ रही है तो आप सरकारी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। और चलते चलते अब आप हमारे श्रोताओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं?
0: बहुत सारी बातें बता दी हैं, लेकिन उनका जो मूल मंत्र है वो लास्ट में यही रहेगा कि धूप से बचाव करें, पर्याप्त पानी पिएं और सही सावधानी लू से बचने के लिए उनका सुरक्षा का पूरा इंतजाम करके ही बाहर निकलें घर से।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारी दी और निश्चित ही हमारे श्रोता आपकी बताई हुई जानकारी का पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। और आपने इतने सरल शब्दों में हमारे श्रोताओं को समझाया गर्मी के मौसम में सही खान पान, पर्याप्त पानी और थोड़ी सी सावधानी रखकर हम कैसे लू के खतरे से बच सकते हैं। आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए समय निकाला, हमारे श्रोताओं का मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, डॉक्टर साहब की दी गई जानकारी का निचोड़ यही है कि आप धूप से डरे नहीं बल्कि समझदारी से खुद का बचाव करें, बिना वजह दोपहर में बाहर ना निकलें, उससे परहेज करें, शरीर में पानी की कमी ना होने दें और सरकार के द्वारा भेजे जा रहे आपकी मोबाइल सेट पर आपातकालीन जो संदेश आपको प्राप्त हो रहे हैं उनको अनदेखा ना करें, सरकार की गाइडलाइन का पालन करें, तभी आप इस भीषण गर्मी से बच सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। आपके लिए फिर किसी नए विषय पर हम स्वास्थ्य वार्ता लेकर उपस्थित होंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: तो श्रोताओं, अभी आपने सुनी ये भेंटवार्ता, लू से बचाव के उपाय क्या करें क्या न करें, और डॉक्टर अमित कुमार गुप्ता, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ागांव, आपसे बात की हेमंत पाल सिंह बुंदेला ने और इस की प्रस्तुतकर्ता थी अंजलि कुमारी। तो श्रोताओं, तेज धूप से बचाव अपनाएं, स्वस्थ रहें और मुस्कुराएं, पानी, छाया और सावधानी, लू और गर्मी से रक्षा की यही है कहानी। और अब सुनते हैं कुछ संदेश।
3: वक्त बदलता है, दौर बदलते हैं,
4: पर कुछ धुनें कभी पुरानी नहीं होती।
5: लग जा गले के फिर,
3: ये वो यादगार नगमे हैं जो यादों में आज भी महकते हैं, हर लफ्ज में छुपी है।

0: रहती हो।
1: आज का संगीत जो हर पल को बना दे यादगार।
2: मेरी कल आए होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर।
3: जब बीती कल की मिठास और आज की धड़कन

0: सुनते रहिए नए पुराने गीत सुहाने रोज शाम 6:35 पर
1: सिर्फ FM 103 आकाशवाणी झांसी पर।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
2: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
1: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
2: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
3: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दे, प्लास्टिक छोड़े, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
4: तो श्रोताओं, आज विविधा कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं विविध विषयों पर, और अब बात करते हैं सांस्कृतिक विविधता सतत विकास का मजबूत आधार। ये एक विभिन्न संस्कृतियों के रीति रिवाज, पारंपरिक ज्ञान और जीवन मूल्य, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं। जब विभिन्न भाषाएं, परंपराएं, कला, संगीत, खानपान और जीवन शैली मिलकर समाज को समृद्ध बनाती है, जब अलग अलग संस्कृतियों का मिलन होता है, तब आपसी भाईचारा, सहिष्णुता और सहयोग की भावना बढ़ती है।

तो श्रोताओं, मिलकर ही चलना, इसी में सबकी भलाई है। और कार्यक्रम में चलते चलते आज के खास दिन की बात करते हैं। आज है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। चाय प्रेमियों के नाम आज एक खास दिन है। एक बात तो बिल्कुल सही है दोस्तों, इश्क मोहब्बत सुकून दे या न दे, चाय दिल को सुकून जरूर देती है। सुबह हो, शाम हो, दोस्तों का साथ हो, ठंड हो या रिमझिम बारिश, हर पल हर दिन खास बन जाता है जब हो चाय साथ। काश जिंदगी भी चाय जैसी होती, मौसम कोई भी हो अच्छी लगती। श्रोताओं, आपको बता दें कि हर वर्ष 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है और इस दिन का उद्देश्य चाय के महत्व, चाय उत्पादन से जुड़े किसानों और श्रमिकों की स्थिति तथा दुनिया भर में चाय की सांस्कृतिक और आर्थिक भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

चाय दुनिया का सबसे लोकप्रिय पेय पदार्थों में से एक है। एक कप चाय रिश्तों में मिठास और ताजगी भर देती है। मिलो कभी चाय पर, कुछ किस्से बुनेंगे, तुम खामोशी से कहना, हम चुपके से सुनेंगे। चाय के कप में सिर्फ चाय नहीं होती, कुछ पल सुकून के भी होते हैं। इसी के साथ विविधा कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए अल्पना श्रीवास्तव को। नमस्कार।

0: Zebedee.
1: अभी आप सुन रहे थे विविधा कार्यक्रम एफएम 103 पर आकाशवाणी का ये झांसी केंद्र है। किसानों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम किसानवाणी। ये कार्यक्रम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है।

0: किसान बाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भैयारन को संतोष पाल और
1: प्रियंका की नमस्कार। हाँ तो देखो किसान भैयारो, आज है विश्व चाय दिवस, जो एक उत्सव ही नहीं है बल्कि ये उन लाखों चाय उत्पादकन और उन लाखों चाय उत्पादकन को उन किसानन को समर्पित है जो दिन जी की कड़ी मेहनत से हमारी सुबह तरोताजा होते है। वैश्विक स्तर पर जैसे चाय उद्योग है, ग्रामीण विकास से गरीबी और में जो गांव में जो लोग हैं और खाद्य सुरक्षा के बड़े जो जरिया बने हैं, चाय के पौधे लगाना, चाय के मौसम के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं, तापमान में उतार चढ़ाव भी आते हैं और कम और ज्यादातर बारिश जैसे देखा थे कि होते हैं, ऐसे में भी फिर भी अपने जो किसान भैया रहे हैं, खेती करते हैं और सारे उतार चढ़ाव देखते हैं, फिर भी एक एक पत्ती चुन के अच्छी गुणवत्ता वाली जो चाय है पैदावारी करत है और साथ ही साथ उगा अपन तक पहुंचाते हैं। तो विश्व चाय दिवस जो है असली उद्देश्य जो है कि जब तक ये चाय की मांग विश्व के बाजार में बढ़े तो उसका जो सीधा आर्थिक लाभ है वो किसानन के घर तक पहुंचे और जो सुबह सुबह की ओस की बूंदन के बीच बगानन में जो पत्तियां चुनत है अपने जो किसान है वो ही ताजा जो चाय है वो अपन के घर तक भी पहुंचाते हैं और साथ ही साथ उन किसान भैया का सबका लाभ भी होता है।
0: बिल्कुल। और देखो आज है गुरुवार और आज के दिन अपन अपने किसान पंच भैया है फोन इन कार्यक्रम सुनवाते ही जी को नाव है हेलो किसान। तो किसान भैया सुनो आज को जो हेलो किसान कार्यक्रम।

0: हेलो किसान कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान पंच भैयारों को नमस्कार। किसान भैयारो, आज है गुरुवार और आज के दिना अपना जो फोन इन कार्यक्रम होता ही और आज के दिना दिन के 2 बजे से 2:30 बजे के बीच रिकॉर्डिंग होता ही। तो किसान भैयारो, आज के कार्यक्रम को आज विषय है
1: गर्मी में पशुओं की सुरक्षा करें।
0: तो ई विषय से संबंधित बचकाव करवे के लाने और सवालन के जवाब देवे के लाने हमारे आकाशवाणी केंद्र झांसी के स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर गौरव कुमार जी, जे रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी से पधारे। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार
0: डॉक्टर साहब, चर्चा करवे से पहले एक किसान भैया हमसे जुड़ गए तो उनसे बचकाव कर लेते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम में आपको स्वागत है, नमस्कार
3: जी। आपको भी, आपके आकाशवाणी परिवार को भी सादर प्यार भरा प्रणाम।
0: अच्छा, सबसे पहला तो आप जी बताएं कि आप कौन सा बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं।
3: जी हम अलकनाथ मंदिर के सामने गंगवार बैगलाइन से बेचीलाल गंगवार बोल रहे हैं, बरेली से।
0: जी गंगवार जी, अब अपने तो कैसा मौसम चल रहा हो, तापमान?
3: मौसम तो सर इतना भयंकर गर्म है कि बगैर जरूरत के तो निकलना ही नहीं चाहिए।
0: तो ऐसे में अपनों और अपने पशुधन को भी ख्याल रखना। तो जो अपने पशु हैं, पशुओं की अपन कैसे गर्मियों में इनकी विशेष देखभाल कैसे करें, ई विषय से

0: वाणी केंद्र झांसी के स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर गौरव कुमार जी, जो आपके सवालों को जवाब दें। आप पशुपालन से संबंधित जो प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सका।
1: सर एक जानकारी लेने दीजिए, छोटी वाली जो गाय आती है, कहाँ मिलती है?
0: जी डॉक्टर साहब
2: जी, ये आप गाय बता रहे हैं?
1: जी
2: ये आपको तमिलनाडु में मिलेगी।
1: अनुमानित कीमत क्या होती है सर?
2: सर अनुमानित कीमत इसका 50 से 80 हजार के बीच में मिल जाता है, जो बच्चा है।
1: कितनी जगह में सीमित रह सकती है गाय?
2: ये तो घर में भी रख सकते हैं इसको।
1: हाँ इसीलिए पूछा मैंने, क्योंकि अब बरेली की निवासी हो गए, अभी पहले तो गांव से। हमारा जहाँ तक मानना है कि रेडियो से सस्ता और सुलभ और जानकारी देने लायक कोई और दूसरा साधन नहीं।
0: सही कहा आपने गंगवार जी, आप एक जागरूक किसान और पशुपालक हैं और हमसे जुड़वे के लाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर गौरव कुमार जी, बात करत के जैसे हमारे जो पशुपालक भैया, गर्मी को मौसम है और अपने बुंदेलखंड में ज्यादातर गर्मी कहते हैं ना पीक पर चली जाती है, क्योंकि सूखो क्षेत्र का हो जाता है अपना बुंदेलखंड क्षेत्र। ऐसे में पशु भी अपने बीमार पड़क लू लपट लगा, तो पशुपालक भैया पशुओं के खान पान की, उनके निवास की ऐसी का देखभाल करें कि जिससे उनके पशु स्वस्थ भी बने रहें और उनसे दूध उत्पादन भी अच्छा मिला।
2: जी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जैसा कि आपने कहा कि हमारा बुंदेलखंड एक शुष्क कम वर्षा वाला क्षेत्र माना जाता है, तो यहाँ पे जो गर्मी है 45 से 50 जो पीक गर्मी है 45-50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जाता है। इस तापमान में मनुष्य या जानवर दोनों का बचाव करना बहुत ही जरूरी है, तो हमें अपने पशुओं से अधिक उत्पादक क्षमता, उनकी प्रजनन क्षमता लेने के लिए हमें उनके आवास और आहार का प्रबंधन करना चाहिए। तो हमें पशुओं के आवास प्रबंधन के लिए सबसे पहले उनके जो आवास है उसके चारों तरफ हमें पेड़ पौधे, जो प्राकृतिक पौधे हैं, उनको लगाना चाहिए। यदि उनके टीन है, छत है टीन का, तो उसकी ऊंचाई थोड़ा ज्यादा हो, और छत के ऊपर हमें सफेद पेंट आता है उसकी पुताई कर देनी चाहिए।
0: डॉक्टर साहब एक श्रोता हमसे जुड़ गए, अपनो बात बतका तो होते ही रहे, उनसे पहले पूछ लेते हुए कच्ची जानना चाह रहे हैं।
2: बिल्कुल।
0: हेलो किसान कार्यक्रम में आपको स्वागत है। नमस्कार भैया।
3: नमस्कार।
0: आप कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? सबसे पहला तो अपना नाम पता बताओ आप।
3: हमारा नाम आनंद।
0: जी आनंद जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
3: ग्राम बीरा।
0: अपने यहाँ कैसा मौसम है?
3: मौसम खराब।
0: क्या इससे ज्यादा गर्मी बढ़ रही है आजकल?
3: हाँ हाँ।
0: तो अपन अपनों और अपने पशुओं की कैसे का देखभाल करा?
3: देखभाल 2 दिन टाइम पानी और खाव रखें और नहाएं।
0: आनंद जी आपके बता दें कि आज के हमारे जो हेलो किसान कार्यक्रम को विषय भी हमने जय रखो गर्मियों में पशुधन की सुरक्षा के उपाय, यानी कि अपने पशुओं की अपन देखभाल सुरक्षा कैसे कर सकत, ई विषय से संबंधित अगर अपन की कोई सवाल हुए तो जवाब देवे के लाने हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर गौरव कुमार जी, तो अपन अपने सवाल पूछ सकत।
3: जो सवाल है तो पानी कितनी टाइम पर लाएं पशुओं का?
2: जी आनंद जी नमस्कार, जैसा कि आपने पूछा कि दिन में अपने पशुओं को कितनी बार पानी पिलाएं गर्मियों के दिनों में, तो हमें गर्मियों के दिनों में अपने पशुओं को 3 से 4 बार शुद्ध ताजा पानी पिलाना चाहिए। गर्म पानी ना हो, टेम्परेचर ज्यादा ना हो, ऐसा पानी उनको 3 से 4 बार पिलाएं और उनकी जितनी भी आवश्यकता है उसके अनुसार पानी पिलाएं।
3: और अगर बीमार हो जाए तो बीमारी का कैसे पता लगाएं?
2: बीमारी का पता लगाने के लिए यदि गर्मी के कारण बीमार हो रहा है तो पशु हाफने लगेगा, लार गिराएगा, और यदि चारा खा रहा है तो वो चारा खाना कम कर देगा, और दूध देने वाले यदि पशु हैं तो उनकी दूध की उत्पादन क्षमता भी कम हो जाएगी। 4 लीटर दूध दे रहा है तो 3 लीटर पे आ जाएगा या उससे भी कम हो जाएगा। तो जी तो इसके लिए उसे ना आपको अच्छा आहार देने की जरूरत है। हरा जो चारा है जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा से ज्यादा है वो चारा आप खिलाएं। यदि आपके पास सूखा भूसा है दे रहे हैं तो उसको शाम को भिगो के रख दें और सुबह उसको सूखा भूसा दें, और 2/3 हरा चारा और 1/3 सूखा भूसा मिला के खिलाएं।
0: जी नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसे कि हम आपसे बतकाव कर रहे थे कि किसान भैया जो पशुपालक हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि खेती किसानी और पशुपालन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे पशुपालन की, निवास की व्यवस्था है वो कैसे पशुपालक भैया अपने पशुधन के लाने आवास की व्यवस्था करें कि जिससे उनको पशु जो है वो स्वस्थ बन रहे और अच्छा दुग्ध उत्पादन दे।

0: जैसा कि अभी आपसे चर्चा हो रही थी कि पशुओं के आवास की जो छत है उसको हमें सफेद पेंट करना है, उसके साथ साथ उसके ऊपर में टाट या जो भी हमारा घास है उसको डाल देना चाहिए और उसपे पानी का छिड़काव अवश्य करना चाहिए
1: जी।
0: और जो भी झरोखे हैं उन पे हमें टाट को लटका के उनको भीगो देना चाहिए।
1: फिर उनकी कच्ची छप्पर है, किसान भैया रहे जैसे टपरा बना देती है समय पे।
2: हेलो हेलो, किसान कार्यक्रम में आपका स्वागत है
3: जी। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश मिश्रा है, मैं नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ।
2: नीतीश मिश्रा
3: जी, नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से।
2: अच्छा, हाँ भैया, आप बताइए, आज का हमारा जो विषय है गर्मियों में पशुओं की देखभाल पे है, तो आप हमारे स्टूडियो में डॉक्टर साहब बैठे हैं, तो आपके अगर इससे संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमारे डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं और अपने सवाल के जवाब दे सकते हैं।
3: मेरा प्रश्न है कि मैम, हमारे पास साहिवाल और गिर नस्ल की गाय है, इनमें एफएमडी का वैक्सीनेशन कराने का सही समय कब होता है, इसमें एफएमडी का वैक्सीनेशन कब करवाएं। दूसरा प्रश्न ये था कि हमारे यहाँ पर पिछले वर्ष काफी देखा गया है कि वो लंपी वायरस काफी ज्यादा चला, तो लगातार टीकाकरण कब करवा सकते हैं
0: जी। जो आपने अभी बताया ना कि आपके पास साहिवाल और गिर गाय है तो उनका एफएमडी का वैक्सीनेशन कराना है आपको, तो एफएमडी का वैक्सीनेशन अभी जो मानसून सीजन आ रहा है ना उससे पहले पहले हमें अभी कराना है मई जून में, ठीक है। तो एफएमडी का वैक्सीनेशन अभी ट्राइवेलेंट जो वैक्सीन आ रही है इसमें एफएमडी के साथ साथ एचएस और बीक्यू जो हमारा गलगोटू है, ब्लैक क्वार्टर है, लंगड़ी बुखार, इनका भी वैक्सीनेशन एक साथ में ही हो जाता है।
3: तो सर, तो भारत सरकार या राज्य सरकार मिलकर ये टीकाकरण कब करवाती है, क्या ये पूर्णतः निःशुल्क होता है?
0: जी, ये पूर्णतः निःशुल्क होता है, ये मानसून सीजन से पहले पहले मई जून में कराया जाता है, ठीक
3: है। अभी तक लंपी वायरस का कोई वैक्सीनेशन या लंपी वायरस की कोई दवा इजाद की गई है भारत में, या अभी सतर्कता ही इसका बचाव है?
0: अभी सतर्कता ही इसका बचाव है, इसके साथ साथ इसके प्रिवेंटिव मेडिसिन के इजाद किया जा चुका है, तो इसलिए अभी आप क्या वायरस जो है कि वो म्यूटेट होता रहता है, तो इसलिए इसका भी जो सतत अपने पशुओं को बचाना ही सबसे बड़ा उपाय है।
1: डॉक्टर साहब, एक और श्रोता भैया अंशन जुड़ गए, तो उनसे बात कर
0: जी।
2: हेलो, किसान कार्यक्रम में आपका स्वागत है
4: जी। नमस्ते।
2: नमस्ते, आपका नाम?
4: रिंकी वर्मा।
2: कहाँ से बोल रही हैं
4: आप? निवारी से।
2: हाँ, तो बहन जी देखो, आज हमारा जो विषय है गर्मियों में पशुधन की सुरक्षा के उपाय अपन कैसे करें, ठीक है। तो आज हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ हैं डॉक्टर गौरव कुमार जी, तो आप उनसे अपने पशुओं के संबंधित जो भी सवाल करना चाहती हैं तो आप उनसे आराम से पूछ सकती हैं और अपने जवाब दे सकती हैं
0: जी। रिंकी जी बताएं।
4: नमस्ते सर।
0: नमस्ते।
4: हमारा सवाल ये कि दो गाय हैं, एक भैंस है हमारे पास, अगर गर्मियों में घर में कोई जानवर बीमार हो जाए
0: जी,
4: तो हॉस्पिटल ले जाने से पहले घर के कोई मतलब घरेलू उपाय हो सकते हैं?
0: यदि जानवर आपका गर्मी के कारण बीमार हुआ है ना
4: जी,
0: तो आपको जानवर के ऊपर हल्का हल्का ठंडा पानी डालना है और जो आपके टाट के बोरे हैं ना उनको डाल के भिगो देना है जानवर के ऊपर, और उसके सर पे लगातार आपको 20-25 मिनट या उससे ज्यादा पानी डालते रहना है, ठंडा पानी, ठीक है। उसको एकदम से बिल्कुल ठंडा पानी नहीं डालना है, उसको ना तो पिलाना है ठंडा पानी और ना उसके ऊपर एकदम से बिल्कुल ठंडा पानी नहीं डालना है, ताजा पानी डालना है आपको, ठीक है।
2: धन्यवाद रिंकी।
4: नमस्ते।
2: डॉक्टर साहब, एक सवाल है
0: जी,
2: गर्मियों में अक्सर अपन देखते हैं कि गर्मियों में अक्सर अपने जो ढोर बच्चे होते हैं उनका दूध अचानक से गायब हो जाता है, यानी कम हो जाता है
0: जी।
2: तो इसका गर्मी से कुछ संभव है, या फिर गर्मी में उनको कोई रोग बीमारी ऐसी हो जाती है या खान पान में बदलाव हो जाता है, क्या हो जाता है?
0: जी मैम, ये गर्मी से ही रिलेटेड है, कोई ऐसा रोग नहीं है। ये गर्मी के जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे ही दूध कम होता चला जाता है। ये क्या है कि गर्मियों के दौरान पशुओं को अच्छा चारा नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसमें हरा चारा की उपलब्धता कम होती है जी, और वो जो गर्मी के तापमान के कारण वो कम खा पाते हैं, उनको पानी की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है, इसलिए दूध का उत्पादन कम हो जाता है।
1: हेलो, किसान कार्यक्रम में आपको स्वागत है। नमस्कार भैया।
5: नमस्कार, प्रजापति बात कर रहे हैं, तरफ ग्राम बनवा
1: जी। देखिए प्रजापति जी, आपके यहाँ कैसा तापमान है?
5: आप कल तो 45 पशु हो, तो आज 43 के आसपास है, काफी गर्मी पड़ रही है और लू के थपेड़े जो कह रहे हैं सुबह से जो भी काम हो अपने इमरजेंसी में निपटा लू।
1: तो अपन जो पशुपाल है उनको भी ख्याल रखना, तो यही से जुड़ो हुआ बचकाव आज हम अपन से कर रहे, और हमारा विषय भी जो ही है कि

0: पशुधन की सुरक्षा के उपाय, जो डॉक्टर भैया से अपन पूछ सका, जो हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर गौरव कुमार जी।
1: हम तो जो डॉक्टर नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
1: गर्मी में पशुओं को विशेष जो छोटे और जो गर्भित जानवर हैं हमारे, उनकी कैसे
2: जी गर्मियों के दौरान ना, जो कि गर्भित पशु हैं या थोड़े ज्यादा उम्र दराज पशु हैं, उनकी सुरक्षा करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो ऐसे पशुओं के लिए हमें उनका आहार है गर्मियों के अनुसार उसको बदलना पड़ेगा, उनका जो आवास है उसको भी कुछ प्रबंधन करना पड़ेगा, जिससे कि हम उनके स्वास्थ्य को अच्छा बनाएं। और उनके जो आहार है ना, उसमें हमें कुछ फीड एडिटिव हैं, जैसे एंटीऑक्सीडेंट आते हैं, मिनरल मिक्सचर है हमारा, प्रिल फैट है जो कि एनर्जी देता है जाके ना, और नमक है, ये उनको खिलाना जरूरी है हो जाता है। उसके साथ साथ हमें उनके दिन भर के लिए स्वच्छ और ताजा पानी की व्यवस्था भी करना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम इस बात और जानना चाहेंगे कि अच्छा देखा है हमने कि जहाँ जानवर हमारे बनते हैं
2: जी,
1: वहाँ जो परजीवी है उनका एक हम अपने नजरिए से देखें तो आदान प्रदान लगा रहता है जानवरों के आसपास, कैसी नस्ल
2: जी। आपने परजीवियों के लिए बात की है, तो परजीवी के लिए आपको उनके जो परजीवी नाशक दवाइयां आती है ना, उनका उपयोग करें। और उनका उपयोग जैसे आप अभी कर रहे हैं तो एक सप्ताह बाद दोबारा से रिपीट कर देना चाहिए, क्योंकि जो उनके अंडे बने होते हैं ना, उन अंडों पे वो दवाइयां काम नहीं करती हैं। तो अंडे से जो दूसरा परजीवी निकले गया तो उसको हम एक सप्ताह बाद दोबारा नष्ट कर देंगे। और जो आसपास है ना, हमारा जहाँ आवास है उसके जो झरोखे हैं या जो दरार वगैरह बन जाती है ना फर्श में, तो उनमें भी हमें जो परजीवी नाशक दवाइयां हैं उनका छिड़काव जरूर करना चाहिए, जिससे कि वो उसमें बैठे हैं या वहाँ पे अंडे हैं उनके, तो वो भी नष्ट हो जाए।
1: नमस्कार
2: जी।
0: हेलो किसान कार्यक्रम में आपको स्वागत है। नमस्कार।
3: हेलो।
0: हाँ जी नमस्कार।
3: नमस्ते।
0: कहाँ से बोल रही हैं
3: आप? हम बोल रहे खेरी खड़वाला से।
0: अच्छा, कौन बोल रही हैं?
3: हम बोल रहे उमा जी।
0: उमा जी, और अपने यहाँ का तापमान कैसा है?
3: तापमान के साथ बहुत गर्मी पड़ रही है, बाहर निकल ही नहीं पाते हैं।
0: ऐसे में अपन अपनों ख्याल रखने और अपने जो अपन पशुपालन करत खेती किसानी के संगे संगे, तो अपने पशुमन की भी विशेष देखभाल करने पड़त।
3: हमारा एक बछड़ा है, गाय का बछड़ा, तो उसको जुआ हुआ पड़ गया, तो सोच रहे थे कोई जानकारी मिल जाती तो उसको दवा लगा नहीं पा रहे इस समय में, कैसे लगना मतलब जीप से कुछ चार्ज न लेवे दवाई अवाई।
0: हाँ, तो इस सब आपके सवालों को जवाब देवे के लाने हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर गौरव कुमार जी।
2: नमस्कार कुमार जी।
3: नमस्ते सर।
2: तो आपको जो आपके जानवरों के लिए ना चीचड़े लगते हैं या किलने लग गई है जो भी, तो उनके लिए आपको आइवरमेक्टिन का एक दवा आता है इंजेक्शन। तो जो पशु की अवस्था है, कितना वजन है, किस अवस्था में पशु है, उसके अनुसार आपको डॉक्टर से लगवाना पड़ेगा, सर लगाएगा कितना डोज लगना है। जी जी नमस्ते
0: जी डॉक्टर साहब। गौरव जी, बात करत के जो अपने किसान भैया हैं पशुपालक हैं, वे अपने गर्भित पशु हैं दिन के दौरान नहला भी सकत, जैसे लू लपट चला ऐसे में कौन कचरा तो नहीं रहता ही के, जैसे अपन वाले हैं तो अपन वाले कल लगत भैया लपट चल रही है ना, नहा लपट लग जाए लू लग जाए, तो पशु में भी ऐसा कछु खतरा तो नहीं रहता ही, अगर उन्हें नहला रहा है तो वे बीमार पड़ जाए या कौन अस्वस्थ हो जाए।
2: जी बिल्कुल, पशुओं को सुबह शाम तो नहलाना है, उसके साथ साथ आपको दोपहर को पशुओं के ऊपर हल्का हल्का पानी का छिड़काव जरूर करना है, वो भी 2-3 घंटे के अंतराल पे आप बार बार छिड़काव कर सकते हैं।
4: डॉक्टर साहब एक सवाल और है कि जैसे जो अपने पशु हैं, जो अपने पशु हैं और जो नए पशुपालक होते हैं उनको कोई अभ्यास नहीं होता है शुरू शुरू में, तो जो वो है अगर उनके पशु गर्मियों में बीमार हो गए मान लीजिए, तो उनको ये कैसे पता चलेगा कि हमारा पशु बीमार है या वो सही है, या फिर जब तक उन्हें मालूम चलेगा वो गंभीर रूप से जो है काफी बीमार हो चुके, तो ऐसे कुछ लक्षण हैं या फिर ऐसे कोई उनके दिखाई देते हैं कि लक्षण कि हाँ भाई हमारा पशु जो है बीमार है, तो वो तुरंत जाँच करा सके उसकी?
2: देखिए, सबसे पहले हम बीमार पड़ते हैं
4: जी,
2: तो हम खाना कम छोड़ देते हैं या कम कर देते हैं, तो ऐसे ही पशुओं में होता है कि वो खाना कम कर देते हैं। उसके साथ साथ यदि गर्मी से बीमार हुए हैं तो वो हाँफने लगते हैं, मुंह खोल के लार गिराएंगे, हाँफेंगे, मुंह खोल के हाँफते हैं, उनके जो शरीर का तापमान है वो बढ़ जाता है। उसके साथ साथ

0: उनका जो सुस्त पड़ जाते हैं, एक्टिव नहीं दिखाई देते हैं और वो पशु खड़े रहते हैं जिससे कि वो उनका शरीर का तापमान कम हो, वो खड़े होने की कोशिश करते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जैसे गर्मी पड़ रही है अभी, और तो ऐसी गर्मी में जैसे कि बचने के लिए जो जैसे लू लपट लग जाए अगर किसी जानवर का, तो उसे बचने के लाने क्या ऐसे कोई टीका है या दवाइयाँ हैं जो अपने पशुओं को खिलाई जा सकती है, टीका लगवाई जा सकते हैं जिससे पशु सुरक्षित रहे?
0: ऐसा कोई टीका तो नहीं है जो कि गर्मी से बचा सकता है। इसके लिए हमें उनको छायादार पेड़ पौधों के नीचे बांधना है जहाँ पे हमें ताजी हवा मिल सके। उसके साथ साथ उनका जो आवास है उसमें भी हम कुछ चेंज कर सकते हैं, तकनीकी अपना सकते हैं, जैसे फैन लगा सकते हैं, जो हमारे फॉगर्स आते हैं या मिस्टर आते हैं जो कि मिस्ट फेंकते हैं हवा के साथ साथ थोड़ा पानी की बूंदे भी फेंकते हैं, ऐसी चीजें हम पशुओं के आवास में लगा सकते हैं जिससे कि पशु के आवास का तापमान नियंत्रित बना रहे।
2: डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न आपसे हम पूछना चाह रहे हैं कि जो हमारे भेड़ बकरी पालक भैया रहे हैं
0: जी,
2: उनकी भेड़ बकरियां हैं इस सीजन पे का होती है गर्मियों में के जो पेड़ की फलियां होती हैं जिसे हम स्थानीय भाषा में बिलबिली कर लगाते
0: जी,
2: तो उनकी पशुओं में जो भेड़ बकरी हैं बिलबिली लग जाती और इतनी ज्यादा गंभीरता आ जाती है उनकी कई एक भेड़ बकरी मर भी जाती
0: जी, जी,
2: तो का कारण रहता है? और किसान भैया पशुपालक भैया आ रहे हैं उनसे अपनी बकरियां भेड़ बकरियां कैसे बचाएं?
0: जी, यदि वो फली अब मात्रा से ज्यादा खा लेते हैं तो उसमें सेपोनिन कंटेंट होता है
2: जी,
0: उसके कारण उनका जो पेट है फूलने लगता है, तो पेट फूलने के कारण उनकी मृत्यु होती है
2: जी,
0: जी।
2: तो वे कछु घरेलू ऐसे उपाय कर सकता कि जिससे कि वे बचा सके, उनको पेट जो फूल रहा वो सही तरह से यानी कि नॉर्मल हो सके, सामान्य हो सके
0: जी। उसके लिए एक तो पेट से फूल रहा है और उन्होंने ज्यादा खा लिया तो एसिडोसिस हो जाती है उनको
2: जी।
0: जो बीमारी है एसिडोसिस में एसिड की मात्रा थोड़ा रूमेन में ज्यादा हो जाती है
2: जी।
0: तो हमें जो अपना घर का मीठा सोडा है वो 1.5 से 2 चम्मच एक गिलास पानी में मिला के उनको पिलाना है
2: जी।
0: उसके साथ साथ हमें उनके मुंह में एक लकड़ी बांध देनी है जिससे कि उनके पेट से कुछ हवा निकलती रहे। यदि हो सकता है या किसी डॉक्टर के परामर्श से तो जो पेट के जो जानवर है उसके उल्टी साइड में पेट में जहाँ पर फूला हुआ है आप उस पे हाथ से थोड़ा प्रेस करेंगे तो आपको आवाज आएगी टप टप की, तो आपको लगेगा यहाँ पे गैस बहुत ज्यादा है, तो आप एक नीडल आती है 16 गॉज की, वो नीडल से उसको पंच भी कर सकते हैं।
2: डॉक्टर साहब, जैसे इस मौसम में गर्मी के मौसम में का होते ही कि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में ज्यादातर पशुपालक भैया अपने जानवरों के छुट्टा निकले
0: जी
2: है ना, और ना प्रथा भी का होगा
0: जी,
2: तो ऐसे में का होते ही कि उनकी सारी नस्ल रहता ही
0: जी,
2: लेकिन वे देसी नस्ल से गर्भित हो जाता ही पशु छुट्टा में, मालूम नहीं चलत के कौन से पशु से क्रॉस हो गए, तो नस्ल एक तो बिगड़ जाता ही
0: जी,
2: तो वे का कछु उपाय बरते हैं या सावधानी बरते हैं जिनसे कि उनकी नस्ल खराब ना हो पशुओं की और उनसे ज्यादा से ज्यादा भी अच्छा उत्पादन दुग्ध उत्पादन ले सके?
0: इसके लिए तो हमें चाहिए कि जब भी हमारा पशु हीट में आने वाला है तो हमें उसके लिए उच्च क्वालिटी का अच्छा सीमन की व्यवस्था कर लेनी चाहिए।
2: कृत्रिम गर्भाधान,
0: कृत्रिम गर्भाधान के लिए हमें जो भी हमारा AI वर्कर है उससे संपर्क कर लेना चाहिए कि हमारा जानवर इस तारीख को इस समय हीट में आया हुआ है, तो हमें कब उसके 12 घंटे के बाद हमें अपने जानवर को गर्भाधान कराना है उसके
2: जी।
0: जब भी जानवर हीट में आता है उसके 12 घंटे के बाद हमें अपने जानवर को कृत्रिम गर्भाधान कराना है
2: जी। डॉक्टर साहब, गौरव जी बात करत के कछु जानवर ऐसे होते ही कि उनमें लक्षण प्रकट नहीं होते ही कि वीक में है नहीं के नहीं है, कछु जानवर तो देखो रवान लगाते ही या चंचलता आ जाता ही एक दूसरे के ऊपर चढ़न लगाते या दौड़ लगान लगाते ही, तो उनसे कछु और ऐसे लक्षण होते ही जिससे कि पशुपालक भैया समझ जाए और वे उनमें गर्भाधान के उपाय करें।
0: जैसा कि आपने कहा कि उस पशुओं में लक्षण हीट के लक्षण नहीं दिखाई देते, तो उनमें क्या है कि पहली बात तो हमें अपने किसान भाइयों को ये बताना चाहूंगा जो हीट के लक्षण हैं क्या क्या है। तो पशु चिल्लाना शुरू कर देता है, रंबाने शुरू कर देता है, उसके साथ साथ पशु खाना छोड़ देता है।

0: और दूध दे रहा है तो दूध भी कम कर देता है, बार बार यूरिनेशन करेगा, थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा पेशाब करेगा, एक जगह पे खड़ा नहीं रहेगा, वो चंचल हो जाएगा, वो इधर उधर दौड़ेगा। उसके साथ साथ उसका जो योनि है बल्बा पार्ट में थोड़ा स्वेलिंग हो जाता है।
1: डॉक्टर साहब, अब चलते चलते हमारे जो पशुपालक भैया हैं उन्हें आपका कछु संदेश लोगों चाह रहा है कि जिससे कि भी अपने पशुधन से ज्यादा दुग्ध उत्पादन प्राप्त कर सकें और अपनी आय बढ़ा सकें।
0: हम अपने किसान भाइयों और आपके श्रोताओं के लिए आखिर में यही संदेश देना चाहूंगा कि कुछ वैज्ञानिक तकनीकियों का उपयोग कर और अच्छा पशुओं का अच्छा खाने का और रहने का प्रबंधन कर पशुओं की उत्पादन क्षमता और प्रजनन क्षमता को बढ़ाकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं।
1: डॉक्टर गौरव कुमार जी, आप हमारे आकाशवाणी केंद्र झांसी के स्टूडियो में आए और गर्मियों में पशुधन की सुरक्षा के उपाय से संबंधित जो पशुपालन के सवाल थे उनके सवालों को आपने विस्तार से जानकारी दी, जवाब दे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: हाँ तो किसान भैया रो जो तो हेलो किसान कार्यक्रम और इमें अपन देखो आज गुरुवार के दिन ही की रिकॉर्डिंग होते है तो अपने किसान भैया रहे हर गुरुवार के दिन जुड़े और अपने जो सवाल है वो हमारे वैज्ञानिक भैया हमसे जवाब लेवे। साथ ही साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़वे के लाने हमारे स्टूडियो के नंबर पे फोन जरूर करवे। फोन नंबर है 0510।

0: अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
1: पुतला बोल रहे?
0: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
1: मतलब?
0: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहा,
1: पर अब तो सभी डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: किसान भैया रो, देखो अपन ने कितना नोनो जो संदेश सुनो, और अपन ईवीरा का करत के अपनी जो साल भर की कमाई रहती, जैसे गल्ला पानी जो अपनो होते ही वो मंडी ले जाते ही, तो अपन है मंडी से भावन की जानकारी जरूर लेने, और एक मंडी से नहीं लेने। आज को युग तो देखो मोबाइल को युग है, तो मोबाइल से अपन ई मंडी से जुड़ के और विभिन्न मंडियन से भाव प्राप्त कर सकत, और अपनी जो चाहे गेहूं हो या चना हो या सरसों हो उखे अच्छी दामन में बेच सकत। और ऐसे ही अपन जो अपने किसान भैया आ रहे हैं जो जायद के मौसम में अपने खेतन में फसलें लाए, मूंग है जैसे, उड़दा है या मूंगफली है, तो इनके अपन के कागन ने मौसम के अनुसार इनमें पानी लगाने जो देखने अपन के निकाल लेने अपने मोबाइल पे के

0: कभी पानी बरस रहा हो या आंधी आ रही है, ऐसा नहीं कि अपन ने कटाई करा दी, आंधी आई तोड़ जाए तो अपना नुकसान हो जाए। तो इन सब बातों को ख्याल रखत भाई अपन खेती किसानी करने, और चलत चलत हम तो अपन से जो ही के वो चाहते ही कि किसान भैया रो अपन के जो वैज्ञानिक भैया है जानकारी देते ही, सुझाव देते ही, उनके सुझावन के अनुसार अपन के अपनी खेती बाड़ी के काम करने, और जो पशु धन अपन जो पशु पाले रहते ही उनकी देखभाल करने, और नियमित उनमें देखो टीकाकरण कराने। नियमित को मतलब हम अपन समझ रहे उन्हें कि कब कौन सी बीमारी के टीका लगाते ही, तो अपन के वो बीमारी के टीका लगवा लेने और अपने पशुओं के सुरक्षित रखने, और अपन के अधिक से अधिक दुग्ध उत्पादन उनसे लेने जिससे अपनी आय बढ़े। और भैया देखो अब कार्यक्रम को समय भी पूरा हो रहा हो, तो हम सब तो चलत चलत अपन से यही कहना चाहते ही कि अब आज को एक देखो मोबाइल को एक है, तो अपन हमारे जो आकाशवाणी झांसी के नाम से फेसबुक पेज है, यूट्यूब पे भी हमारा चैनल है आकाशवाणी झांसी के नाम से, इंस्टाग्राम पे भी है, तो अपन उनके कमेंट बॉक्स में बता सकत के अपन के हमारा जो किसान वाणी कार्यक्रम है या हेलो किसान कार्यक्रम है वो कैसो लग रहा हो, उसमें का कछु बदलाव चाह रहे तो अपन सुझाव दे सकते हैं। और अगर अपन चिट्ठिया पत्रिका के माध्यम से हमसे जुड़बो चाहते ही, तो ऐसे में अपन कार्यक्रम को पता भी लिख सकत कार्यक्रम किसानवाणी द्वारा के निदेशक आकाशवाणी कानपुर रोड झांसी, पिन कोड है 284128।
1: तो एक संगे प्रियंका वर्मा को और
0: संतोष पाल को दो आज्ञा
1: नमस्कार, नमस्कार।

किसानों के लिए अभी किसानवाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। ये कार्यक्रम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित था। एफएम 103 पर आकाशवाणी का ये झांसी केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में और साथ ही एक सूचना।

गृह मंत्रालय भारत सरकार पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन आमंत्रित करता है। आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल http://award.gov.in के माध्यम से केवल ऑनलाइन ही प्राप्त किया जाएगा। अनुशंसा प्राप्त करने की अंतिम तिथि 3 जुलाई 2027 है। इस संबंध में वेबसाइट http://award.gov.in के माध्यम से और अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सूचना समाप्त हुई। और अब सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। 6:35 पर आप सुनेंगे नए पुराने गीत सुहाने। 7:19 पर आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे। 7:31 पर आप सुनेंगे बुंदेली लोक संगीत का कार्यक्रम खुशबू माटी की। 8:00 आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। 8:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत के कार्यक्रम में कुछ पुराने नगमे। 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9:00 अंग्रेजी में समाचार हम प्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 9:15 पर आकाशवाणी मुंबई से अनुप्रसारित राष्ट्रीय सेवा विविध भारती के कार्यक्रम होंगे। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो झांसी। स्वर एवं प्रस्तुति सहयोग हेमंत पाल सिंह बुंदेले का होगा और प्रस्तुतकर्ता होंगी अंजलि कुमारी। 10:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हम प्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

FM 103 पर आकाशवाणी का ये झांसी केंद्र है। इस समय 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए पुराने गीत सुहाने।

0: कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना कुणाल गांजावाला की आवाज में, फिल्म का नाम था गुजारिश।
1: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
2: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
1: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
2: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
3: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दे, प्लास्टिक छोड़े, जूट के बैग अपनाए और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

राहत फतेह अली खान की आवाज में अभी आपने फिल्म भूमि का ये गीत सुना। प्रिया सरिया ने गीत लिखा था, संगीत सचिन जिगर का था।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: जिस दिन से मैंने तुमको देखा है।

0: जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में अभी आपने फिल्म परवाना का ये गीत सुना। कैफी आजमी ने गीत लिखा था, संगीत दिया था मदन मोहन ने।

0: मोहित चौहान और नेहा भसीन की आवाज में फिल्म फैशन का ये गीत अभी आपने सुना। इरफान सिद्दीकी ने गीत लिखा था।
1: जब आवाजों का सफर शुरू हुआ तब ना कोई स्क्रीन थी ना इंटरनेट, बस था तो केवल एक अटल विश्वास, आकाशवाणी।
2: देश के हर कोने तक हर जरूरी खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, एक भरोसेमंद साथी, आकाशवाणी।
1: सरहदों पर डटे हमारे जवान, जहां हालात सख्त हैं और मौसम बेदर्द, वहां आकाशवाणी बनती है घर की एक प्यारी सी आवाज, जो देती है दिलों को हौसला।
2: तूफान से पहले की हो चेतावनी या संकट के समय का सहारा, आकाशवाणी बना हर समय हर कदम का साथ।
1: खेतों में मेहनत करते किसान, हर नई जानकारी, हर सही सलाह, सही समय पर बढ़ता है उनका हर कदम खुशहाल जिंदगी की ओर, आकाशवाणी के संग।
2: गांव की चौपाल हो या शहर की गलियां, एक रेडियो के इर्द गिर्द जमा होता था पूरा हिंदुस्तान। हर रन, हर विकेट धड़कता था हर दिन आकाशवाणी की आवाज से।
1: संगीत, साहित्य, संस्कृति, हर रंग, हर राग आकाशवाणी ने सहेजा है, हमारी विरासत का हर एक अनमोल हिस्सा।
2: ये सिर्फ एक रेडियो नहीं, ये एक एहसास है, एक यकीन है। आवाजों का वो कारवां जो 90 वर्षों से चला आ रहा है हमारे साथ साथ।
1: आकाशवाणी के 90 साल, एक सुहाना सफर,
2: आवाज का एक अटूट बंधन,

इस गीत के बाद आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में फिल्म करम का ये गीत। भरत व्यास ने गीत लिखा है, संगीत दिया है आरडी वर्मन ने।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए हिमेश रेशमिया, श्रेया घोषाल और राहत फतेह अली खान की आवाज में फिल्म बॉडीगार्ड का ये गीत। शब्द रचना नीलेश मिश्रा और शब्बीर अहमद की है, संगीत हिमेश रेशमिया का।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए पुराने गीत सुहाने समाप्त हुआ। एफएम 103 पर आकाशवाणी का ये झांसी केंद्र है। शाम के 7:19 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

0: exactly.
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: मुख्य समाचार। जनगणना 2027 के तहत स्वगणना प्रक्रिया का आज अंतिम दिन। प्रदेश के 46,93,000 लोगों ने लिया हिस्सा। कल से शुरू होगी मकानों की गणना। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह बने पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। चार अन्य सदस्यों को भी मिली नियुक्ति। पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण तय करेगा आयोग। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों में लागू होगा ड्रेस कोड। विद्यार्थियों के बीच समानता को मिलेगा बढ़ावा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जबरदस्त गर्मी और लू के प्रकोप से राहत और बचाव कार्यों को तेज करने के दिए निर्देश। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में प्रदेश भर में हीट वेव का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। जनगणना 2027 के तहत 7 मई से चल रही स्वगणना प्रक्रिया आज अंतिम दिन है। प्रदेश में अब तक 46,93,783 लोगों ने स्वगणना में हिस्सा लिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: स्वगणना करने वाले अग्रणी जनपदों में शाहजहांपुर पहले स्थान पर है, जहां लगभग 2,96,000 लोगों ने स्वगणना की। दूसरे नंबर पर आजमगढ़, जबकि तीसरे स्थान पर बरेली रहा। राजधानी लखनऊ में लगभग 98,000 लोगों ने स्वगणना की। राज्य की जनगणना निदेशक और मुख्य जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि अगले चरण में कल से जनगणना कर्मी घर घर जाकर फॉर्म भरवाएंगे। जिन लोगों ने स्वगणना के तहत अपनी जानकारी पोर्टल में दर्ज करा दी है, उन्हें 11 अंकों वाले कोड को प्रगणक के घर आने पर देना होगा, जिससे जानकारी का सत्यापन होगा। ये प्रक्रिया 22 जून तक चलेगी। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
0: प्रदेश सरकार ने 5 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर दी है। हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आयोग के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई थी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह को इस नए 5 सदस्यीय आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि सेवानिवृत्त अपर जिला न्यायाधीश ब्रजेश कुमार और संतोष कुमार विश्वकर्मा, सेवानिवृत्त आईएएस डॉक्टर अरविंद कुमार चौरसिया और एसपी सिंह को आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। इस आयोग पर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग के लिए सीटें आरक्षित करने की जिम्मेदारी होगी। आयोग के सभी सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने से 6 महीने की अवधि के लिए होगा। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर सभी राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में ड्रेस कोड का पालन अनिवार्य किया जाएगा। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि सभी शिक्षण संस्थानों में यूनिफॉर्म व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे छात्र छात्राओं के बीच समानता और अनुशासन की भावना को बढ़ावा मिलेगा। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि एक अच्छी पहल है।
3: मैं समझता हूँ कि विश्वविद्यालयों में अनुशासन पठन पाठ की प्रक्रिया और उसके साथ साथ अगर कोई उनकी छात्रों की समस्याओं के लिए जैसे समितियां श्री राज्यपाल महोदया ने बनाई है, ये एक अच्छी पहल है। और एक समान बच्चे दिखें, अलग अलग देखते उनको लग जाए कि ये इस विद्यालय के भी अच्छी बात हो सके। शिक्षा में इस प्रकार के सुधार कार्यक्रम किए गए हैं वर्तमान काल में, तो मैं कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश अब शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र बन चुका है। और ये एक अच्छा वो है कि सबके साथ सामूहिक स्वीकृति के आधार अलग अलग ड्रेस कोड हो तो ये ज्यादा बेहतर।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में आयोजित जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के समापन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब खेल संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण स्तर से लेकर जनपदों में खेल के मैदान और स्टेडियम का निर्माण करा रही है। श्री योगी ने कहा कि देश के युवा खेल के साथ विभिन्न क्षेत्रों में भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित कर सकते हैं।
4: ये युवा ही स्पोर्ट्स के क्षेत्र में और जीवन के अलग अलग क्षेत्र में भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित कर सकते हैं। मैं देख रहा था कि पिछली सरकारों में कोई खेल नीति नहीं थी। हमने उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद खेल नीति विकसित की। हमने इंटरनेशनल चैंपियनशिप में, नेशनल चैंपियनशिप में जिन भी खिलाड़ियों ने मेडल प्राप्त किए हैं, ऐसे 534 खिलाड़ियों को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार में सीधी भर्ती के माध्यम से उनके मेडल के आधार पर पुलिस में डिप्टी एसपी का पद भी, राजस्व विभाग में भी और अन्य विभागों में भी हमने उनको समाहित किया है, उनको सीधे नियुक्ति

0: सिर्फ रिया है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में इन्वेस्ट यूपी के अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के पांचवें चरण की समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के आगामी चरण में हर जनपद में निवेश हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी के चलते जनजीवन प्रभावित है। बांदा बीते चार दिनों से लगातार देश का सबसे गर्म जनपद बना हुआ है। कई अन्य जिलों में भी तापमान 46 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। जबरदस्त गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसामान्य को हीट स्ट्रोक, पानी की कमी और गर्मी से होने वाली अन्य समस्याओं से बचाने के लिए सभी विभाग समन्वय बनाकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और राहत एजेंसियां अलर्ट मोड में रहें। सभी जिलों में भी स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी जारी की गई है। फतेहपुर के अधिशासी अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि हीट वेव के मद्देनजर नगर पालिका प्रशासन ने शहर के चौराहों और बाजारों में वाटर स्प्रिंकल लगवाए हैं।
2: हीट वेव को देखते हुए एडवाइजरी जो है सरकार ने जारी की है। नगरी क्षेत्रों में नगर पालिका द्वारा जो है हमने 22 स्थानों पे अस्थायी हमने प्याऊ लगवाए हैं और इसके अलावा शहर में हमारे 14 वाटर कूलर लगे हुए हैं जिससे शीतल पेयजल लोगों को उपलब्ध हो रहा है। इसके अलावा जो हीट वेव का अलर्ट आ रहा है और मौसम जितना गर्म है इसको देखते हुए हम लोग स्प्रिंकलर के माध्यम से छिड़काव करा रहे हैं। जो भी हमारे तिराहे चौराहे हैं या मार्केट की एरिया है उस एरिया में हम स्प्रिंकलर के माध्यम से छिड़काव करा रहे हैं जिससे वातावरण में थोड़ी सी नमी उत्पन्न होती है और लोगों को राहत मिलती है।
1: प्रदेश के 44 जिलों के 861 केंद्रों पर आज लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई। करीब 8000 पदों के लिए हुई इस परीक्षा में लगभग 366,700 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा को पारदर्शी और नकलविहीन ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए। परीक्षार्थियों के आवागमन के लिए रेलवे द्वारा विशेष ट्रेनों का संचालन भी किया जा रहा है। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए बरेली जंक्शन और मथुरा जंक्शन के बीच दो स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे भी गोरखपुर लखनऊ परीक्षा स्पेशल ट्रेन का संचालन कर रहा है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने इस वर्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के लिए केंद्रों की सूची में कानपुर, मेरठ और भुवनेश्वर को भी शामिल किया है। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों की कुल संख्या 83 हो गई है। आयोग के अनुसार नए केंद्रों के लिए लगभग 23,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। आयोग के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने कहा कि इसका उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को अनुकूल, सुलभ और कुशल बनाना है। उन्होंने कहा कि आयोग ये भी सुनिश्चित कर रहा है कि दिव्यांग उम्मीदवारों को उनके पसंदीदा परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट जून 2026 के लिए आवेदन तिथि 23 मई तक बढ़ा दी है। पहले 20 मई तक ही आवेदन किए जा सकते थे। जिन छात्रों को भरे हुए आवेदन पत्र में कोई त्रुटि

पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गोरखपुर दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्र गोरखपुर का निरीक्षण किया। उन्होंने दोनों केंद्रों से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। संयुक्त सचिव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण भी किया। इस अवसर पर दूरदर्शन और आकाशवाणी से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जनगणना 2027 के तहत स्वगणना प्रक्रिया का आज अंतिम दिन। प्रदेश के 46,93,000 लोगों ने लिया हिस्सा। कल से शुरू होगी मकानों की गणना। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह बने पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। चार अन्य सदस्यों को भी मिली नियुक्ति। पंचायत चुनाव में

0: पिछड़ा वर्ग आरक्षण तय करेगा आयोग। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों में लागू होगा ड्रेस कोड, विद्यार्थियों के बीच समानता को मिलेगा बढ़ावा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जबरदस्त गर्मी और लू के प्रकोप से राहत और बचाव कार्यों को तेज करने के दिए निर्देश। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में प्रदेश भर में हीट वेव का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
2: FM पर 103 पर आकाशवाणी का ये झांसी केंद्र है। प्रस्तुत है बुंदेली लोक संगीत का कार्यक्रम खुशबू माटी की।

खुशबू माटी की इस कार्यक्रम का पहला लोकगीत आपने सुना, उद्दीलाल कुशवाहा और साथियों के स्वर में

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: लड़का बिटिया तन कई होत सयाने और बाप ने कर दो ब्याह सुखन खो जीवन सदा नसाने।
1: अरे भैया
0: अरे तो भौरी।

दिलीप कुमार रैकवार और साथियों के स्वर में आपने सुना समाज सुधार गीत। इसके साथ ही बुंदेली लोक संगीत का कार्यक्रम खुशबू माटी की समाप्त हुआ। एफएम 103 पर आकाशवाणी का ये झांसी केंद्र है। रात्रि के 8 बजने को है प्रस्तुत आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से प्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम।

हवा महल में आज सुनिए विष्णुदत्त गौड़ का लिखा प्रहसन जान बची। निर्देशक हैं जयदेव शर्मा कमल।

0: श्रीमान जी, आपने मुझे श्रीमान जी कहा? वाह वाह वाह, आइए आइए, तशरीफ रखिए। आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई।
1: मुझे भी
0: बड़ी प्रसन्नता हुई। आज पहली बार मुझे किसी सज्जन महापुरुष ने श्रीमान जी कहा है। बोलिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ, क्या सेवा कर सकता हूँ, क्या सत्कार कर सकता हूँ?
1: सुनिए,
0: अरे सुनने सुनाने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है। आप आए हमारे घर, खुदा की कुदरत, कभी हम आपको देखते हैं तो कभी अपने
1: पागल खाने को।
0: वाह वाह, मुकर्रर इरशाद, वाह क्या बात है, क्या नुकता खींच के मारा है, सारा भेजा मारा गया। लगता है आप शायर हैं?
1: जी नहीं।
0: तो फिर कवि हैं?
1: जी नहीं।
0: तो फिर आप?
1: जी,
0: फिर
1: मैं आप सिर्फ और सिर्फ इसी शहर का अदना सा समाज सेवक हूँ।
0: समाज सेवक यानी?
1: कहिएगा नहीं, मेरे दांत खाने के और दिखाने के और, अर्थात दुनिया के लिए समाज सेवक, अपने लिए पापी पेट का सेवक।
0: आप बिल्कुल ठीक फरमाते हैं जनाब। यहाँ जो भी आता है वो अपने आप को सेवक ही बताता है जनता का। आप तो उनके पैरों की धूल भी नहीं है।
1: डॉक्टर साहब कहाँ हैं?
0: अजी, डॉक्टर को मारिए गोली। पहले आप ये फरमाइए कि आप क्या लेना पसंद करेंगे?
1: जी?
0: मेरा मतलब है आप क्या पिएंगे, चाय, कॉफी, लस्सी, शिकंजी या दूध? निपिल से
1: मुझे कुछ नहीं पीना है।
0: अच्छा, तो आप क्या नोश फरमाएंगे? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मेरा मतलब है कि आप क्या खाना पसंद करेंगे, चपाती या चपाती, बिस्कुट या दालमोठ?
1: मुझे न तो कुछ खाना है न कुछ पीना, मैं तो डॉक्टर साहब से मिलने आया हूँ।
0: ठीक है ठीक है, मैं ये कब कह रहा हूँ कि आप अपने ससुर जी से मिलने आए हैं
1: जी?
0: या अपने रिश्तेदार जी से
1: जी?
0: यहाँ तो जो भी आता है किसी ना किसी जी से ही मिलने आता है। मैं जब यहाँ पहली बार आया था तो मैंने भी यही कहा था कि मैं डॉक्टर जी से मिलने आया हूँ।
1: लगता है आप?
0: जी, मैं यहाँ का परमानेंट हूँ। लगता है मैंने आपको कहीं देखा है
1: जी।
0: आप आगरा में तो नहीं थे?
1: जी नहीं।
0: बरेली, रांची?
1: जी नहीं।
0: तो फिर मैंने आपको ख्वाब में देखा
1: जी,
0: होगा।
1: मैं वहाँ कभी गया ही नहीं।
0: अच्छा,
1: क्या वहाँ भी कोटा परमिट मिलता है?
0: अच्छा,
1: रिश्वत कितनी देनी पड़ती?
0: मैं तो यहाँ की बात कर रहा था।
1: यहाँ की? मैं तो पहली बार आया हूँ। बड़ी तारीफ सुनी है आपके पागल खाने की, है देखने चला आया हूँ।
0: अच्छा ठीक, चले आए हैं, ऐसे ही आना चाहिए था। मैं भी यहाँ आया था तो मैंने भी यही कहा था। अब आप इसे अपना ही समझिए। क्या
1: क्या
0: घर? मैं आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं यहाँ का सबसे बड़ा वफादार हूँ, बहुत ही गैर जिम्मेदार
1: जी।
0: मेरा मतलब है बहुत ही जिम्मेदार हूँ। मैं अभी आपको सारा घुमाता हूँ पागलखाना। देखिए, यहाँ अकेले घूमना मना है।
1: क्यों साहब, अकेले घूमना क्यों मना है?
0: अजी साहब, जानवरों और पागलों का क्या भरोसा, पता नहीं कब अटैक कर बैठे।
1: अच्छा, अब तो यहाँ ये भी होता है?
0: यहाँ क्या कुछ नहीं होता, यहाँ क्या कुछ नहीं होता। मगर आप चिंता ना करें, मैं आपको यहाँ की खास खास बातों से अवगत यानी कि इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। पहले आप झुकिए।
1: झुकिए? मगर क्यों झुके साहब? समाज सेवक टूट सकता है पर झुक नहीं सकता। तालियां तालियां।
0: अगर आप झुकना नहीं चाहते हैं तो मेरी तरफ पीठ करके खड़े हो जाइए। अब आओ टर्न।
1: ये क्या मजाक है?
0: मजाक? आप इसे मजाक कह रहे हैं? मैं आपसे मजाक करूंगा? मेरा आपका कोई मजाक का हिस्सा है? अरे मैं तो आपको अवगत यानी कि इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। ठीक है, अब आप बैठ जाइए।
1: बैठ जाइए?
0: यस।
1: बैठने का क्या मिलेगा, तुम कहते हो तो लो, मैं बैठा जाता हूँ। आप निकालो थैली।
0: गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब आप पूछिए कि मैंने ऐसा क्यों किया?
1: क्यों किया?
0: पूरा वाक्य बोलिए। आपने ऐसा क्यों किया?
1: आपने ऐसा क्यों किया?
0: मैंने ऐसा एक राज की बात बताने के लिए किया है।
1: राज की बात?

0: एक बार मैंने और मेरे एक साथी ने इस चार दीवारी की बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाया। छुट्टी का दिन था, एक पागल यहां से फाटक की तरफ भागा।
1: भागा?
0: मैंने देखा कि पागल खाने का फाटक खुला है और चौकीदार
2: जब
0: सो रहा है। पागल ने चौकीदार से नमस्ते की।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते। फिर क्या देखता हूं कि वो पागल पागलखाने के बाहर 100 की स्पीड से भागते चला जा रहा है।
1: फिर क्या हुआ?
0: इतने में डॉक्टर साहब आ गए।
3: डॉक्टर साहब एक पागल पागलखाने से 100 की स्पीड से भागा है। डॉक्टर साहब 100 की स्पीड से भागा।
4: तुमने उसे भागते हुए देखा?
3: जी हाँ साहब, वो मेरी आंखों के सामने से भागा।
4: तो फिर तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं?
3: अरे साहब, मैं उसे कैसे पकड़ता, वो अपने सिर पर पैर रखे हुए था।
5: गुड, वेरी गुड, आपका तो प्रमोशन किया जाना चाहिए। वाकई में आप काफी होशियार।
0: थैंक यू।
5: हाँ, तो आपने ये तो बताया ही नहीं कि आपने और आपके साथी ने क्या प्रोग्राम बनाया था।
0: अरे हाँ, वो तो मैं बताना ही भूल गया, और खूब याद दिलाया आपने। मेरे दोस्त ने कहा चलो आज हजरतगंज घूमने चलते हैं, वहाँ से एक कार खरीद कर लाएंगे।
5: अच्छा?
0: उसने 10 रुपए का नोट मेरे हाथ पर रख दिया और हम दोनों हजरतगंज कार लेने चल दिए।
5: अम्मा क्या कह रहे हैं आप?
0: अजी मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ जनाब। अजी साहब पूरी बात तो सुनिए।
5: सुनाइए।
0: हाँ, तो मैं कह क्या रहा था,
5: यही कि आप 10 रुपए लेकर हजरतगंज कार लेने चल दिए।
0: अरे वाह, आपकी मेमोरी तो काफी तेज है, यहाँ आकर सबकी मेमोरी तेज हो जाती है। हाँ तो साहब, हम लोग घूमते घूमते गोमती पहुँच गए।
5: अच्छा?
0: मेरे दोस्त ने कहा कि यार आज मैं नदी पार करूंगा। झड़े का मौसम, सर्दी अपनी पूरी जवानी पर थी। मैंने कहा तुम्हें तैरना आता है? तो उसने कहा हाँ, और साहब वो कूद पड़ा नदी में।
5: अरे बाप रे।
0: अब मैं क्या देखता हूँ कि वो पानी में डुबकियां लगा रहा है। हुँ, हुँ, हुँ, तब मैं भी साहब कूद पड़ा और उसे पानी के बाहर निकाल लाया। फिर मैंने उसका पैर दबाया।
5: वाह।
0: फिर उसका पेट दबाया।
5: वाह।
0: फिर उल्टा किया।
5: अरे?
0: फिर पेट दबाई।
5: वाह।
0: फिर उल्टा किया। फिर आखिर में उसका गला दबा दिया।
5: क्या बात।
0: और जब सारा पानी उसके पेट से निचुड़ गया तो मैं उसे लाद कर वापस यहाँ आ गया। सुबह डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाया और कहने लगे,
6: राम भरोसे
0: जी,
6: तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे साथी ने आत्महत्या कर ली है?
3: जी डॉक्टर साहब, वो आदमी इतना तो समझदार नहीं था, ये क्या हुआ?
6: समझदार नहीं था? फिर वो अपने गले में रस्सी का फंदा डालकर कैसे लटक गया?
3: आप गलत समझ रहे हैं डॉक्टर साहब, वो अपने गले में फंदा डाल ही नहीं सकता था, उसे तो मैंने लटकाया था।
6: लटकाया था? लेकिन क्यों
3: साहब? ठीक गया था, मैंने उसे सूखने के लिए टांग दिया था।
5: गुड, वेरी गुड।
0: उधर वाली बैरक देख रहे हैं आप, उधर मत जाइएगा, उधर के मरीज टुम्मा फेंक कर मारते हैं।
5: अच्छा?
0: हाँ, और उधर देखिए दूसरी बैरक, उधर भी मत जाइएगा।
5: क्यों?
0: उधर मरीज काट खाते हैं।
5: अरे बाप रे।
0: और वो देखिए तीसरी बैरक, उधर तो भूल कर भी मत जाइएगा।
5: क्यों क्यों?
0: उधर जो भी गया आज तक लौट कर नहीं आया।
5: अच्छा?
0: और वो रही चौथी बैरक, उधर की पागल कभी मर गए। उधर के पागलों की पीठ पर नंबर पड़े 1 से लेकर 420 तक। अगर कोई हादसा हो जाए तो आप मुझे याद कर लीजिएगा, मेरा नंबर ये देखिए 37 है।
6: नंबर 37। मैंने तुमको कितनी बार मना किया है कि तुम मेरे कमरे में मत आया करो।
0: जी,
6: तुम फिर आ गए।
0: डॉक्टर साहब, मैं आपको सुबह से ढूंढ रहा था, आप कहाँ गए थे?
6: क्यों क्यों ढूंढ रहे थे आप?
0: मुझे आपकी नाक बहुत अच्छी लगती है डॉक्टर साहब, मैं इसे काट कर अपने पास रखना चाहता हूँ।
6: क्यों भाई, मेरी ही नाक क्यों अच्छी लगती है, इन समाज सेवक जी की क्यों नहीं?
0: नहीं।

0: इनकी नाक मोम की है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा भाई, तब तो एक प्रॉब्लम है। आप मेरी नाक काटेंगे कैसे?
0: चक्कू से, चक्कू से,
1: चक्कू से। अच्छा, तो आप सब इंतजाम करके आए हैं। आप चुप रहिए
0: जी।
1: हाँ तो राम भरोसे
0: जी सर,
1: तुम मेरी नाक काटोगे
0: जी।
1: पर भाई इस वक्त तो तुम देख रहे हो मैं बहुत बिजी हूँ, फिर ये साहब भी बैठे हैं, इनसे बात भी तो करनी है ना।
0: आप चिंता ना करें डॉक्टर साहब, मैं एक घंटे बाद फिर आ जाऊंगा।
1: गुड, वेरी गुड। अच्छा जाओ, अब अपनी बैरक में जाओ।
0: अच्छा
1: जाओ।
0: थैंक यू सर। साहब को सलाम करेगा पर एक सलाम, एक दो एक
2: जान बची जान,
0: एक दो एक
2: जान बची जान,
0: एक दो एक
2: जान बची जान।

अभी आप सुन रहे थे प्रहसन जान बची, लेखक विष्णुदत्त गौड़, निर्देशक जयदेव शर्मा कमल। अब आज का हवा महल कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई,
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से प्रसारित राष्ट्रीय सेवा विविध भारती के कार्यक्रम FM 103 पर आकाशवाणी का ये झांसी केंद्र है। इस समय 8:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। इसमें आज आप सुनेंगे पुराने नगमे।

कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना मोहम्मद रफी और शारदा की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने गीत लिखा था, संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने और फिल्म का नाम था तुमसे अच्छा कौन है। और आइए अब सुनते हैं सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाज में इंदिवर का लिखा गीत, संगीत शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम पहचान।

0: अभी आपने फिल्म पहचान का ये गीत सुना सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाज में। इंदिवन ने गीत लिखा था, संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। और आइए अब सुनते हैं ये संदेश।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर।

0: और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूँ। मैं हूँ आपका कैलाश ठेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

इस संदेश के बाद आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म इज्जत का ये गीत। साहिर लुधियानवी ने गीत लिखा है, संगीत यह है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था और फिल्म थी ज्वार भाटा। कार्यक्रम के अंत में सुनिए मुकेश और राजकुमारी की आवाज में केदार शर्मा का लिखा गीत संगीत रोशन का और फिल्म का नाम है बाबरे नैन।

नैन, इस फिल्म का गीत अभी आपने मुकेश और राजकुमारी की आवाज में सुना। इसके साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम समाप्त हुआ। इसमें आज आपने सुने पुराने नगमे। एफएम 103 पर आकाशवाणी का ये झांसी केंद्र है। इस समय 8:45 होने को है। समाचार संध्या और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग

को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस के प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री

0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारों को और विकसित करने पर सहमति जताई। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।
2: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भुखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
0: कृषि मंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार देश के मेहनती किसानों के परिश्रम का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद लगभग 80 करोड़ लोगों को विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाखों किसानों को सहायता प्रदान की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमरीकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत हो रही है।
3: भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं। अमेरिका को एक भरोसेमंद साझेदार की तलाश है। मुझे लगता है कि भारत का दशकों से एक देश के रूप में वास्तव में काम करने का प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ व्यवसायों का एक ऐसा समूह है जो विदेशी कंपनियों की बौद्धिक संपदा का सम्मान करता है और जिस पर समय पर उच्च गुणवत्ता का काम करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। भारत में अपार प्रतिभाएं हैं और कुछ मायनों में ये दो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं।
2: इकोनॉमीज विच टोटली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। एफकैट 1 ऑफ 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या fcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
3: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
2: सुशील शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा बचाने की सलाह दी। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की।
4: द मिनिस्ट्री ऑफ पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 72 घंटों में भारतीय ध्वज वाले किसी भी जहाज या भारतीय चालक दल वाले किसी भी विदेशी जहाज से जुड़ी किसी भी घटना की कोई खबर नहीं मिली है।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। यह यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा

0: और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने कहा है कि संदिग्ध और पुष्ट इबोला रोगी के रक्त तथा शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आए यात्रियों को आव्रजन जांच से पहले हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचित करना चाहिए। आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों का अनुपालन करने के लिए स्वास्थ्य जांच और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में सहयोग करने की सलाह दी गई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण 28 मई को नई दिल्ली में शुरू होने वाला भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद ये निर्णय लिया गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसी ही स्थिति पूरे सप्ताह बनी रहेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना है।
2: मौसम विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में कल से लेकर इस सप्ताहांत तक लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी बंगाल में गंगा से सटे इलाकों में और ओडिशा में अगले 2 से 3 दिनों तक गर्म और उमस भरे मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कहा कि उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में रविवार तक भारी बारिश होने की आशंका है। ईशान के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 16वें ओवर में एक विकेट पर 164 रन बना लिए थे। इससे पहले चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अश्मिता चालिहा मलेशिया की गो जिन वे को हराकर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब उनका मुकाबला डेनमार्क की लाइन हुजमार्क कजर्सफेल्ड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य पर संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says Prime Minister Narendra Modi's 5-nation visit guarantees advantages for every segment of the society, asserts world is looking towards India as a trusted partner. Railway Minister Ashwini Vaishnav stresses on enhancing technology-driven security systems and improving operational security. Government reiterates that country has sufficient supplies of crude, petrol, diesel, natural gas and LPG. Center issues health advisory for passengers arriving from or transiting through Ebola-affected countries. India-Africa Forum Summit postponed. IMD issues red alert for heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for tomorrow. And in IPL cricket, match between Gujarat Titans and Chennai Super Kings underway in Ahmedabad.

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपके लिए।

रूना लैला की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे घरौंदा फिल्म से, जयदेव का संगीत था। और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम आपके लिए यहीं समाप्त होता है। आपने आज का इस संगीत का सफर तय किया अनुराधा उपाध्याय के संग।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित राष्ट्रीय सेवा विविध भारती के कार्यक्रम एफएम 103 पर आकाशवाणी का ये झांसी केंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो झांसी। स्वर एवं प्रस्तुति सहयोग हेमंत पाल सिंह बुंदेला का है। प्रस्तुत करता है अंजलि कुमारी।

हेलो झांसी कार्यक्रम के तमाम सुनने वालों को अपने रेडियो दोस्त हेमंत सिंह का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हमारा कार्यक्रम सभी रेडियो प्रेमियों के लिए एक प्लेटफॉर्म का काम करता है, जहां पर देश के कोने कोने से श्रोता इकट्ठे होते हैं और अपनी पसंद, अपनी संस्कृति, अपने क्षेत्र की जलवायु, अपने काम काज और अपनी रेडियो से जुड़ी पुरानी यादों को हमारे साथ साझा करते हैं। आपकी ये बातें, अनुभव हमें भी रोमांचित कर देते हैं। साथ ही

0: हम आपकी पसंद का गीत रेडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं, ये हमें अंदर से प्रफुल्लित कर देता है। तो दोस्तों, कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारा फोन नंबर नोट कीजिए। फोन नंबर है 0510-232-0068। फोन करने का समय है प्रत्येक रविवार और बुधवार को दोपहर 2 बजे से लेकर 3 बजे तक। तो बस हो जाइए तैयार हमारे कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। कार्यक्रम शुरू हो गया है। तो आइए जानते हैं कि कौन से श्रोता हैं जो सबसे पहले लाइन पर हैं। हेलो झांसी, कार्यक्रम में स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं आप?
1: मनीषापुर कानपुर बिहार से रामेश्वर कटेरिया।
0: रामेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: जी सर।
0: जी कैसे हैं रामेश्वर जी?
1: हम तो सर बिल्कुल बढ़िया है, इस समय गर्मी बहुत पड़ रही है।
0: जी बिल्कुल, पूरे उत्तर भारत गर्मी की चपेट में है।
1: लू बहुत चल रही है, हम तो बहुत ठंडे यार बैठे हैं कमरा में। हमने
0: गर्मी से बचने के लिए क्या कर रहे हैं आप?
1: गर्मी की वजह से ठंडी में बैठे, अपने कमरा में बैठे आराम से।
0: अच्छा, और खाने पीने में क्या सावधानी बरत रहे हैं?
1: मैं ठंडा फंडा ज्यादा पीते नहीं, कोई भी चीज नहीं खाते हैं, न तली हुई चीज खाते हैं।
0: जी अच्छा, तो दोपहर में घर से बाहर नहीं निकलते?
1: जी सर।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा, और ऐसे ही हम गर्मी से बच सकते हैं। जी रेडियो सुनते हैं आप?
1: जी बिल्कुल, लाइट में बिल्कुल सुनता हूँ बराबर।
0: जी हमारे कार्यक्रम की जो जानकारी है वो आपको कैसे मिलती है?
1: बहुत बढ़िया, मोबाइल ऐप से सुनते हैं।
0: न्यूज़ ऑन AIR ऐप से?
1: ऐप से सुनते हैं। जी सर।
0: जी ऐप डाउनलोड है तो उससे आप प्रोग्राम सुनते हैं?
1: जी सर।
0: जी तो आज रामेश्वर जी कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: मेरे सनम का।
0: कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: उनका मैंने कई बार एडिट किया।
0: तो आपकी पसंद का गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सुने ये गीत।

0: हेलो।
1: हेलो, झांसी कार्यक्रम में स्वागत है।
0: नमस्ते सर जी।
1: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं आप?
0: ग्राम तजोनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंदसौलिया।
1: आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो झांसी कार्यक्रम में।
0: कुल हम तो झांसी लगाना पसंद सबसे पहले रहता है क्योंकि हमारा पड़ोसी आकाशवाणी केंद्र है।
1: जी बिल्कुल, तो क्या करते हैं सत्येंद्र जी आप?
0: जी हमारी किराने की दुकानदारी है और खेती किसानी है।
1: दोनों काम एक साथ करते हैं?
0: अब देखिए खेती में तो ये हो जाता है कि शामिल खाता रहता है पार्टनर से
1: जी,
0: तो देखा परखी उसकी रहती है और विशेष समाचार हमारी रहती है और सब काम जो है वो उसका रहता है
1: जी।
0: उसके बाद दुकानदारी में तो ये अपना पूरा समय देना ही है
1: जी। और रेडियो भी सुनते हैं आप?
0: ये तो पहला शौक है
1: जी,
0: क्योंकि हमारे अंदर और कोई शौक नहीं है।
1: आप कब से रेडियो सुन रहे हैं?
0: रेडियो सुनने का हमारा सफर काफी लंबा है
1: जी। हमारे श्रोताओं को बताइए कि कब से आप रेडियो से जुड़े हैं?
0: रेडियो तो हम रेडियो से जुड़े हैं 1985 से।
1: क्या बात है, तो आप 1985 से रेडियो सुन रहे हैं?
0: हाँ, उस समय जो है क्या, उस समय सिर्फ आकाशवाणी पता पर सुन पाते थे क्योंकि झांसी तो था भी नहीं उस समय
1: जी।
0: से मजे की बात ये है कि सभी मोबाइल में आ गए हैं
1: न्यूज ऑन
0: के माध्यम से
1: जी।
0: तो अब इसमें सुनने में ये है कि अब जहाँ भी सुनना चाहते हो, जैसे अब आज हम अपने झांसी को कहीं भी बैठ के सुन सकते हैं, सतर्कों को कहीं भी बैठ के सुन सकते हैं, सभी जानते हैं ये प्रक्रिया है।
1: हमारे कार्यक्रम की जानकारी आपको कैसे मिलती है? आप फेसबुक पेज से देखते हैं या फिर रेडियो सुनकर ही आप हमारी जानकारी?
0: रेडियो पे नहीं आती है, फेसबुक पे ही देखना पड़ता है। जैसे अपना मुझे जब आपके फार्मेसी कार्यक्रम जो आते हैं
1: जी,
0: तो फेसबुक पे ही सुन पाते हैं और रेडियो पे आपको नहीं सुन पा रहे।
1: तो आप इसके लिए फेसबुक पेज पर जो अपडेट हमारे यहाँ से होता है उसको आप देखते हैं और फिर आप हमारे यहाँ कॉल करते हैं?
0: हाँ, बस बहुत ही हिसाब से देख के आपके यहाँ और कॉल करने का। हम एक बात आपको और बता दें
1: जी
0: कि हमारा एक ग्रुप है
1: जी,
0: हेलो फरमाइश एकता रेडियो श्रोता ग्रुप, ये महाराष्ट्र का है यद्यपि
1: जी।
0: उसमें जो उसमें जुड़े हैं जो भी श्रोता गांव
1: जी जी,
0: तो प्रत्येक आकाशवाणी भारत की उसमें सभी टाइम टेबल डे टू डे डालते हैं
1: जी,
0: तो उसमें सब पता चलता है कि आज हम कहाँ फोन लगाएं, किस समय कहाँ फोन लगा।
1: क्या बात है, तो सभी श्रोताओं ने मिलकर एक मंच बनाया है और हर जगह आप लोग कॉल करते हैं, अपनी पसंद के गीत सुनते हैं।
0: तो फिर वो गीत सुनना है क्योंकि मजा तो तभी आता है सही कि जब हम आपसे बात कर रहे हैं, अब हम आपसे सुनेंगे अपनी बात
1: जी,
0: हमारी बात कितनी हुई क्या है
1: जी। क्या बात है, तो आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। क्या रणनीति अपनाती है ये हमें मालूम चली। तो सत्येंद्र जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: तो फिल्म दो रास्ते का गीत सुना दीजिए।
1: कौन सा गीत है इस फिल्म से?
0: अपनी अपनी बीवी पर सबको गुरूर है।
1: तो आपकी पसंद आप तक पहुंचाते हैं।
2: अपनी

0: हेलो झांसी कार्यक्रम में स्वागत है।
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं आप?
1: जी सर, हम धेमाजी आसाम जिले में सकीसापुर से बिमल बसुमकर बोल रहा हूँ सर।
0: बिमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी झांसी के कार्यक्रम हेलो झांसी में। असम से बात कर रहे हैं आप?
1: जी सर, हम धेमाजी आसाम से बात कर रहे हैं सर।
0: कैसा मौसम है असम में इस समय?
1: सर मौसम तो बहुत गर्म है, कल से इतना गर्मी हो रहा है, आज तो पूरा दिन भर धूप है, इतना गर्म हो रहा है सर।
0: जी
1: हम अभी दुकान में बैठा हुआ है, दुकान में इतना गर्मी है, दुकान में एकदम बैठने के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, इतना गर्मी है सर।
0: जी
1: उधर कैसे है सर?
0: यहाँ भी बहुत गर्मी है और गर्म तो पूरा भारत ही है।
1: जी
0: रेडियो कब से सुन रहे हैं विमल जी?
1: रेडियो तो हम रोज सुनते रहते हो, दुकान में लगातार रेडियो बजते रहता है मेरा सर, प्रोग्राम सुनते रहता हो।
0: किस चीज की दुकान है आपकी?
1: सर हम सिलाई का काम कर रहे हैं।
0: सिलाई का काम करते हैं? पुरुषों के सिलाई के वस्त्र बनाते हैं या महिलाओं के टेलर हैं?
1: जी सर, पुरुष का भी करता है, महिला का भी करता है।
0: क्या बात है, दोनों के वस्त्र सिलते हैं आप?
1: जी सर।
0: जी, और रेडियो से सिलसिला आपका कैसे जुड़ा हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: जी सर, हम लोग का मेरा बहुत दोस्त है, वो लोग से जानकारी मिला है, हम लोग सुनकर हम लोग का बहुत बहुत छोटा है
0: जी,
1: हम लोग का स्टाफ है रेडियो ग्रुप।
0: जी जी, अच्छा, तो ग्रुप है आप सभी लोगों का और आप ग्रुप पर जानकारी साझा करते हैं, उसके बाद फिर आप सभी लोग कॉल करते हैं?
1: जी सर, जी करा करता हूँ।
0: जी, तो आपको पसंद आता है आकाशवाणी से गाने सुनना?
1: जी सर, अच्छा लगता है सुनके।
0: जी, तो बिमल जी, आज आपका कॉल लगा है आकाशवाणी झांसी में, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मैंने प्यार किया का वो, उसको भी सुनाने का आदेश था, कबूतर जा जा, वो
0: कबूतर जा जा।
1: जी सर,
0: सुने ये गीत।

0: नमस्कार
1: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
0: जी मैं दशरथ सेन बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के नाटाराम से।
1: मंदसौर से बोल रहे हैं आप?
0: जी हाँ
1: जी। तो क्या हाल चाल है मंदसौर में मौसम के?
0: मौसम अभी देखो बहुत गर्मी है
1: जी,
0: 43 डिग्री पर हमारा तापमान है इस वक्त
1: जी,
0: बहुत तगड़ी गर्मी लग रही है।
1: तो गर्मी से बचने के लिए आप क्या कर रहे हैं?
0: इसके लिए तो उपाय एक ही है कि ज्यादातर तो कोशिश होनी चाहिए कि जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा आपने घर में ही रहे और मिट्टी का बना हुआ जो मटके का पानी होता है उसका ही उपयोग करें।
1: बिल्कुल।
0: बस मैं सैलून का काम करता हूँ, हेयर कट की दुकान है अपने।
1: क्या बात है, आपके ग्राहक आते हैं वो भी रेडियो सुनते हैं?
0: ग्राहक क्या, पूरे क्षेत्र जानता है कि रेडियो का स्टेशन तो एक ही जगह सुनने को मिलेगा, वो है नाटाराम जहाँ पर दशरथ सेन की दुकान चल रही है। वहाँ पर आकाशवाणी का आनंद लेना हो तो वहाँ चलना पड़ेगा।
1: क्या बात है, तो कब से रेडियो से जुड़े हैं आप?
0: मैं 2000 से सुन रहा हूँ और 1990 से पापा के जमाने से चल रहा है।
1: ये जो पापा की विरासत थी रेडियो सुनने की, वो आप भी आगे बढ़ा रहे हैं?
0: जी बिल्कुल, पापा से ही मेरी आदत हुई थी और आज ये आदत 26 साल हो गए हैं
1: जी,
0: और 26 साल से मैं भी रेडियो से जुड़ा हुआ हूँ। जिस टाइम पर 4 सेल का रेडियो मार्केट में मिलता था
1: जी,
0: टाइम से आकाशवाणी का प्रसारण चल रहा है। और हमारे यहाँ ज्यादातर, पहले सर मैं आपको बताना चाहूंगा, आकाशवाणी झांसी पर पहले हम जुड़ नहीं पाते थे क्योंकि आपका प्रसारण इतना दूर तक नहीं था। आज तो मोबाइल ऐप हो गया तो दुनिया के किसी भी कोने में रहो आकाशवाणी पहुंच जाएगी
1: जी। अब तो न्यूज ऑन AIR है तो आप कहीं पर भी सुन सकते हैं।
0: अब तो लाइट हो या ना हो, बस मोबाइल ऐप होना चाहिए, दुनिया के किसी भी कोने में रहेगा श्रोता बंधु, वहाँ पर भी आकाशवाणी का प्रसारण पहुँचेगा बिल्कुल एक नंबर साफ क्वालिटी में।
1: क्या बात है, आकाशवाणी हर श्रोता तक पहुंच सके इसके लिए तकनीकी ने बदलाव किया और अब न्यूज ऑन AIR आ गया है, जिससे आप विश्व के किसी भी कोने में आप हमारा प्रोग्राम सुन सकते हैं।
0: जी बिल्कुल सुन सकते हैं और आकाशवाणी सुनने से मेरे ख्याल से बहुत सुकून मिलता है बीमार व्यक्ति को। अगर आकाशवाणी के पुराने गीत निकल के आते हैं, आपके लाइब्रेरी में बहुत पुराने गीत मौजूद हैं
1: जी,
0: जिस टाइम पर सुबह सुबह और दोपहर में जिस टाइम पर आपके यहाँ से गीत प्रसारित होते हैं
1: जी जी,
0: मैं कुछ ग्राहक बंधु जो आते हैं, कस्टमर लोग आते हैं, मैं उनको बताता हूँ कि आपके पास बड़ा मोबाइल है
1: जी,
0: इसमें न जाने कितने स्टेशन हैं, कितने जाने प्लेटफॉर्म आपके पास, तरह तरह के एप्स है उसमें गाने मिलते हैं, लेकिन एक ऐसा माध्यम है जहां से सुकून मिलता है, उसका नाम है आकाशवाणी।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने हमारे श्रोताओं के लिए और सभी श्रोता इसका लाभ भी ले रहे हैं
0: जी।
1: दशरथ जी, तो आज आपका कॉल हेलो झांसी में लगा है, कौन सा गीत आज आप सुनना चाहेंगे?
0: मेरे ख्याल से आज एक फिल्म याद आ रही है, फिल्म का नाम है साजन
1: जी,
0: तू शायर है मैं तेरी शायरी।
1: तो ये गीत हम आप तक, आपके रेडियो सेट तक पहुंचा रहे हैं, सुने ये गीत
0: बिल्कुल। और एक कहना चाहेंगे कि
1: जी,
0: हमने बोला पोस्टर भी दुकान पर 2026 में लगाया था
1: जी,
0: तो उसमें बड़े अक्षरों में हमने आकाशवाणी का मोनो भी लगा रखा है,
1: बहुजन
0: मिताई बहुजन सुखाय का बड़ा सा मोनो है और एक तरफ हमारी उस्तरा और केची का मोनो है।
1: क्या बात,
0: तो उसमें साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि जहां न पहुंचे प्राणी वहां पहुंचे आकाशवाणी।
1: क्या बात है, क्या बात है, तो बहुत अच्छा स्लोगन दिया, जहां न पहुंचे प्राणी वहां पहुंचे आकाशवाणी,
0: क्योंकि रेडियो के प्रति एक दीवानगी है।

0: काम धंधा सभी करते हैं, हम भी सैलून चलाते हैं
1: जी।
0: लेकिन यहाँ पर बैठने के बाद आकाशवाणी का मोनो दिखता है लोगों को, यहाँ दुकान के अंदर बना सा मोनो लगा रखा है, तो लोग कहते हैं कि जैसा मोनो तो हमने आकाशवाणी देखा था वहाँ लगा हुआ था, आपके यहाँ कैसे? मैंने कहा कि वो कैसे यूँ है कि हमारा तार आकाशवाणी से जुड़ा हुआ है, आकाशवाणी किसी को दिखती है लेकिन महसूस करने पर वो सब कुछ हो जाता है।
1: क्या बात है,
0: हमने आकाशवाणी का बड़ा सा मोनो दुकान पर लगा रखा है सुख और शांति के लिए।
1: बहुत अच्छा लगा हमें ये जानकर कि आप आकाशवाणी को इस कदर प्यार करते हैं और इतना सम्मान दे रहे हैं आकाशवाणी को। तो दशरथ जी, आपकी पसंद पर हम ये गीत आप तक पहुंचा रहे हैं, साजन फिल्म का।

0: हेलो
1: हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं आप?
0: जी सर नमस्ते, मैं ग्राम बचोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
1: प्रेम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो झांसी कार्यक्रम में।
0: जी
1: क्या करते हैं प्रेम जी?
0: सर मैं खेती किसानी का काम करता हूँ।
1: तो रेडियो कब से सुन रहे हैं?
0: रेडियो में 2000 पहले तो 2005 से सुनता था
1: जी।
0: उस समय तो रेडियो पर सुनता था, लेकिन 2019 तक मैंने रेडियो पर सुना और फिर अभी कुछ समय के लिए मैंने रेडियो सुनना बंद कर दिया था। फिर 2026 में फिर मोबाइल ऐप के जरिए मेरे कार्यक्रम सुनने लगा
1: जी। तो कैसे लगते हैं हमारे केंद्र के कार्यक्रम आपको?
0: जी हेलो झांसी कार्यक्रम हमारा सबसे पसंदीदा प्रोग्राम बन चुका है। इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है
1: जी,
0: हमारी आवाज के साथ में हमारा गाना प्रसारित होता है और सभी श्रोता की बातें सुनने को मिलती है
1: जी।
0: सबसे अच्छा कार्यक्रम इस कार्यक्रम की ये खासियत होती है।
1: तो आप खेती करते हैं, तो खेती बाड़ी में इस समय क्या चल रहा है आपके यहाँ?
0: जी अभी तो मतलब खेत में गेहूँ लहसुन की फसल लगाई थी
1: जी,
0: तो उसको तो हम काट के ले आए, खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया गया है
1: जी।
0: अभी बस पशुओं के लिए चारा लगा रखा है, उसमें पानी पिलाते हैं समय समय पर
1: जी,
0: और बस जब बरसात होगी तो सोयाबीन की फसल लगाई जाएगी
1: जी। और गर्मी कैसी पड़ रही है आपके यहाँ?
0: जी गर्मी काफी है यहाँ पे सर, 45 डिग्री के करीबन टेम्परेचर चल रहा है
1: जी,
0: और मतलब बहुत तेज गर्म हवाएं भी चल रही है
1: जी।
0: फिर मतलब इतनी गर्मी हो रही है तो हमने पशुओं के लिए वो जो पंखे जानवर होते हैं ना
1: जी,
0: उनके लिए मतलब हमारे घर के पास में दो बड़े वर्ग थे
1: जी,
0: तो उनके आसपास पानी के टब भर के रख दिए, 3-4 टब भर दिए पानी के। और मतलब आपको बताऊँ कुछ पशुओं के पंखे जानवर के लिए मतलब चावल है, गेहूँ, ये सब दाने भी बिखेर के रखे हुए हैं।
1: क्या बात है, आप गर्मी में पशु पक्षियों का भी ख्याल रख रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि सभी लोग इस तरह पशु पक्षियों का ख्याल रखें, उन्हें दाना रखें, चारा रखें और पानी भी रखें
0: जी बिल्कुल,
1: और रेडियो भी सुनें।
0: जी सर रेडियो तो सुनते रहते हैं, जब आकाशवाणी में हमारा संपर्क होता है ना
1: जी,
0: तो मतलब अच्छा लगता है और आकाशवाणी को तो हमने अपना परिवार समझ रखा है।
1: क्या बात है, आप लोग भी हमारा परिवार है क्योंकि आपके बिना हम अधूरे हैं।
0: जी बिल्कुल, श्रोता है तभी तो आकाशवाणी है और आकाशवाणी तो तभी श्रोता है।
1: क्या बात कही आपने, और परिवार में आप और भी लोग रेडियो सुनते हैं या आप ही सुनते हैं?
0: जी मैं सुनता हूँ ना रेडियो, तो जैसे कि हम घर पे में मेरी पत्नी और 3 बच्चे हैं मेरे
1: जी,
0: तो मतलब हम सभी लोग सुनते हैं कार्यक्रम, मतलब
1: सभी लोग कार्यक्रम सुनते हैं
0: ना जी, तो मोबाइल तो चालू करके रख देते हैं, तो मतलब अपना काम भी करते रहते हैं और कार्यक्रम भी सुनते रहते हैं।
1: सुनते रहते हैं, बहुत अच्छी बात कही आपने कि काम भी करते रहते हैं और कार्यक्रम भी सुनते रहते हैं। तो प्रेम सिंह जी कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज आप?
0: जी सर फिल्म का नाम है विरासत और गाने के बोले तो तारे है बाराते चांदनी है बारात।

0: नमस्कार सर।
1: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
0: हम सर निवाड़ी से बोल रहे हैं सर।
1: नाम बताइए अपना। अनिल शर्मा जी।
0: जी
1: क्या करते हैं अनिल जी आप?
0: कुछ नहीं सर, घर पे ही है सर इस समय।
1: जी गर्मी कैसी पड़ रही है
0: सर? बहुत गर्मी है सर।
1: तो कैसे बच रहे हैं गर्मी से?
0: सर अंदर ही रह रहे हैं बिल्कुल, और पानी खूब पी रहे हैं। क्या करें सर, इस समय तो 45-40 तापमान हो रखा है
1: जी,
0: और निकल ही नहीं पा रहे हैं सर बाहर।
1: जी तो गर्मी में तो बचाव बहुत जरूरी है
0: सर। सर बिल्कुल सर।
1: वैसे आप क्या करते हैं
0: सर? हम शिक्षक हैं सर।
1: जी तो आप शिक्षक हैं?
0: जी सर।
1: रेडियो कब से सुन रहे हैं आप?
0: सर सुन लेते हैं सर, कभी कभार सुन लेते हैं सर, टाइम मिल जाता है सर। हेलो फरमाइश कार्यक्रम ज्यादा सुनते हैं सर।
1: जी तो हमारे कार्यक्रम की जो जानकारी है वो आप कैसे प्राप्त करते हैं?
0: सर हमारे यहाँ नामदेव जी हैं सर, वो सुनते हैं सर।
1: जी तो आप भी सुनते हैं?
0: नामदेव जी के साथ में बैठ के सुन लेते हैं सर प्रोग्राम सर।
1: क्या बात है, तो सभी लोग मिलकर रेडियो सुनते हैं?
0: जी जी जी सर, दुकान पर बैठते हैं उनकी, तो वो अपना काम भी करते हैं
1: जी,
0: और रेडियो भी चलता रहता है।
1: क्या बात है, आकाशवाणी झांसी के कौन कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं
0: सर? मैं सर हेलो फरमाइशी अधिकतर सर सुनता हूँ
1: जी। हेलो झांसी, हेलो झांसी नाम है इस कार्यक्रम का?
0: जी जी जी हेलो झांसी सर।
1: जी तो आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे
0: सर? भाई अक्षर प्रेम के पिक्चर का गीत है सर, टाइटल सॉन्ग, दो लफ्जों में लिख दी मैंने अपनी प्रेम कहानी।
1: तो आपकी पसंद पर हम ये गीत आप तक पहुंचा रहे हैं।

0: हेलो झांसी कार्यक्रम में स्वागत है
1: जी। नमस्कार सर।
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं आप?
1: अमल जी बात कर रहा हूँ।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: सोनीतपुर असम से।
0: असम से बात कर रहे हैं?
1: जी जी जी, सोनीतपुर असम रंगापाड़ा
0: जी। बात कर रहा हूं। क्या बात है, बहुत दूर से आपने कॉल लगाया।
1: जी जी जी, हम
0: कैसे सुनते हैं,
1: रेगुलर लिसनर हो।
0: क्या बात है, तो
1: रेगुलर कॉल भी करता हूँ
0: जी। क्या करते हैं अमल जी?
1: जी हम तो घर में किसान का ही काम करते हैं, लेकिन जो हमारा धान का खेती है और चाय का खेती होते हैं
0: जी,
1: और कोई छुपड़ी वगैरह है और सब्जी का खेती करते हैं
0: जी। तो कैसा मौसम है इस समय असम में?
1: इस समय तो असम में बहुत गर्मी है और कल से बारिश नहीं है
0: जी।
1: अभी 38 डिग्री सेल्सियस तक चल रहा है हमारे यहाँ पे
0: जी। रेडियो कब से सुन रहे हैं आप?
1: रेडियो तो हम 2000 सन से सुन रहा हूँ।
0: तो रेडियो में सबसे अच्छी बात क्या लगती है?
1: जो रेडियो में जो फोन इन प्रोग्राम को ज्यादा अच्छा लगता है
0: जी।
1: और न्यूज वगैरह सुन के अच्छा लगता है। रेडियो में जो न्यूज प्रसारित करता है वो गलत नहीं होता है कभी भी
0: जी,
1: सच्ची न्यूज प्रसार करता है, इसलिए आकाशवाणी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ
0: जी जी। तो आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: आज मेरा बहुत खूबसूरत सा गाना सुनना चाहता हूँ, दिल का किया कसूर मूवी से। हाँ, दिल जिगर नजर, ये गाना को सुनना चाहता हूँ कुमार सानू की आवाज में। दोस्तों को याद कर सकते हो सर?
0: जी बिल्कुल, आप अपने दोस्तों के नाम लीजिए,
1: आपको भी डेडिकेट रहेगा
0: जी। धन्यवाद।
1: और भाईकोन मुंडा को डेडिकेट रहेगा, बिमल बसुमतारी को डेडिकेट रहेगा, रमेश पत्र को, जोगेंद्र रोंगी को, और सभी हमारे झांसी सुनने वाले सभी दोस्तों को मैं इस गाने को सुनाना चाहता हूँ।

0: हेलो झांसी कार्यक्रम में स्वागत है।
1: जी सर नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं सुनील झा बोल रहा हूँ भोपाल से।
0: क्या करते हैं सुनील जी?
1: सर सिलाई का काम करते हैं, टेलरिंग का।
0: जी तो लेडीज टेलर हैं या जेंट्स टेलर हैं?
1: जेंट्स टेलर हैं।
0: जी तो कौन कौन से परिधान आप तैयार करते हैं?
1: जी सभी, तो, पैंट शर्ट कुर्ता पजामा सफारी सूट।
0: जी तो इस समय आपकी दुकान कैसी चल रही है?
1: नहीं अभी तो खैर थोड़ा अभी असर पड़ा है, थोड़ा सीजन कम हो गया, शादियों का भी है नहीं
0: जी,
1: तो थोड़ा अभी थोड़ा कम है। और अभी क्या गांव गए थे तो गांव से भी आए, थोड़ा कमी है। हमारा गांव पड़ता है भिंड जिले में
0: जी,
1: ये गुड़ा जत्रा है
0: जी,
1: मेहोना तहसील में पड़ता है गांव।
0: जी जी तो सुनील जी कब से रेडियो सुन रहे हैं आप?
1: रेडियो तो सर काफी साल हो गई, कम से कम 35 साल के लगभग हो गई है।
0: क्या बात है, कितने सालों से आप लगातार रेडियो सुन रहे हैं?
1: जी जी जी
0: जी तो कैसे आपको रेडियो सुनने की प्रेरणा मिली कि अब हमें रेडियो सुनना चाहिए?
1: रेडियो पे हमारे मोहल्ले में एक अंकल जी थे तो उनका रेडियो पैरामाउंट था बड़ा
0: जी,
1: तो वो चलता रहता था
0: जी,
1: तो बस वहीं से शौक लग गया। फिर मेरे दोस्त के पास था
0: जी,
1: वो अपना क्रिकेट कमेंट्री सुनते थे और गाने भी सुनते रहते थे। जब से शौक लग गया फिर मेरे एक नाना जी थे
0: जी,
1: तो उन्होंने फिर मुझे कैंटीन से ला के दिया था रेडियो भोज में से
0: जी,
1: तो फिर उनने अभी हमारे पास अभी भी रखा हुआ है
0: जी। तो इस तरीके से आपका जो रेडियो का सफर है, अब आप रेडियो न्यूज ऑन एयर ऐप पे सुनते हैं?
1: जी जी अभी ऐप से सुनते हैं, डीटीएच पे भी अपना चलता है और न्यूज एयर ऐप में प्रसार भारती के ऐप पे सुनते रहते हैं
0: जी। आकाशवाणी की जो कार्यक्रम है उनकी जानकारी आप कैसे प्राप्त करते हैं?
1: जी हमारा इसका हेलो फर्मा से एक रेडियो श्रोता ग्रुप है
0: जी,
1: उसमें पूरी आकाशवाणी की जानकारी रहती है
0: जी,
1: सब जगह पूरी जानकारी की कहाँ से कौन प्रोग्राम आने वाला है या आएगा, रिकॉर्डिंग होगी कब
0: जी,
1: पूरा उसमें जानकारी देते रहते हैं।
0: आपको वो जानकारी हम दें कि आकाशवाणी झांसी का फेसबुक पेज भी है, इंस्टाग्राम पेज है और यूट्यूब चैनल भी है।
1: अच्छा सर
0: जी, तो आप सर्च कर सकते हैं, हमारे हर कार्यक्रम की अपडेट रहती है।
1: फेसबुक पे तो है, आप तो लाइक भी करते हैं देखो।
0: जी बिल्कुल, तो जरूर आप लाइक करें, अपने कमेंट्स करें, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं।
1: जी जी बिल्कुल
0: जी। तो सुनील जी बहुत सारी बातचीत आपसे हुई, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, ये जिंदगी कुछ भी।
0: आपकी पसंद पर हम ये गीत आप तक पहुंचा रहे हैं, सुनें ये गीत।

0: हेलो झांसी में स्वागत है आपका।
1: जी नमस्कार सर।
0: कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं मनोज शर्मा, ग्राम पनारी, खेती जिला सागर मध्य प्रदेश।
0: क्या करते हैं मनोज जी?
2: मैं सर कारपेंटर हूँ।
0: क्या बात है, तो लकड़ी से नए नए आप फर्नीचर बनाते हैं?
2: जी सर बिल्कुल सही पहचाना।
0: जी तो क्या क्या बनाते हैं आप?
2: घर में जो भी दरवाजे लगते हैं, खिड़कियाँ लगती हैं
0: जी,
2: कोई कबर्ड बनते हैं
0: जी,
2: पलंग बनता है, सोफा बनता है, टेबल बनती है
0: जी, तो घर को
2: सभी कुछ बनाते हैं।
0: घर को सुंदर बनाने का काम करते हैं आप?
2: जी सर बिल्कुल, हमारा योगदान रहता है इसमें
0: जी। रेडियो कब से सुन रहे हैं मनोज जी?
2: रेडियो सर कभी 25 से 30 साल हो गए
0: जी। तो रेडियो सुनने का शौक आपको कैसे लगा?
2: रेडियो का तो हमारे तरफ पहले जो दादाजी थे
0: जी,
2: हमारे पिताजी के पिताजी
0: जी,
2: तो वो सुनते थे। एक पैरामाउंट का था उनके पास बड़ा वाला रेडियो
0: जी,
2: जब मैं छोटा था उसी समय वो उस पर 3-4 बैंड हुआ करते थे
0: जी,
2: अलग से उसमें स्टेशन लगाने के लिए गोल सा बटन लगा हुआ रहता था
0: जी जी जी।
2: तो तभी से हम देखा था, तभी से हमें भी रुचि बढ़ गई थी
0: जी। तो सुनते सुनते फिर आपको रुचि हुई रेडियो में
2: जी
0: जी, और अब आप रेडियो न्यूज ऑन AIRF पे सुनते हैं?
2: न्यूज ऑन AIRF पर सुनते हैं और कुछ चैनल हमारे DTH पर भी सुनते हैं।
0: क्या बात है,
2: रेडियो तो हमारे यहाँ है कि सर घर पर रहते हैं
0: जी,
2: जैसे DTH पे या न्यूज ऑन AIRF के माध्यम से सुनते हैं
0: जी,
2: और जब कहीं साइट पर काम करते हैं तो अपने मोबाइल पे चलते ही है
0: जी। तो आकाशवाणी झांसी के जो कार्यक्रम है उनकी जानकारी आपको कैसे मिलती है?
2: एक बार सोशल मीडिया पर आपका एड देखी हुई थी मैंने
0: जी,
2: उसी समय मैंने नंबर भी नोट कर लिए थे और आपके आकाशवाणी ऐप पर भी हमने अपने फेवरेट लिस्ट में ऐड कर लिया था।
0: हम आपको जानकारी दे दें कि आकाशवाणी झांसी का फेसबुक पेज भी है, यूट्यूब चैनल

0: भी है और इंस्टाग्राम पर भी हम हैं जी। तो मनोज जी, कैसी गर्मी पड़ रही है आपके यहाँ?
1: गर्मी तो सर बहुत तेज हो रही है, तो
0: जी, तो बचाव के लिए क्या कर रहे हैं? काम भी आपको करना पड़ता है जी।
1: बचाव के लिए साथ में पानी रखते हैं, तौलिया
0: जी
1: भी रखते हैं साथ में,
0: जी
1: और जेब में एक प्याज भी डाल लेते हैं ताकि लू ना लगे,
0: क्या बात है।
1: और समय
0: तो
1: समय पर पानी पीते रहते हैं।
0: जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या प्याज जेब में रखने से लू नहीं लगती? जी,
1: ये ऐसा सर माना जाता है।
0: तो आपके यहाँ ऐसा सभी लोग करते हैं?
1: हाँ, जिन जिनको है जानकारी या जो मानते हैं इस चीज को, तो वो रखते हैं।
0: ये तो आपने बहुत नई जानकारी हमें दी। तो मनोज जी, कौन सा गीत आज आप सुनना चाहेंगे?
1: आज दिव्य शक्ति फिल्म का सुनवा दीजिए आप।
0: जी, गाने के बोल बताइए।
1: आपको देखकर मुझको ऐसा लगा।

0: हेलो झांसी में स्वागत है आपका।
1: नमस्ते सर। नमस्ते।
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं आप?
1: राजपाल यादव
0: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं राजपाल जी?
1: बसार। बसार।
0: बसार कहाँ पड़ता है
1: सर? बसार शिवपुरी जिले में।
0: शिवपुरी जिले में है।
1: हाँ।
0: क्या करते हैं राजपाल जी आप?
1: बस सर जी, खेती किसानी करते हैं
0: जी। तो इस समय खेती किसानी में क्या चल रहा है?
1: बस सर, आजकल तो मूंगफली भाई और मूंग गए थे।
0: अच्छा, तो गर्मी तो बहुत पड़ रही है, फिर आप कैसे खेती किसानी कर रहे हैं?
1: सर पानी रात में बढ़ाते हैं, दिन सोते हैं।
0: अच्छा, और रेडियो कब सुनते हैं फिर?
1: हम रेडियो तो हम सुन लेते हैं
0: जी। कब से सुन रहे हैं रेडियो?
1: हम रेडियो सुन रहे मतलब 2025 से सुन रहे 2025 से
0: 2025 से रेडियो सुन रहे हैं।
1: हाँ
0: जी। तो कैसे आदत लगी रेडियो सुनने की?
1: हमें लगी है सर, हम क्या बताए कि हमारे पास रेडियो नहीं, हम सुनते हैं फोन पे
0: जी। अब मोबाइल से ही आप दुनिया में कहीं बैठकर हमारा कार्यक्रम सुन सकते हैं।
1: हाँ, चाहे सुन सकते हैं, चाहे कहीं
0: भी हो आप।

0: क्या कार्यक्रम सुन सकते हैं?
1: सुनिए सर, बढ़िया हो
0: जी, हम सभी लोग अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
1: बस हम बढ़िया सर।
0: कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज आप?
1: सर हम गीत तो हम गा के बताएंगे।
0: हाँ तो बिल्कुल गाइए, हमारे सभी श्रोता सुनेंगे, हम भी सुनेंगे।
1: के तू नींदों की रानी और मैं प्यार का सपना, छोड़ के मुझको जाना ना, मेरा जिया नहीं लगना।

श्रोताओं, आपसे बात करते करते हम ये भी भूल जाते हैं कि हमारे स्टूडियो की घड़ी इशारा कर रही है हमें कार्यक्रम को समाप्त करने का। चलते चलते आपको बता दें, हमसे जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम आईडी और यूट्यूब चैनल भी है, जो आकाशवाणी झांसी के नाम पर है। इसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। हमें आप अपने पत्र भी लिख सकते हैं, उसके लिए हमारा पता है द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी झांसी, कानपुर रोड झांसी, पिन कोड संख्या है 284128। तो देर मत कीजिए, आपके पत्रों का, आपके कमेंट्स का हमें बेहद बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज के कार्यक्रम में स्वर था हेमंत सिंह का। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी अंजलि कुमारी।

फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो झांसी अभी आप सुन रहे थे। स्वर एवं प्रस्तुति सहयोग हेमंत पाल सिंह बुंदेला का था और प्रस्तुतकर्ता थी अंजलि कुमारी। एफएम 103 पर आकाशवाणी का ये झांसी केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत।

0: 819 किलो हर्ट्स, DNM 810 किलो हर्ट्स पर। 11 बजने को है, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत होती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक

तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और गले में खराश जैसे लक्षण महसूस होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। इस मुकाबले में हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने 64 और साई सुदर्शन ने 84 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ ही गुजरात टाइटंस ने टॉप टू में जगह बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुष्ट कर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।